सुप्रभात दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी 30 दिवसीय योग शिविर में नित प्रतिदिन आकर के योग के साथ जो शब्द इस समय हम एक आसन प्राणायाम के साथ में मिलकर के कर रही हैं, उसमें आप सभी लोग आकर के आनंद का अनुभव करते होंगे और हर एक आसन प्राणायाम को बड़ी ही एकाग्रता से होकर के कर रहे होंगे। काफी बार ऐसा होता है कि हम प्राणायाम और आसन के बारे में संपूर्णता जान नहीं पाते हैं और हम सिर्फ उसे मनन करते हुए ही करते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि हमें प्राणायाम के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा प्राणायाम हम कब, किस तरीके से और कितनी बार कर रहे हैं। तो आइए, आज हम जो प्राणायाम करने जा रहे हैं वह है भ्रामरी प्राणायाम। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम के आगे जिस

आश्रय उदासीनता से है। शांत रस का उदाहरण हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम शांत भ्रामरी प्राणायाम क्यों है। शांत रस का स्थायी भाव जिसका आश्रय उदासीनता से है। मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में। इसका मतलब ये हुआ कि मन जो है वो कागज का पुतला है, कब चला जाए कब छिन जाए कुछ नहीं पता होता है। लेकिन यदि हम देखें कि वह शांत चित होता है तो प्रकृति से जुड़ करके बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो वो ले करके अपनी सारी शक्तियों को पूरा करता है। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम को हम शांत भ्रामरी प्राणायाम बताएंगे और हम साथ में मिलकर के उसका अभ्यास भी करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शांत भाव रस का क्या है, क्योंकि शांत रस में भाव की उत्पत्ति इसीलिए होती है क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं और जब हम उसे शांत प्रिय होकर के करते हैं तो हमें उसमें सफलता बहुत ही अच्छी मिलती है। शांत रस का स्थायी भाव निवेद है। शांत रस तत्व ज्ञान और संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति मानी गई है, जहाँ न दुख हो न सुख न द्वेष हो न राग न कोई इच्छा न कोई मन स्थिति। शांत की उत्पत्ति होती है जहाँ, वहां पर कोई भाव होता ही नहीं है। शांत की रस में कविताओं का बहुत ही बड़ा गुण माना जाता है। लेकिन यदि हम अब आपको भ्रामरी शांत क्यों बना वो बताते हैं। भ्रामरी प्राणायाम वैसे तो हम कई बार अपने योगशाला की योग शिविर में हम करते आए हैं, लेकिन इस बार की शिविर में हम एक एक प्राणायाम के आगे एक शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने कल बताया था, अनंत कपाल भाति। अनंत कपाल भाति क्यों किया? कपाल भाति प्राणायाम तो हमने पहले भी किया है। भस्त्रिका प्राणायाम, योग साधना, ध्यान योग, हमने सब कुछ पहले भी सीरीज में किए हुए हैं। लेकिन इन सारे प्राणायामों के आगे यदि कोई शब्द की उत्पत्ति हुई है तो उसका भी कुछ न कुछ जरूर से महत्व जुड़ा हुआ है। शांत भ्रामरी प्राणायाम शांत इसलिए है क्योंकि शरीर में होने वाली उथल पुथल को यह शांत करता है, और साथ ही साथ भ्रामरी प्राणायाम से जुड़ करके कई ऐसी मनोवृत्तियों को भी शांत करता है। शांत भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें उन स्थितियों को शांत करना है जो कि हमें विचलित करती हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है मन का। कहा जाता है कि मन की जो गति है वो घोड़े की गति से कई गुना तेज है। आज यहाँ तो अगले ही क्षण हम कहीं और होते हैं। मन को मजबूत करना और मन को अपने स्थिति में कंट्रोल करना यह बहुत ही दुर्लभ कार्य है। मन को स्थिति में कंट्रोल करना, उसे शांत करना, यह जिस प्राणी को आ जाए, यानी कि हम सही रूप में सही मायने में प्राणायाम की ओर जा चुके हैं। तो आइए अब हम करते हैं अभ्यास शांत भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि शांत भ्रामरी प्राणायाम क्या है। प्राणायाम श्वास लेने का व्यायाम योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह श्वास लेने के भावात्मक स्थिति के बीच संबंध बनाता है। यह चिंता, क्रोध, उत्तेजना, हताशा, भय आदि जैसी नकारात्मक भावात्मक स्थितियों को खत्म करने में मदद करता है। भ्रामरी प्राणायाम एक श्वास तकनीक है। भ्रामरी भ्रमर अर्थात काली मधुमक्खी से बना है। भ्रामरी योग करते समय, श्वास छोड़ते समय गुनगुनाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। यह मधुमक्खी की भिनभिनाहट जैसा लगता है, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम को विपरीत भी कहा जाता है। तो आइए हम भ्रामरी प्राणायाम यानी शांत भ्रामरी प्राणायाम की मुद्राएं जानते हैं, जो कि दो मुद्रा है। यह षष्ठमुखी मुद्रा के बिना किया जाता है। गुनगुनाती
ध्वनि के साथ सांस लेना

और छोड़ना होता है। इसका अभ्यास षणमुखी मुद्रा के साथ किया जाता है। यहाँ आँखें, तर्जनी, मध्यमा उंगलियों से मुख अनामिका और छोटी उंगलियों से कान अंगूठे बंद किए जाते हैं। आइए अब हम बताते हैं कि इसे कैसे करता है। भ्रामरी प्राणायाम का अधिकतम लाभ सभी प्राप्त कर सकते हैं। जब इसे उचित तकनीकी के साथ किया जाए तब इसका पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। आप शांतपूर्ण स्थान पर जाने के लिए प्रारंभिक मुद्रा के रूप में ध्यान मुद्रा से शुरुआत कर सकते हैं। बैठते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, अपने कंधों को फैलाएं। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम अपनी आंखें बंद करें, अपनी नाक से गहरी सांस लें। अब सांस पर नियंत्रण रखते हुए मधुमक्खी की भिनभिनाहट जैसी गहरी स्थिर गुंजन ध्वनि निकालते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार पुनरावृत्ति करते चलें। शांत भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखें। प्रत्येक एंगल पर एक अंगूठा तर्जनी अपनी आंखों पे अंदरूनी कोनों को हल्के से छुएं। बीच की उंगलियां नाक के किनारों पर, अनामिका उंगलियां ऊपर, होंठ और ठीक नीचे। तत्पश्चात हम इसको पूर्ण रूप से करेंगे कुछ इस तरह अभ्यास।

0: तत्पश्चात हाथों की हथेलियों में घर्षण करके आंखों पे व चेहरे पे लगाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। आइए शांत भ्रामरी प्राणायाम के फायदे जानते हैं। शांत भ्रामरी प्राणायाम एक सरल तकनीक है जिसका उपयोग आप घर पर या कार्यस्थल पर भी कहीं पे भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि आप उसे मन से और एक सच्ची लगन से कर रही हैं। यह सारा तनाव दूर करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। भ्रामरी यानी कि शांत भ्रामरी श्वास के साथ भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। चिंता और तनाव के लिए शांत भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही आवश्यक होता है। रक्त संचार के लिए शांत भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। कान की स्थिति के लिए शांत भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। और इनके अन्य लाभ हैं, शांत भ्रामरी प्राणायाम के नियमित अभ्यास से क्रोध, उत्तेजना, हताशा, भय जैसी नकारात्मक सारी भावनाओं को खत्म करने में मदद मिलती है। यह मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाकर शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद भी करता है। तो आइए हम सभी मिलकर के इसका नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो आज की कार्यशाला, आज की योगशाला में, आज के शिविर में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए आसन, एक नए प्राणायाम के साथ में, उनके साथ से जुड़े हुए एक नए शब्द से। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ऐसे ही मॉनसून में योग करना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है और सावधानी पूर्ण हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे, क्योंकि यदि अगर हम बहुत सारे प्राणायामों को हर रोज करते हैं, हमारा नित नियम होता है, तो हम बारिश के टाइम पर भी सोचते हैं कि हमारा उसमें गैप ना हो। मॉनसून एक ऐसी ऋतु है जिसमें हम हमेशा से सोचते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो थोड़ा सा आज रुक जाते हैं, कल कर लेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि मॉनसून में योग को जरूर से करना चाहिए। जो भाई बहन नियमित रूप से योग की योग पाठशाला में आते हैं, सुनते हैं और करते हैं, उनके लिए हर मॉनसून में हम कुछ न कुछ नया लेकर के भी आते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, वो लोग भी इस मॉनसून स्पेशल में योग के साथ जुड़े और इस नए वाले योग को करें। तो आइए हम शुरू करते हैं मॉनसून यानी वर्षा ऋतु में योग अभ्यास। वर्षा ऋतु में योग अभ्यास शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि इस मौसम में आर्द्रता, संक्रमण और सुस्ती अधिक होती है। आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने पहले ही अवगत कराया, कि मन बिल्कुल नहीं करता है कि हम किसी भी काम को तहे दिल से करें, चाहे वो हमारे घर के काम हो, चाहे जो जॉब विमेंस होती हैं, जॉब में जो लोग भाई होते हैं, वो सभी भी, उनको ये लगता है कि यार आज नहीं जाते, बारिश हो रही है, कल चले जाएंगे। खास करके बच्चे भी, जैसे बारिश होना शुरू होती है, बच्चों के लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, काश रेनी डे हो जाए। तो ऐसे मौसम में संक्रमण और सुस्ती ज्यादा होती है, जिसमें हमें योग तो बहुत ज्यादा करना चाहिए, यानी योग अभ्यास को नित प्रतिदिन करते ही रहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में और हमारे मन को संतुलित और एक ताकत मिलती है। मॉनसून में योग जरूरी होता है। मौसम में नमी के कारण जोड़ों में दर्द, अकड़न और पाचन संबंधी समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। हम कुछ भी खाते हैं, हमें गैस बनने लगती है। जरा सा भी कुछ अगर फल भी खा लिया तो हमारा पेट फूलने लगता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है। ज्यादा तला भुना भी अगर हम लोगों ने ले लिया तो लगेगा कि पेट भरा भरा होता है। मॉनसून एक ऐसी ऋतु है जिसमें हमें प्यास भी लगती है, अगर हम पानी पीते हैं तो हमारा पेट भरा लगता है। ये मई जून से बिल्कुल अलग सा मौसम होता है। कम से कम मई जून में हम पानी की प्यास तो लगती है, हमें पानी अच्छा तो लगता है, लेकिन मॉनसून में हमें प्यास तो लगती है लेकिन पानी कम अच्छा लगता है। भूख हमें कम लगती है लेकिन नियमित रूप से हमें खाना तो है ही, अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। बस थोड़ा सा अवॉइड करना है तली भुनी चीजें, बाहर की चीजें और ज्यादा भारी वाला भोजन। मौसम में नमी ज्यादा हो जाती है, जैसा कि हर समय हमें कुछ गीला गीला सा महसूस घर में, कपड़ों में, दीवारों पे, जिसको हम अमूमन भाषा में हम सीलन भी कह सकते हैं। तो अगर किसी के घरों में सीलन ज्यादा होती है दीवारों में या फिर छतों में, पानी टप टप टप टप करता रहता है, जिसके कारण से उसका जो प्रभाव है हमारे शरीर पर भी पड़ता है। आप सोचेंगे कि दीवारों में अगर सीलन है, अगर छतों में है, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर क्यों पड़ता है। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, ये एक साइंटिफिक रीजन होता है। हम जो सोचते हैं वही वैसा हमारे शरीर पर होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी मन बुद्धि को अगर कंट्रोल करके सात्विक विचारों में लगाते हैं तो सात्विक विचार होते हैं, यदि हम नकारात्मक विचारों में लगाते हैं तो नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसे ही मॉनसून में क्या होता है कि घर में स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि हर जगह पर नमी सी लगती है, इसीलिए हमारे मन में भी नमी हो जाती है। हर तरफ जैसे अजीब सी फीलिंग होना कि काम में मन नहीं लगना। अगर हेल्थ की बात की जाए तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, इम्यून सिस्टम कम होने लगता है, शरीर में वात कफ दोष का संतुलन जो है वो बिगड़ने लगता है, असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण से हम कुछ भी खा लेते हैं तो हमारा पेट भरा भरा लगता है, वायु दोष हो जाता है, कब्ज की समस्या होने लगती है। इसीलिए आज हम आपको मॉनसून में किए जाने वाले कुछ ऐसे प्राणायाम, कुछ ऐसे आसनों को बताने वाले हैं जो यदि हम नियमित रूप से करने लगेंगे तो हमें इसका जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पर होने लगेगा। सबसे पहला जो आसन है, जो प्राणायाम है, वह है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की बहुत सारी सीरीज हमने आपके साथ शेयर करी है। 12 आसनों से मिलकर के एक आसन संपूर्णतः बनता है जो कि है सूर्य नमस्कार। प्रत्येक आसन को इस तरीके से एक एक आसन में खूबसूरती से कराया जाता है और उसका महत्व भी होता है, क्योंकि हर एक आसन की अपने आप में एक काबिलियत है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण योग्यता है। सूर्य नमस्कार इसलिए मॉनसून में किया जाता है क्योंकि यह पूरे शरीर को गर्म रखता है, मॉनसून की सुस्ती और थकान को दूर रखता है, सुबह करने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। पूरे शरीर को गर्म कैसे रखता है आइए बताते हैं। मॉनसून में हम अमूमन क्या होता है कि मई जून में तो हम कूलर का यूज कर लेते हैं, एसी का यूज कर लेते हैं, लेकिन मॉनसून में ये दोनों चीजें बहुत ही कम यूज होती हैं, क्योंकि हमारा शरीर थोड़ा सा ठंडा होने लगता है, जिसमें सिर्फ पंखे के नीचे भी अगर हम बैठ जाते हैं तो हमें उतनी आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए हमारे शरीर को गर्म करने की आवश्यकता होती है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अपने आप में प्राणायाम है जो पूरे शरीर को गर्म करने के लिए पर्याप्त होता है। मॉनसून की सुस्ती और थकान को दूर करने के लिए ये एक ऐसा पर्याप्त आसन है अपने आप में कि पूरे दिन की सुस्ती को दूर करने के लिए और उसकी थकान को दूर करने के लिए यदि हम नियमित रूप से इसको करते हैं तो हमें हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, बशर्ते हम इसे सुबह करें। दूसरा आसन हमारा आता है वज्रासन। वज्रासन आप सभी को पता है कि वज्रासन में बैठने मात्र से हमारी पाचन शक्ति को सुधार मिलता है। मॉनसून में आमतौर पर पाचन खराब और गड़बड़ रहता है, वज्रासन इसे नियमित रूप से ठीक करता है। मैंने अभी आपको बताया कि मॉनसून में हमारे पेट में ऐसी कई चीजों का असंतुलन हो जाता है जिसके कारण से हमें गैस, अपच और कब्ज होने लगती है। मॉनसून में आमतौर पर जो पाचन शक्ति है वो कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से हमें ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। इसीलिए मॉनसून में वज्रासन आसन जरूर करना चाहिए। भोजन के बाद यह आसन किया जा सकता है। बहुत ही आसान है। दोनों पैरों को फोल्ड करके आपको बैठ जाना है। आप अगर खाना खाने के बाद इस आसन को कर रहे हैं तब तो और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यह हमारी पूरी पूरी पाचन शक्ति को संतुलित रखता है। तीसरा आसन हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि है मित्यासन। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, छाती और गले को खोलता है, जिससे सर्दी खांसी में राहत मिलती है। मृत्यासन जो होता है ये आपने, इसका संस्कृत शब्द है मृत्य यानी कि मत्स्य यानी कि मछली। मत से बना मृत्यासन, जो कि हम इसे हमेशा से कई बार हमने देखा है कि हम अलग अलग सीरीज में भी करते हुए आपको बताया है, तो इसको करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है, छाती और गले में जो कफ बना रहता है, जो काफी दिनों से अगर आप बहुत सारी दवाइयां भी कर रहे हैं पर वो कफ नहीं निकल रहा है, तो इस मात्र आसन से आपकी सर्दी खांसी में राहत मिलती है और कफ को निकालने में ये मदद करता है। चौथा आसन हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन एक अपने आप में इस मौसम में सर्वप्रथम बहुत ही बढ़िया सा आसन है, जो गैस, अपच, पेट फूलना जैसी समस्याओं में सहायक होता है। मॉनसून में पेट की सफाई जरूरी होती है, क्योंकि मॉनसून एक ऐसी ऋतु है जिसमें ही हम अगर कुछ भी बाहर का खा लेते हैं तो हमें जल्दी से या असाधारण रूप से इसका असर होने लगता है। इसीलिए मॉनसून में पेट की सफाई जरूरी है, जो कि पवन मुक्तासन से संभव है। पांचवा और आखिरी, यानी कि आसन तो बहुत सारे हैं पर महत्वपूर्ण आसनों में पांचवा, त्रिकोण आसन, जो कि हम खड़े होकर के करते हैं, शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, संतुलन और लचीलापन भी बढ़ाता है। यह आसन इतना लाभकारी है मॉनसून में करने से, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा शरीर सुस्ती में पड़ गया है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो यह आसन आपको तंदुरुस्त और चुस्त रखता है। प्राणायाम मॉनसून में काफी लाभदायक भी होते हैं, जैसे कि पहला अनुलोम विलोम, नासिका शुद्धि में मदद करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है। दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि फेफड़ों को मजबूत करता है, अधिक नमी में भी सांस लेने में मदद करता है। तीसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, कपालभाति, शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं मॉनसून में योग करते समय सावधानियां। नमी वाले स्थान पर योग बिल्कुल ना करें, सूखी और हवादार जगह ही चुनें। चटाई या मैट को आप बिल्कुल सूखा रखें और जहां हो सके कि फिसलन ना हो वहीं पर आप इसको बिछाएं। हल्के और आरामदायक कपड़े ही पहने। सुबह शाम के समय आप सभी आसन कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक खाली पेट ना रहें। ज्यादा पसीना आए तो पानी पिएं, शरीर को हाइड्रेट रखें। मॉनसून में खान पान का जो तालमेल है हम उस पे भी बात कर लेते हैं। योग के साथ गर्म पानी, हर्बल चाय, हल्दी दूध आदि शामिल करें। तली भुनी चीजों से मॉनसून में बचना चाहिए। मौसमी फल और सब्जियों का सेवन जरूर से करते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये था हमारा मॉनसून स्पेशल, जिसमें बहुत सारी जानकारियां हमने आपको दी। मिलेंगे एक नई ऋतु के साथ में, एक नए आसन और एक नए प्राणायाम के साथ में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को
0: कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों भरी, नई ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव का एक नया अवसर प्रदान करने वाली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानेश्वरी 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज की ये पहली किरण समर्पित है देवों के देव महादेव यानी शिव शंभू को। दोस्तों, शिव केवल एक नाम नहीं, ये एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिवत्व का मतलब है शांत रहकर भी शक्तिशाली होना। हम कई दफा हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ना जाने कितना ज्ञान है हमारे पास, पर शिवत्व हमें ये सिखाता है, जब हम शांत रहते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, खुद को भी और सामने वाले को भी वो चीज महसूस होती है। सब कुछ पाकर भी अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। शिव हमें सिखाते हैं, अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा।

दोस्तों, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शिव अपने आप में पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। लेकिन इनका एक रूप है तांडव का। जब ये बहुत क्रोधित होते हैं तो ये तांडव करते हैं। पर इसका एक और पक्ष भी है, चलिए बताते हैं। कहते हैं जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है तो महादेव तांडव करते हैं। लेकिन ये तांडव विनाश नहीं, बल्कि नई सृजन की शुरुआत होती है। इसका संदेश ये है कि जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लीजिएगा कुछ नया बनने वाला है।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुबह का यानी भोरे भोरे का आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिव शंकर शिव शंभू की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो कि जाना जाता है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से, जिनके शब्द हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नाकाराय नमः शिवाय। यानी ना शब्द का क्या अर्थ है ये इस पूरे दोहे में बताया गया है। दोस्तों, ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे मन को शांति देने वाला एक दिव्य कंपन है। रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन शांत और विचार सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं कि जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उसमें हम सभी को समाहित कर लेते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए और इस पूरे विश्व की शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर जब खुद की समृद्धि और कुशलता की बात आती है तो हमें ओम हटा के यानी केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आइए आप पहले एक भजन का आनंद उठाएं, फिर उसके बाद इस पूरे स्तोत्र और इसका क्या मतलब है मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब सुन लेते हैं कि आखिर में शुभंक्षाक्षरी स्तोत्र का अर्थ क्या है और हर एक दोहे में हर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ना यानी नाग

वाय, जो सर्पों की माला धारण करते हैं, तीन नेत्र वाले हैं, भस्म से जिनका शरीर अलंकृत है, जो महान ईश्वर हैं, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं, उन ना अक्षर वाले स्वरूप शिव को प्रणाम है। दूसरा शब्द है माँ। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय

जो गंगा जल और चंदन से पूजित हैं, नंदी और गणों के स्वामी हैं, मंदार और अनेक पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन माँ अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अगला शब्द है शी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्ष ध्वर नाशकाय, श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो पार्वती जी के मुख कमल के प्रिय हैं, जो यक्ष यानी दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, नीलकंठ और वृषभ यानी नंदी ध्वज वाले हैं, उन शी अक्षर वाले शिव स्वरूप को प्रणाम। अगला शब्द है वा, यानी वशिष्ठ कुंभोद्व गौरतमाय, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। जिनकी पूजा वशिष्ठ, अगत्स, गौतम आदि ऋषि और देव करते हैं, जिनकी आंखें चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान हैं, उन वा अक्षर स्वरूप वाले शिव को प्रणाम। अब आखिरी शब्द यानी या। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिन्नाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै अकाराय नमः शिवाय। जो यक्ष स्वरूप जटाधारी हैं, पिनाक यानी त्रिशूल धारण करते हैं, सनातन हैं, दिव्य और दिगंबर देव हैं, उन या अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अंत में समापन श्लोक, पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पटेक्षे समनिधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति इस पवित्र पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित रहता है। सरल भाषा में अगर समझने को कहें दोस्तों, तो नामा शिवाय यानी नमः शिवाय, ये पांच अक्षर केवल मंत्र नहीं, ये जीवन के पांच सूत्र हैं। ना माने नम्रता, मा माने मन की शुद्धता, शा माने शांति, वी माने विश्वास और या माने आत्म योग। जो इन्हें जी लेता है वही सच्चे अर्थ में शिव के करीब पहुंच जाता है।

तो दोस्तों, शिव और साधना यानी शिव और शक्ति, इनका अगर हम दैनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं तो कैसे देखते हैं? शिव जी की साधना है शक्ति यानी माँ पार्वती। शिव जी की साधना बहुत सरल है, ना कोई दिखावा ना कोई भव्यता, बस एक सच्चा मन, थोड़ी सी श्रद्धा और एक लोटा जल। भोले बाबा तो इसी इतने में खुश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है और इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार को बहाना है और जीवन को सरल बनाना है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती, यही है शिवत्व।

अब चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गले में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

0: तो दोस्तों आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम अपने भीतर एक गहरा अर्थ और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको से रूबरू कराते हैं भोलेनाथ। भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो, चालाकी से नहीं दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता, असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोककर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठधारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो। गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी। हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना, प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है, अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।
1: सम्मान करो इसका, शुक्र करो, क्योंकि प्यार
2: से खूबसूरत

दोस्तों, शिव पूजन में बेलपत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तब के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप, पसीने और तप ऊर्जा से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे बेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। बेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि बेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। बेलपत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम, तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता, शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें, तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलो जी, यानी कि हमारे गणपति जी, इन सभी की सवारी पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि माता रानी यानी पार्वती जी का जो वाहन है वो है सिंह, और वहीं पे अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनका जो सवारी है वो है वृषभ, और वहीं पे दूसरी ओर देखें यानी उनकी सवारी मूषक, और कुमार कार्तिकी उनकी सवारी मयूर यानी मोर। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष को दर्शाते हैं, पर इससे जो शिक्षा निकल के आती है वो ये है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी समाज में रहें, हमें कैसे रहना है, शांत होकर रहना है। हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज़ है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

श्रोताओं, शिव शब्द आखिर में क्या क्या समाहित करके रखता है, चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं, बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था, तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव। अनादि, जिसका आरंभ ना हो। शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं। एक सनातन सत्ता, इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

दोस्तों अब मैं दर्शन शास्त्र की बात करती और वहाँ पे शिव शब्द का क्या महत्व है आपको समझाती। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, यानी मैं और ईश्वर अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं, यानी के आप और आपकी आत्मा और उसमें ईश्वर का जुड़ाव सभी एक हैं। कश्मीर शैव दर्शन की बात करें तो शिव यानी चेतना, शक्ति यानी उसकी ऊर्जा। बात साफ है कि शिव माने भोलेनाथ और शक्ति माने माता पार्वती, यानी जो लोग चेतना में हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति से। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यानी जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं, होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी, ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है शिव को। शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गली में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी, गंगा, चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारे प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में शिव को ऐसे समझा जा सकता है, इनर पीस यानी कि अंतर मन की शक्ति, माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता, बैलेंस यानी कि संतुलन। जब दुनिया भाग रही है जैसा कि आज का दौर है, शिव हमें रुककर खुद से जुड़ना सिखाते हैं। बहुत ही जरूरी है, जो हमारी लाइफ को एक पॉज की जरूरत है जो हम सभी भूल गए हैं कहीं ना कहीं देना। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट से आपको वो फल प्राप्त होगा जिससे आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और खुद की आत्मा से खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुलित हो तो समझिए आपके भीतर शिव जाग चुके हैं।

तो दोस्तों आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजी आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो यानिसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: आयु आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9817976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

जैसे भी हैं चलो आज खुद को कबूल करते हैं, जैसे भी हैं चलो आज खुद को कबूल करते हैं, औरों के जैसा बनने की चाहत, आज इस चाहत को फिजूल करते हैं। क्यों ढूंढे हम किसी और में हर बार तसल्ली अपनी, हम खुद में मुकम्मल हैं, चलो ये बात कबूल करते हैं। उठो और मुस्कुरा कर खुद को गले से लगाओ तुम, कि खुद से मोहब्बत की इबादत, चलो इस सुबह बशनूर करते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 8:42 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। वक्त हो चला है आपके अपने मॉर्निंग स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा का। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौकी होती मौजूद है आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और आते ही जो चंद लाइनें मैंने आपको सुनाई थी, ये था आज का मेरा स्पेशल पोइट्री। जब भी हम आते हैं आपके लिए थॉट नहीं, पोइट्री ऑफ द डे लेकर आते हैं। और आज की पोइट्री ऑफ द डे बहुत ही क्लियर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मुकम्मल बात अब आपस में कहती है। और वो बस इतनी सी है कि भैया दूसरों से जो हम उम्मीदें पाल कर बैठते हैं ना, सोचते हैं हम दूसरों की तरह बन जाएंगे, पहली बात तो इस चाहत को आप अपने दिल से निकाल दीजिए, दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, इसकी ज़रूरत तो होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे भी हैं बहुत खूबसूरत हैं, और आज यही बात आपको कबूल भी करना है। औरों के जैसे बनने की जो एक कोशिश रहती है, एक अनचाही चाहत रहती है, उसे फिजूल करना है, उसे पीछे छोड़ना है। आप हमेशा दूसरों में अपनी तसल्ली ढूंढते हैं, दूसरों में अपनी खुशियां ढूंढने लग जाते हैं। बस इस बात को यहीं पर रोक कर आपको याद करना है कि आप खुद में कितने मुकम्मल हैं, और यही बात आपको आगे लेकर जानी है। तो भैया हर सुबह, क्योंकि वैसे तो सूरज दादा ने आज टेम्परेचर बहुत हाई कर रखा है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में भी थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि आप हैं और कौन ही तो करें। अगर आप नहीं होते तो कौन होते? कभी सोचा है? हम हमेशा दूसरों की तरह बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, हमेशा दूसरों की तरह भागते रहते हैं, सोचते हैं उनकी तरह चीज़ें पहनेंगे, उनकी तरह दिखेंगे, उनकी तरह खाएंगे बोलेंगे, तो हम वैसे ही हो जाएंगे। बट सक्सेस उन्हें कभी भी नहीं मिलती जो दूसरों को कॉपी करते हैं, कॉपी हमेशा कॉपी ही रहता है। इसीलिए खुद को जैसे भी हैं वैसे ही एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। तो भैया आज की खूबसूरत पोइट्री बस इतना ही कहती है कि खुद को एक्सेप्ट करना सीखे। सिचुएशंस को हम एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, स्पेशली ये होता है जब भी कोई गलती किसी से हो जाती है ना, तो हम सबको माफ़ कर देते हैं। हाँ, वक्त लगता है कई बार लोगों को माफ़ करने में, लेकिन हम माफ़ कर देते हैं और कई बार उन्हें मौका भी दे देते हैं। बट जब बात तो खुद की आती है तो ना हम खुद को माफ़ करते हैं ना मौका देते हैं। भैया खुद के साथ इतना टफ क्यों हो जाते हैं, रफ एंड टफ की भी अपने साथ तो एकदम जंगली वाला माहौल है, बाकी लोगों के साथ तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा क्यों होता है? खुद को माफ़ करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या इतना बेकार है खुद से मोहब्बत करना? नहीं ना। तो ये सेल्फ लव को बनाए रखिए, खुद को माफ़ कर दीजिए, और जैसे हैं आप बेहद खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, और ख़ुद में आप मुकम्मल हैं। इस चीज़ को याद रखिए, खुद को कबूल कीजिए, और ऑफ कोर्स आइए चलिए सुनते हैं छोटा सा गाना, यानी कि चलते हैं छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक की उस तरफ। आप इंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे इस ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए अटेंडेंस लगाइए आप अपनी अपनी चैट बॉक्स में, और मिलते हैं, बताते हैं कि आपके दिलों को कैसे पिघलाना है। हालांकि सूरज ज़्यादा पिघलाने पर लगे पड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी बताते हैं कि आपका ये तो ठंडा सा रुख आपने कर रखा है खुद से, इसमें गर्मी कहां से लानी है, बताते बताते। लेकिन उससे पहले एंजॉय करें ये सॉन्ग आहिस्ता। हां जी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही मोहब्बत होती है खुद से, आहिस्ता आहिस्ता ही आप सुनेंगे।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
4: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञान स्थली बीट्स नॉन स्टॉप, जहाँ गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5, सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत है आप सभी का आपके अपने मॉर्निंग वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी अपनी आर श्रीमती, मौजूद हूँ आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। एंड ऑफकोर्स आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। और ऑफकोर्स ये है हमारा सेकेंड लिंक। जाने से पहले हमने जैसे कि आपसे वादा किया था, हमने आपसे बात की थी कि भैया लौटकर आएंगे ना, तो एक बहुत ही गजब की बात आपको बताने वाले हैं, स्पेशली वो आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरी पहली चीज़ हमेशा आपसे ही जुड़ी होती है, मेरी दूसरी चीज़ भी आप ही से जुड़ी होती है, और आज जो आपसे जुड़ा है ना वो है आपके दिल की बातें। अक्सर आप भी परेशान होते हैं ना जब आपकी ज़िंदगी से कोई चला जाता है टाटा बाय बाय कर करके, और हमें लगता है कि नहीं वो इंसान हमें बहुत याद आ रहा है, उसके बिना रहा नहीं जा रहा है, ना जाने कितनी दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं। बट डॉक्टर्स इसको एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। अभी तक हमको जो इश्क मोहब्बत प्यार लगता है, डॉक्टर्स कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता भैया, सब केमिकल लोचा है, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे केमिकल्स के साथ छेड़खानी हो रही है और कुछ यही हो भी रहा है। तो फिलहाल आइए बात करते हैं कि जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो आपको इतनी तकलीफ़ क्यों होती है और आपका दिमाग चल किस पे रहा होता है। तो जब भी आपके साथ कोई होता है, कोई इंसान अगर आपके साथ है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो उस वक्त आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ चार केमिकल्स पे चलता है। पहला केमिकल डोपामिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा सेरोटोनिन, चौथा कॉर्टिसोल। यानी ये तो हम सबको पता है। फिलहाल डोपामिन और कॉर्टिसोल का नाम आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन काम क्या करते हैं ये? डोपामिन आपको रिवॉर्ड की फीलिंग दिलाता है। जैसे ही किसी इंसान का आपके पास कॉल आता है, उनका मैसेज आता है और आप देखते हैं कि अरे वाह मैसेज आ चुका है, हाय हेलो पूछा गया है, खाना खाया नहीं खाया, घर पहुंच गए नहीं पहुंच गए, तुमने काम कर लिया, तुम कैसे हो, तुम्हारा दिन कैसा है, ये आपके दिमाग को एक रिवॉर्ड लगता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये हमें सामने वाले ने मैसेज करके पूछ लिया है, दिमाग में तुरंत एक हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल भाषा में डोपामिन कहते हैं। वैसे ही आपको लगता है कि दुनिया एकदम अच्छी हो गई है, रेनबो नज़र आने लगे हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं। हालांकि वो बटरफ्लाइज होती नहीं है, वो सब केमिकल्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं छेड़ रहे हैं। इसके अलावा फिर जैसे ही वो इंसान आपसे मिलता है, आपको गले से लगाता है, तो आपको रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जो हमारा लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो जिसकी वजह से आपको प्यार होता है। जी हाँ, अगर आप अपनी केमिकल लोचा समझ लेना कि कौन से केमिकल की वजह से आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप उन्हें कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और इसीलिए जो लोग 10-10 साल 20-20 साल तक कभी मूव ऑन नहीं कर पाते, वो इस वजह से क्योंकि उनका न्यूरोबायोलॉजिकल विड्रॉल जो है वो ठीक नहीं हो रहा होता है। तो भैया ऑक्सीटोसिन, इसमें जितनी भी प्यार भरी बातें हैं, गले से लगाना है, मिलना है, मिलाना है, ये वो सारे हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ कर देते हैं। आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इसके बाद आता है आपका सेरोटोनिन, ये वो है जो आपके मूड को स्टेबल करता है। जी हाँ, किसी से मिलने के बाद आपका अगर मूड स्टेबल हो रहा है, आप बहुत दुखी थे, बैठे हुए थे, और कोई अचानक से आपका बेस्ट फ्रेंड आ जाए, कोई पार्टनर आ जाए, या फिर कोई भी ऐसा इंसान आ जाए जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, तो आपका मूड धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आप भले गुस्से में हो कि आज तो लड़ाई कर ही देंगे, 3-4 हड्डी तोड़ ही देंगे, बट जैसे ही वो आता है सारा गुस्सा धरा का धरा रह जाता है। इसके पीछे की वजह यही है कि यह हमारे अंदर सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जो मूड को स्टेबल करने में मदद करता है, जो मूड को तुरंत ही स्टेबल करता है कि अरे अरे थामो थामो थामो, बैलेंस बैलेंस बहुत जरूरी है। और वैसे ही आपको लगता है कि नहीं, उसको देखकर, उसकी शक्ल को देखकर मेरा मूड स्टेबल हो गया, हालांकि आपके दिमाग के अंदर ही सारे केमिकल्स घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और जैसे ही उसकी मौजूदगी ख़त्म होती है या वो हमसे दूर जाता है, पूरे दिन बात नहीं होती है, उसकी एक झलक नहीं मिलती, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तब हमारा दिमाग रिलीज़ करता है कॉर्टिसोल, वही हार्मोन जो आपको स्ट्रेस देता है और कहता है ऐसे कैसे नहीं मैसेज किया है, मैसेज क्यों नहीं किया, अभी तक सीन क्यों नहीं किया होता है, और उस वक्त आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है। फिलहाल हेलन फिशर ने FMRI स्टडीज में जो ब्रेकअप के ऊपर उन्होंने पढ़ाई की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि आपका दिमाग इन्हीं चार हार्मोन्स के ऊपर चढ़ता है, और जैसे ही कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से बाहर जाता है, ये चारों एक साथ क्रैश हो जाते हैं
और आपको फिर समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या। कॉर्टिसोल बढ़ा जा रहा है, डोपामिन खत्म हो रहा है, डोपामिन की तलाश है दिमाग को, और दिमाग को डोपामिन बिल्कुल वही लगता है जैसे कोई किसी ड्रग से एडिक्टेड होता है। यानी कि अगर आपको ड्रग्स या फिर नशे की आदत है तो कोई भी इंसान जो नशे से जूझ रहा है और वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, सेम एडिक्शन आपको एक इंसान से होता है, सेम दिमाग आपका भी परेशान होता है, बस फर्क इतना है वो नशे ढूंढ रहे होते हैं और आप इंसान। आपका दिमाग उसी डोपामिन के पीछे पड़ा होता है और आपको बार बार क्लिक करता है कि जाके उसकी पुरानी चैट्स पढ़ो, उसकी कॉल सुनो, उसकी रिकॉर्डिंग देखो, उसकी फोटोज देखो, वीडियोज देखो, उसकी इंस्टाग्राम को देखो, और ऐसे स्टॉक आप करने लग जाते हो। आप चाहते नहीं हो, ये आपका दिमाग आपसे करवाता रहता है। तो इसे कंट्रोल कैसे करना है ये भी तो बताएंगे, ऑफकोर्स बताएंगे, जरूर बताएंगे। हेलन फिशर ने भी बहुत काम की कुछ बातें बताई हैं, तो आइए हम आपसे शेयर कर देते हैं। हेलन फिशर ने कहा है कि पहला हफ्ता यानी कि जैसे कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है, आपका दिमाग प्रोटेस्ट पे बैठ जाता है, धरने पे बैठ जाता है, हमको तो वही चाहिए, वी नीड माई डोपामिन, हमको दो। और इस प्रोटेस्ट में सबसे पहले आप उनके पीछे पड़ जाते हैं ये कहकर कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ एक बार आ जाओ, एक बार और मौका दे दो, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ये कहकर अगर आप किसी के पीछे पड़ रहे हैं तो ये आपके दिमाग का प्रोटेस्ट सिस्टम है, यानी कि धरने में बैठ चुका है, हड़ताल कर चुका है कि नहीं चाहिए तो वही चाहिए, इसके अलावा मैं किसी और को देखूंगा ही नहीं, मेरी आँखें हैं ही नहीं। क्योंकि डोपामिन उसे लगता है कि एक सिंगल जगह से रिलीज हो रहा है और वो जगह सिर्फ उसी इंसान के अंदर है, तो जो मुझे खुशी मिलेगी वो बस उसी के साथ मिलेगी, हालांकि दुनिया और भी सुंदर है, बट उस वक्त दिमाग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। दूसरा होता है आपका सेकंड वीक जिसमें डिस्पेयर होता है। ऑफकोर्स आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है, जब आपके साथ आपका पसंदीदा इंसान नहीं होता तो आपका कुछ करने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं करता, पीने का मन नहीं करता, दोस्तों के साथ मिलने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता, इसको कहते हैं एनर्जी का क्रैश डाउन होना। तीसरा यानी कि छठा हफ्ता जो होता है आपका, वो होता है डिटैचमेंट का, लोगों से दूर जाने के लिए आपका दिमाग अब तैयार है और वो कहता है कि चलो जाने दो, आप ही हो क्या, हम भी अपने जिंदगी के हीरो हैं, बताते हैं तुमको हम किया है। आपका दिमाग धीरे धीरे डिटैचमेंट की तरफ जाना शुरू करता है, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो इंसान आपको एक वक्त में बहुत ज्यादा पसंद होता है, ऑल सडन वही इंसान को देखकर आपको लगता है ये मेरी पसंद थी भैया, ऐसे कैसे पसंद कर लिए थे। एक्चुअली में वो जो डोपामिन आपको मिल रहा होता है ऑल सडन वो खत्म हो चुका होता है, अब आपके दिमाग को डोपामिन किसी और चीज से मिल रहा है, और इसीलिए वो इंसान आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही था, बट अब आप उसे जज कर रहे हैं ये सोच कर कि इसको मैंने पसंद किया था, सच में मजाक मत करो यार, क्योंकि आपका दिमाग आपको ये चीज अंदर से पेन आउट करता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो कहा है हेलन फिशर ने कि आप 90 दिन के नो कॉन्टेक्ट में जाएं, क्योंकि 90 दिन काफ़ी होते हैं किसी से भी दूर जाने के लिए, इवन 21 दिन काफ़ी होते हैं किसी आदत को बदलने के लिए आपके दिमाग को। आप अपनी स्लीप साइकिल फिक्स करें, जैसे ही ब्रेकअप होता है लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है, सीने में भारीपन रहता है, उसको ठीक करने के लिए आपको टाइम पर सोना ज़रूरी है। जब आप टाइम पर सोते हैं आपका कॉर्टिसोल डाउन होता है, आपका कॉर्टिसोल डाउन होता है तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होता है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है, पसीना आने तक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये हैप्पी हार्मोन्स आपको वही फीलिंग देते हैं जो उस इंसान के साथ ये बात करने से हो रही थी। सनलाइट में बैठिए, कुछ नई स्किल्स को लर्न कीजिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं ना, किसी चीज़ को सीखते हैं, तो आपके दिमाग को एक रिवॉर्ड फील होता है, क्योंकि ये एक चैलेंज था उसके लिए, मैं नहीं आता, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये अभी तक चल रहा है। अगर उसने कोई नई भाषा सीखी है, कोई नई चीज़ सीखी है, कोई नया गिटार बजाना सीखा है, कोई नई धुन पकड़ी है, तो उससे उसका डोपामिन रिलीज होगा और धीरे धीरे आप उस इंसान से दूर हो सकेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती भैया किसी के साथ नहीं रहा करते हैं। तो ये थी छोटी सी साइंस आपके पूरे ब्रेकअप साइकिल के पीछे कि आपका दिमाग क्यों इतना परेशान होता है किसी के लिए, क्यों आप इतना आंसू बहाते हैं कि पांडे तालाब भी भर जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्रेकअप क्यों इतने ज़्यादा हर्ट करते हैं, क्यों किसी का चला जाना इतना ज़्यादा हर्ट करता है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ आपके न्यूरोबायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जब ये विड्रॉल होती है या आप सही तरीके से इनको नहीं समझ पाते हैं तब ज़्यादा परेशान करते हैं, और वहीं पर जो लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं वो अपने आप को संभाल ले जाते हैं। ये सारा का सारा एक केमिकल लोचा है, जब तक आप केमिकल्स के साथ सही से नहीं खेलते तब तक आपको तकलीफ ही होती है। ऑफकोर्स केमिस्ट्री लैब में भी तो यही था ना कि केमिकल्स के साथ हमेशा जुड़े
लेकिन बहुत ध्यान से, केमिकल्स कहीं भी ब्लास्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आपके ब्रेकअप के पीछे की साइंस? अगर मजा

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले प्रोग्राम मॉर्निंग का, स्पेशल प्रोग्राम एक्चुअली आपका अपना गुड मॉर्निंग गोंडा। मैं हूं आपकी अपनी आरजे रति है, एंड ऑफ कोर्स आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और अभी तक हमने बात की थी आपके दिल की, लेकिन अब बात करेंगे आपके चीजों की। एक्चुअली नेचर ना हमें बहुत कुछ सिखाती है, इवन आपके आसपास की जो चीजें हैं जो होती रहती हैं, जिन पर शायद हम कभी ध्यान नहीं देते, फिर चाहे वो छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। और कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो चार लोगों की मेंटालिटी को ज़रूर अपनी मेंटालिटी में बना लेना चाहिए। वो चार लोग कौन हैं और उनमें ऐसा क्या खास है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी में तैरने वाली, कहने को सबसे खूंखार और सबसे ज़्यादा खतरनाक, नाम है शार्क। यूं तो इतनी खतरनाक वो होती भी नहीं है जितना उसका नाम बना हुआ है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जैसे पानी में तैरती हुई शार्क है ना, वैसे ही आपकी जिंदगी में लोग भी हैं। पानी में हमेशा दो तरह के लोग आपको मिलेंगे और जिंदगी में भी दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। पहला, जो चेहरे से बड़े मासूम दिखाई पड़ते हैं, जैसे पानी में हमेशा डॉल्फिन नजर आती है, कितनी खूबसूरत लगता है ना, कि हमेशा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, लेकिन ये सबसे खतरनाक होते हैं। दूसरा, वो जो शार्क की तरह बड़े डेंजरस नजर आते हैं, लगता है कि इनके आसपास भी रहोगे तो जान चली जाएगी, बट ये लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह किसी पर कभी हमला करते ही नहीं। जी हाँ, आपकी जो डॉल्फिन है जो बड़ी मासूम नजर आती है, अगर लोगों को सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया है या सबसे ज्यादा जाने किसी ने ली है, तो ये मासूम सी शक्ल सी दिखने वाली मछली है। और जो सबसे ज़्यादा आराम से पानी में तैरती रहती है, जिसको अगर शायद हाथ लगाकर मोड़ दो तो वो रास्ता भी बदल लेगी, वो सबसे खतरनाक दिखने वाली शार्क है। बट अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में भी यही गलतियाँ करते हैं, हम उन लोगों की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं जिनकी शक्ल बड़ी मासूम दिखती है, जो बातें बहुत मीठी मीठी कर रहे हैं, जिनके रियल इंटेंशंस हमें पता ही नहीं चलते, और हमें लगता है कि यार ज़िंदगी में ऐसे ही तो लोग होते हैं, ऐसे ही तो बातें होती हैं, ऐसे ही अच्छे लोग होते हैं। और हम ये समझ नहीं पाते कि ये जो ट्रैप है, यानी कि ये जो बहुत मीठी मीठी बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बीमार करती हैं, ना कि आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। वहीं शार्क जैसे जो बड़े ख़तरनाक से दिखने वाले, बहुत रूड दिखते हैं कुछ लोग, जिनकी शक्ल पे दिखता है यार तो शक्ल से ही खड़ूस है, इससे बात क्या करना, आप उनसे बात करके देखिए, असल में आपको समझ में आएगा ये कितने बढ़िया होते हैं। फिलहाल बात ये नहीं है, हमारी मेंटालिटी की बात इतनी है कि भैया शार्क के लिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर शार्क तैरना बंद कर दे तो उसकी जान चली जाती है, मतलब उसको लगातार, अगर वो कहीं भी है तो उसको लगातार अपनी बॉडी को मूव करना ही पड़ेगा, उसे लगातार तैरना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है, अगर आप कोई चीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुकिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, और अगर आपने उस चीज़ को रोक दिया तो आपका दिमाग उसको भूलने लग जाता है और आप भीड़ से पीछे होते चले जाते हैं। अभी तक जिस काम में आप बहुत आगे थे, अचानक से उसी में आप पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मूवमेंट आपकी प्रोसेस को रोक देता है, आपकी प्रोग्रेस को रोक देता है, इवन आपको रोक देता है। तो हर बार हर एक जगह पर आपको चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी अपनी ज़िंदगी में ब्रेक मत लीजिए, क्योंकि जब आप ब्रेक लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी प्रोग्रेस ख़त्म करते हैं, आप खुद की एक आइडेंटिटी ख़त्म करते हैं। जस्ट लाइक शार्क, अगर उसने तैरना बंद किया तो वो मारी जाएगी, और अगर आपने मूवमेंट करना बंद किया तो आप लोगों से पीछे होते जाएंगे। यानी कि आपने अगर सीखना बंद किया, आपने सीखी हुई चीज़ों को दोहराना बंद किया, तो आप पीछे होते जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं एक उस छोटी सी चींटी की, जो अक्सर आपको दिखती है, इवन आपके पैरों के नीचे भी आ जाती है, बट आपको पता है चींटी इकलौती एक ऐसी इंसेक्ट है जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, जो हर वक्त अपना काम करती है। आपने देखा होगा चींटी अपने वज़न से 10 गुना ज़्यादा वज़न उठा लेती है, और उसको कोई मोटिवेट नहीं करता आकर के कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। उसको किसी मोटिवेशन सॉन्ग की भी ज़रूरत नहीं है कि जब तक हमारा मोटिवेशन नहीं आएगा काम करने का, वर्कआउट करने का, पढ़ने का, काम करने का, सुनने का, जॉब पे जाने का, तब तक हम नहीं जाएंगे, बेड से ही नहीं उठेंगे।
चींटी के अंदर ही कुछ भी नहीं है। वो अपनी पूरी जिंदगी यूं ही लगातार काम करती रहती है। और कहते हैं कि भैया जो लगातार अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने पर ध्यान देते हैं बिना किसी मोटिवेशन का इंतजार किए, वो अपनी लाइफ में सबसे सक्सेसफुल होते हैं। और अगर वहीं पर अगर हम मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं तो मोटिवेशन बस उस आग की तरह है जो पेट्रोल डालने से अचानक से उठ तो जाती है बट कुछ सेकंड में शांत भी हो जाती है। वही डिसिप्लिन टफ होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका प्रोसेस जितना स्लो है उतना ही ज़्यादा कामयाब होता है। तो शाक के बाद अगर आपको किसी से कोई चीज़ सीखनी है तो वो है आंट यानी कि चींटी। चलिए अब बात करते हैं एक और जानवर की, या फिर कहें तो एक पक्षी की, जिसको ईगल मेंटेलिटी कहते हैं। आपने देखा होगा जब आसमान में चील उड़ती है यानी कि ईगल उड़ते हैं तो आसमान में हजारों चीजें देखता है, लेकिन जैसे ही उसका टारगेट फिक्स होता है, जैसे उसे पता होता है कि जमीन पे रेंगता, जमीन पर चलता कौन सा जानवर, कौन सी मछली जो पानी में तैर रही उसको उठाना है, उसको कुछ और दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट, सिर्फ अपने टारगेट की तरफ होता है। आसमान में कौन उड़ रहा है, आसमान में तूफान आया कि नहीं आया, जमीन पर उस मछली के अलावा और कितनी मछलियां तैर रही हैं पानी के अंदर, चूहे के अलावा और कितने सारे चूहे हैं जो अभी अभी दौड़ रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ एक पिन पॉइंट होता है और वो उसका टारगेट होता है। आपके साथ भी यही होता है ना, हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है कि हम अपने एम से भटक जाते हैं, हम अपने टारगेट से भटक जाते हैं और हमें लगता है यार कि हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ आपके टारगेट को छोड़कर बाकी सब पर है। आप अपना टारगेट लॉक करें, उस पर अपना ध्यान, उस पर अपना फोकस लॉक करें, और यकीन माने जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को देखते हैं तो आप उसे भी कैच कर लेते हैं, जैसे जैसे आसमान में, हजारों आसमान में उड़ता हुआ वो ईगल जिसने पूरी दुनिया देखी होगी, जिसने शायद नीचे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन पकड़ा सिर्फ उसी को जिस पर टारगेट फिक्स था। इसके अलावा आखिरी और सबसे चालाक कही जाने वाली फॉक्स यानी कि लोमड़ी। लोमड़ी को हम बचपन से चालाक कहते आते हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, बल्कि लोमड़ी चालाक नहीं होती, लोमड़ी सिखाती है कि किस तरह से आप अपने प्रॉफिट को गेन करते हैं, कैसे आप सिचुएशंस को अडाप्ट करते हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान की जगह पर रहते हैं, किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, किसी इंसान के साथ रहते हैं जो बहुत टफ है, तो कैसे आप उनके साथ रहकर अपना काम कर सकते हैं। ऐसी जगह पर हैं जहां आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो फिर वहां पर आप कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ वही सिखाती है, अडैप्टेबिलिटी, किस तरह से आप किसी सिचुएशन में खुद को अडैप्ट करते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती। कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कभी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। इन सब के बीच में अपने लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकालना है ये सीखना है तो सीखिए लोमड़ी से। हाँ, चालाकी का टैग तो हमने उसको दे रखा है, बट वो चालाक नहीं, होशियार है। वो जानती है कि कब, कहाँ, कैसे खुद में बदलाव लाना है। शार्क, चींटी, ईगल, लोमड़ी, ये वो सारे लोग हैं जो आपको सिखाते हैं कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो किन किन चीजों पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। अगर आप में आपने किसी भी इनमें से किसी एक भी जानवर पर, एक भी इंसेक्ट पर सीखा हो कुछ तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं और ऑफकोर्स करेंगे आपसे और सारी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोडा अपनी आज शांति के साथ। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

हाँ जी, तो अक्सर हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि भारत स्पोर्ट्स में आगे क्यों नहीं है। स्पेशली क्रिकेट को छोड़कर जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हमें लगता है कि भैया इंडिया पीछे क्यों रह जाता है मेडल्स लाने में, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है हमारी खुद की सोच। जब भी कोई इंसान फुटबॉल खेलने की कोशिश करता है, जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जब भी कोई स्पोर्ट्स में जाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले हम उसे ये कहकर रोक देते हैं कि नहीं, गेम से क्या होता है, घर थोड़ी चलता है। और उसे भी बड़ी बात, अगर कोई लड़की आकर ये कहे कि मुझे फुटबॉल खेलना है या फुटबॉलर बनना है, तो हम उसे ये कहकर रोक देते हैं, फुटबॉल लड़कियों का खेल नहीं है ना। जी हाँ, होता है ऐसा। लेकिन मैं ये कहानी आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी फुटबॉलर की स्टोरी है जो कभी खुद तो फुटबॉलर नहीं बनी, लेकिन उन्होंने कसम खाई हुई है कि वो अपने गांव की, अपने क्षेत्र की हर एक लड़की को जिसे फुटबॉल में इंटरेस्ट है उसे फुटबॉलर बना कर रहेंगी। और उन्होंने बहुत सारे लोगों की, इवन बहुत सारी लड़कियों को जॉब से लेकर के स्पोर्ट्स तक आगे भी बढ़ाया है। क्या नाम है उनका? लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने वाले प्रोग्राम मॉर्निंग का स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गुंडा। मैं हूं आपकी अपनी आरती उन्नति और ये है मेरा इंस्पायरिंग सेगमेंट, जिसमें आपको कुछ ऐसी कहानियां मैं सुनाती हूं, ऑफ कोर्स जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड करती है। हाँ, बहुत सारे लोगों की कहानियां हम पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी कहानियां आप तक कभी पहुंची ही नहीं, जो इंस्पायर्ड तो बहुत करती हैं बट उनकी कहानी कोई सुनाता ही नहीं। तो उनकी कहानी ऑफ कोर्स आप सुनते हैं मेरी जुबानी। फिलहाल आज हम बात करेंगे उस महिला की जिनको लोगों ने ये कहकर रोक दिया कि लड़कियों की बस की बात नहीं है, लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती, ये गेम तो लड़कों के लिए है। इवन स्टार्टिंग में हर गेम को लेकर यही होता था, सारे गेम्स पर टैग लगा दिया जाता था जेंडर का कि ये तो जेंडर वाइज गेम है, फुटबॉल है तो लड़कियां नहीं खेलेंगी, क्रिकेट है तो लड़कियां नहीं खेलेंगी। बट क्रिकेट में खेला जाने वाला, या फिर कहें तो जो बॉल फेंकी जाती है आजकल ऊपर से ओवर द शोल्डर, वो कभी थी ही नहीं। अगर वो एक महिला की सोच ना होती, अगर उसके कपड़े उसे तंग ना करते और उसकी जिद ना होती कि मुझे भी गेम खेलना है, मुझे भी लड़कों की तरह क्रिकेट खेलना है और मुझे भी बॉल फेंकना है, स्पिन करना है, तो शायद आज भी लोग नीचे से ही बॉल डाल रहे होते जैसे कि हम छोटे बच्चों को देते हैं लुड़का के। और ऐसे में ही एक और महिला है हमारी भारत की, जो कि कोई प्रोफेशनल प्लेयर तो नहीं है बट उनका काम ऐसा है कि आपको लगेगा कि इनको प्रोफेशनल होना चाहिए। नाम है भारती मुड़ी। वेस्ट बंगाल में रहने वाली ये वो हैं जो सबको इंस्पायर्ड करती हैं। जी हाँ, इनके पास खुद तो पैसे नहीं थे, इनकी आर्थिक तंगी थी, प्लस बचपन से फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। अब क्योंकि जेंडर से ये लड़की पड़ गई और आर्थिक रूप से कमजोर, तो समाज ने उस वक्त रोक दिया ये कहकर के कि लड़कियों के बस की बात नहीं होती, फुटबॉल लड़कियों का गेम नहीं होता। और ये बात उनकी सक्सेस को, उनके सपनों को रौंद चुका था। हाँ, वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाई, जो फुटबॉल में इतनी एक्सपर्ट थी उन्होंने कभी फुटबॉल खेला ही नहीं। बट उसी दिन उन्होंने कसम खा ली कि अगर मैं नहीं खेल सकी तो क्या, और लोग खेलेंगे, मैं सिखाऊंगी और इतने अच्छे से सिखाऊंगी कि मेरे सिखाए हुए बच्चे बाहर तक जाएंगे, और स्पेशली वो सब लड़कियां होंगी। कुछ वक्त बाद उनकी शादी कर दी जाती है और शादी के बाद वो यही थॉट अपने पति के साथ शेयर करती हैं कि देखो भैया, मेरे को सिखाना है फुटबॉल, क्योंकि बचपन से मैंने कसम खाई हुई है ये बात, मुझे नहीं खेलने दिया गया, मुझे बहुत मन था खेलने का, बहुत शौक था मुझे फुटबॉल का, बट लोगों ने ये कहकर रोक दिया कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती है, तो मुझे इस सोच को बदलना है, लोगों को दिखाना है कि लड़कियां भी फुटबॉल खेलती है। उनके पति ने उन्हें सपोर्ट किया। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी का ही हाथ होता है, उसका भरोसा होता है, उसका सपोर्ट होता है। और ये चीज आपको भारती मुड़ी की इस कहानी में भी मिलेगा। उनके पति ने उनको सपोर्ट किया। और आपको बता दे, 2009 में इन्होंने ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर, जी हाँ, कोई
जीन्स टॉप नहीं पहना, कोई शर्ट पैंट नहीं पहनी, कोई लोअर टी शर्ट भी नहीं पहनी, कोई जंप सूट नहीं पहना, इन्होंने नॉर्मल साड़ी पहनी, वही साड़ी जो हमारे भारत की हर एक दूसरी महिला पहन रही है। उसी साड़ी को पहनकर अपना पल्लू लपेट कर लड़कियों के पास पहुंच गई उन्हें सिखाने के लिए कि तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। धीरे धीरे करके उनके पास बच्चे आना शुरू कर चुके थे। जितनी भी लड़कियां थी उनके पास, उनकी अगर टोटल संख्या की बात करें तो लगभग 18 गर्ल्स यानी कि 18 लड़कियों को उन्होंने स्टेट लेवल के लिए तैयार किया है। उनके बहुत सारे बच्चे गोवा, चंडीगढ़, भोपाल जैसे इंडियन टूर्नामेंट में खेल भी चुके हैं। सम प्लेयर्स यानी कि कुछ प्लेयर्स को तो गवर्नमेंट की तरफ से जॉब भी मिल चुकी है। इवन उनकी खुद की डॉटर भी एक प्रोफेशनल फुटबॉल रेफरी बन चुकी है। भैया सपने की उड़ान आप रोक सकते हो, कुछ वक्त के लिए रोक सकते हो, लेकिन अगर सपनों में दम है, सपनों में जान है, तो आप किसी को तो रोक नहीं सकते। आप उनको किसी चीज में कैद नहीं कर सकते। ये बात मेरी हर इंस्पायरिंग स्टोरी में जरूर दिखती है। कोई आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो कोई शिक्षा से कमजोर होता है, लेकिन जिससे भी ठाना हुआ है कि बदलना है तो वो बदल कर ही रहते हैं। हाँ, हो सकता है कि इनके पास कोई प्रोफेशनल कोच ना हो, प्रोफेशनल डिग्री ना हो, बट सपनों में इतनी ताकत है कि प्रोफेशनलिज्म की जरूरत भी नहीं। भारती मुड़ी, जिन्होंने शायद कभी फुटबॉल का सपना ना देखा होता, तो शायद आज ये 18 लड़कियां जो स्टेट लेवल पे खेल रही हैं, जो गोवा, चंडीगढ़, भोपाल जाकर खेल रही हैं, उनकी खुद की बेटी जो फुटबॉल में ही रेफरी है, वो ये काम नहीं कर रही होती, आज वो भी कुछ और कर रहे होते। भारत ने इस बार कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स में 4th प्लेस हासिल किया है, बट ये बात शायद आपको ना पता हो। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन आज भी हम स्पोर्ट्स को एक अलग नजरिए से देखते हैं। ये देखते हैं कि स्पोर्ट तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है, बाकी किसी काम के लिए नहीं। और इसीलिए हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आते हैं, वो गोल्ड लाने के बाद भी सब्जियों का ठेला लगाते हैं। अफसोस की बात है, बट ये सच है। हमारे स्पोर्ट्समैन जो ओलंपिक में गोल्ड ला रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का झंडा लहरा कर आ रहे हैं, वो जब भारत वापस आ रहे हैं तो हम उन्हें इतनी भी पहचान नहीं दे पा रहे कि वो ढाबे पर, टपरी पर चाय बेचकर या सब्जी बेचकर अपना जीवन ना गुजारें। दूसरे देशों में होता है, जब भी कोई स्पोर्ट्समैन वापस आता है तो उसे बहुत सम्मान मिलता है, वो अपनी पूरी जिंदगी बहुत आलिशान महलों में गुजारते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों हम अपने बच्चों के सपनों को बस इसलिए रौंद देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि गेम्स में कुछ नहीं रखा है? और क्यों हम सिर्फ क्रिकेट को ही पहचान देते हैं? ये बात सोचने की है, क्या गेम्स जेंडरवाइज होते हैं या गेम्स में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट आता है? सोचिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपके चैट बॉक्स में। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं और आज के इंस्पायरिंग सेगमेंट में आज किस किस की कहानियां होने वाली है बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस पार सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड अपनी आज के साथ।

जी, तो एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी अपनी आरजी नदी मौजूद है आप सभी के साथ लेकर के कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं कुछ अलग कर दिखाने की। और आज की कहानी में हमने पहली कहानी तो

एक ऐसी महिला सामने आई, एक ऐसी डॉक्टर सामने आई जिन्होंने खून का नहीं दूध का डोनेशन शुरू किया, जिन्होंने बताया कि माओ से मुझे ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत है, यानी माँ के दूध की जरूरत है। तो जो भी हेल्दी माँ है, यानी कि जो स्वस्थ है, वो अपने मिल्क को डोनेट करें। जी हाँ, वो अपने माँ, जो माँ का दूध है उसे डोनेट करें। और उन्होंने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया जिसके अंदर बच्चों के लिए माँ का दूध रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तब वो दूध उन बच्चों तक पहुँचाया जाता था। लेकिन इसकी वजह क्या थी, चलिए बता देते हैं। महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में उस वक्त ज्वाइन हुई एक ऐसी डॉक्टर जिन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर बच्चों की मौत बहुत ज़्यादा हो रही है। 70 बच्चे हर वक्त मारे जाते हैं। अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 70 बच्चों की जान चली जाती है। और ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आई थी कि क्यों। धीरे धीरे जब उन्होंने इसको समझना शुरू किया तब उन्हें पता चला कि ये हॉस्पिटल में मशीन्स की गलती नहीं है, गलती है हाइजीन की, गलती है माँ के दूध की कमी की। क्योंकि उस वक्त जो बच्चों को दूध दिया जा रहा था वो फॉर्मूला मिल्क था, यानी कि वो डिब्बे वाला दूध था, ना कि माँ का दूध। और बच्चों को डिब्बे वाला दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो उन्हें नुकसान पहुँचा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर साफ सफाई नहीं हो पा रही थी। ये बात जैसे ही उन्होंने नोटिस की तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा, एनी गेस? जी हाँ, सबसे पहले उन्होंने हॉस्पिटल के जो कॉमन बाथ थे, यानी कि वहाँ जहाँ बच्चों को, सभी बच्चों को एक साथ मिलकर नहला दिया जाता था, उस जगह को ही बंद कर दिया, ये कह करके कि एक बच्चा जहाँ नहाएगा वहाँ दूसरा बच्चा नहीं नहाएगा, क्योंकि इससे बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और इसी वजह से बच्चे जन्म लेते ही 70% मारे जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इस कॉमन बाथ को बंद किया, हॉस्पिटल्स के कर्मचारियों को हिदायत दी गई कि आप हॉस्पिटल में काम करोगे तो इसके पीछे आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, यानी कि साफ सफाई से कोई समझौता मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये जैसे ही बात कर्मचारियों तक पहुंची और उन्हें पता चला कि कॉमन बाथ सिस्टम भी बंद हो चुका है तो हॉस्पिटल में ऑफ कोर्स अफरा तफरी थोड़ी सी तो मची थी, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान दिया, उनका साथ दिया और साफ सफाई के ऊपर भी ध्यान दिया गया। अब क्योंकि साफ सफाई हो चुकी थी, कॉमन बाथ सिस्टम बंद हो चुके थे, तो बच्चों की हालत में सुधार तो था बट बच्चों की जान अभी भी जा रही थी। तो उन्होंने नोटिस किया कि बच्चों की जान इसलिए जा रही है क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिला ही नहीं पा रही है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है, उसका फिजिकल, मेंटल और बहुत सारी मेडिकल की वजह है। तो क्या बच्चों को दूध नहीं मिलेगा? मिलता था, बच्चों को दूध मिलता था, लेकिन पैकेट वाला, पाउडर वाला, फॉर्मूला मिल्क जो कि लैब में बन रहा है। और बच्चों को लैब वाला दूध की ज़रूरत नहीं होती, बच्चों को दूध की ज़रूरत होती है माँ की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने NICU में माओं को अंदर जाने दिया और कहा कि आप जाकर बच्चों को ब्रेस्ट फीड करो, यानी कि अपना दूध पिलाओ। इसके अलावा जो माएँ स्वस्थ थीं उनसे निवेदन किया गया कि अगर आप दूसरे बच्चों की भी जान बचा सकते हो, जिनकी माएँ दूध नहीं दे पा रही, जिनकी माएँ दूध नहीं पिला पा रही हैं, उनके बच्चों के लिए क्या आप दे सकते हो? और ऑफ कोर्स माँ तो माँ होती है, माँ फर्क नहीं करती, और उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन माओं ने जो स्वस्थ थे, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, उन्होंने उनको लिए भी डोनेट करना शुरू कर दिया, अपना ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल्स में जहां 100 में से 70 बच्चे मारे जा रहे थे, वो संख्या घटकर 40 पहुंची थी। धीरे धीरे वो संख्या और कम होती गई क्योंकि हाइजीन, यानी कि साफ सफाई का ख्याल रखा जाने लगा, बच्चों को माँ का दूध मिलने लगा, पैकेट वाला दूध पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और उन्होंने ही 1989 में अपने हॉस्पिटल के अंदर बनाया पहला ह्यूमन मिल्क डोनेशन बैंक, और आज भी ये है। जी हाँ, आज भी अब माएँ अपना दूध डोनेट करती हैं उन बच्चों के लिए जिनकी माँ स्वस्थ नहीं है या जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, जिनको ज़रूरत है। माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है 6 महीने तक के लिए, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके बच्चे को आगे बढ़ने में, उसकी ग्रोथ में, उसकी इम्यूनिटी में, उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता में, हर एक चीज़ में मदद करता है। और जब हम बच्चों को पैकेट वाला दूध

देते हैं, फॉर्मूला मिल्क देते हैं या लैब में डिजाइन दूध देते हैं, तो बच्चों के अंदर वो ग्रोथ नहीं आ पाती है जो आनी चाहिए और इसीलिए बच्चों की जान चली जाती है। माल न्यूट्रिशन भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी बच्चों के अंदर कुपोषण देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिसके लिए सरकार आए दिन कदम उठाती है। अनाज को देना, ज़रूरी विटामिन मिनरल्स पहुँचाना, बहुत सारी चीज़ें, बट जहाँ तक कोशिश हो आप भी करें, आप भी बच्चों तक खाना पानी ज़रूर पहुँचाएँ, उनको सही न्यूट्रिशन ज़रूर दें, क्योंकि यही बच्चे आपके भविष्य हैं। फिलहाल इसके अलावा हम आपको बता दें, इनका नाम था अर्मिदा फर्नांडिस। इनकी खुद की बेटी की भी कैंसर से डेथ हो गई। अब एक माँ एक डॉक्टर भी थी, एक डॉक्टर एक माँ भी थी। अब बच्चे की डेथ होने के बाद, यानी कि उनकी खुद की बेटी जब कैंसर से इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, तो लोगों को लगा था कि शायद अब ये हार मान जाएंगी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। इवन अपनी बेटी के नाम से एक और हॉस्पिटल शुरू कर दिया और अपने रिटायरमेंट के बाद वो लोगों से मिलने जाने लगी। वो आज भी जाती हैं, वो अपनी नौकरी के दौरान भी जाती थी, क्योंकि उनका कहना था कि अगर लोगों की जान बचानी है तो सिर्फ हॉस्पिटल्स में रहकर जान नहीं बचाई जा सकती, हॉस्पिटल से बाहर निकलना होगा, गांव-गांव जाना होगा, जनजातियों के पास जाना होगा, बंजारों के पास जाना होगा, हर उस इंसान के पास जाना होगा जिसको मेरी ज़रूरत है। और ऐसा करके उन्होंने अपने पूरे सर्विस में न जाने कितने बच्चों की, कितने माओं की और कितने लोगों की जान बचाई है। नाम भूलिएगा नहीं, अर्मिदा फर्नांडिस। 2026 में इन्हें पद्म श्री भी मिल चुका है। भाई काम ऐसे ही होते हैं, आपको लगता है कि शायद आपके अच्छे कामों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बट निकलता ज़रूर है, और यही कहानियां हैं जो आपके समाज में कहीं ना कहीं बदलाव लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आपको कैसी लगी अर्मिदा फर्नांडिस की ये स्टोरी, बताइएगा ज़रूर। और क्या आपको पता था कि आपके भारत में एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक भी है, जहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया जाता है? पता था आपको? अगर नहीं तो चैट बॉक्स में ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना थॉट बताइएगा, आप क्या सोचते हैं। और एंजॉय करते रहिए छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार आते हैं, किसी और के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

भैया ये तो आपने सुन लिया उन खिलाड़ी की जो हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर ऐसे ही कोई खिलाड़ी आपको असल जिंदगी में मिल जाए, अच्छा लगेगा ना। फिलहाल कहानी सुनाने से पहले आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरीज में हर एक कहानी एक ऐसे इंसान की होती है जो हमारे ही बीच से निकला होता है, जो बहुत कॉमन है, जिसकी शक्ल अकल यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति भी हमसे नीची हो सकती है, इसके बाद भी वो हार नहीं मानते और इसीलिए वो इंस्पायर करते हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो गुड मॉर्निंग गोंडा, अपनी आशीर्वादी के साथ आपके अपने एफएम रेडियो 99.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन पर चल रहा है मेरा इंस्पायरिंग वाला सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत सोल्स की, कुछ ऐसे उम्दा लोगों की कहानियों की, जिनकी कहानियाँ सुनने के बाद लगता है यार जब ये कर सकते हैं तो वाई नॉट अस, वाई नॉट मी। और अभी तक आपने डॉक्टर की बात सुनी थी जिन्होंने 1989 में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बना दिया, लेकिन अब बात करेंगे उस इंसान की जिसने अपनी माँ को खो दिया तो कसम खा ली कि किसी और की माँ की जान नहीं जानी चाहिए। ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये चाय के बागानों में काम करने वाला एक इंसान था और रुपए मिलते थे सिर्फ और सिर्फ 4,000। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जो ऑफकोर्स ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, और इसके पीछे की वजह उनकी आर्थिक तंगी थी, यानी कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वो नहीं कर पाए, और बीच में ही उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ देने के साथ साथ चाय के बागानों में काम करना भी शुरू करना पड़ा। वो चाय के बागानों में काम करते, दिन भर चाय की पत्ती तोड़ते, उनके पेड़ों को उगाते और उन्हें उसके लिए कीमत मिलती 4,000 रुपये। उस 4,000 रुपये को घर लाते और घर लाकर अपना घर चलाते, अपनी माँ का ख्याल रखते। एक रात जब वो घर आए तो देखा उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना है। एम्बुलेंस के लिए कॉल किया तो एम्बुलेंस को आने में वक्त लग रहा था। वो सबके पास गए, पूरे गांव में जितने भी घर थे उन्होंने सबके गेट खटखटा डाले, ये कहकर कि बस मेरी माँ की जान बचा लो, कोई तो मेरे साथ चल लो, और उस वक्त कोई उनके साथ नहीं गया। रात हो चुकी थी, एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुंची। जो लोग उनकी मदद करने के लिए सामने आए उन्होंने उनकी मदद की, लेकिन मदद में देरी होने की वजह से उनकी माँ की जान चली जाती है। बस वहीं से उन्होंने ठान लिया कि मेरी माँ की जान तो चली गई बट इस गांव में किसी और माँ की जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कर्ज लेकर, लोन लेकर एक बाइक खरीदी, बाइक को एक एम्बुलेंस में बदल दिया, एक ऐसी एम्बुलेंस जो कार की नहीं या फिर किसी चार पहिए वाहन की नहीं थी, बाइक से जुड़ी हुई थी। बहुत बड़ी एम्बुलेंस भी नहीं थी बट इतना ज़रूर था कि एक इंसान को सही वक्त पर सही इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सके। उन्होंने उस बाइक को एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया, बाइक के बिल्कुल बगल में एक छोटा सा चैम्बर बनाया जिसमें मरीज को बिठाया जाता था, खुद बाइक चलाते थे। वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि धूप है, बरसात है, बिजली गिर रही है, तूफान आ चुका है, सुनामी आ गई है, रात है, दिन है, ठंड है, गर्मी है, उन्होंने इस चीज़ को कभी देखा ही नहीं। उन्होंने बस ये देखा कि किसी को मेरी ज़रूरत है, और जैसे ही उनके पास एक कॉल आता कि भैया हॉस्पिटल जाना है क्योंकि घर में इमरजेंसी है, घर में बहुत तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल पहुँचना ही पड़ेगा, नहीं पहुँचे तो जान चली जाएगी, भैया ने कुछ भी नहीं देखा, बस अपनी बाइक उठाई जो उन्होंने लोन लेकर ऑफकोर्स खरीदी थी, वो उठाया, उस इंसान के घर पहुंचे। उस इंसान के घर पहुंचकर उन लोगों को लिया जो बीमार थे, उनको अपनी बाइक पे बिठाया, उस बाइक के पीछे बगल में जो चैम्पर बना हुआ था उस छोटी सी जगह पर उस इंसान को बिठाया और सही वक्त तक उन्हें अस्पताल पहुँचाया ताकि उनका इलाज हो सके, ताकि उनकी जान ना जाए। और ऐसा कर करके उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। बट कमाल की बात यह है कि उन्होंने सेवा के लिए एक भी पैसे नहीं लिए, उन्होंने कभी कोई पैसा चार्ज ही नहीं किया। लोग उन्हें देना चाहते थे पैसे बट वो कहते थे कि सेवा के लिए पैसे क्या लेना, मैं लोगों की जान इसलिए नहीं बचाता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, मेरी माँ की जान गई थी, मैं इसलिए लोगों की जान बचाता हूँ। उनकी ये एम्बुलेंस बाइक
न जाने कितने लोगों के घरों में जाती है, कितने लोगों की जान बचा चुकी है और कितने लोगों की जान आगे और बचाने वाली है। चाय के बागानों से शुरू हुई ये कहानी, अगर वो छोटा सा हादसा उनकी जिंदगी में नहीं होता, अगर उनकी माँ की जान सिर्फ एम्बुलेंस की देरी की वजह से नहीं होती, इलाज की देरी की वजह से नहीं होती, तो शायद ये कभी उनके दिमाग में आता भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जब इंसान के साथ कोई हादसा होता है ना, तो उसके पास मौका भी होता है उस हादसे से सीख कर कुछ अलग करने की, कुछ नया करने की, कुछ बदलने की। और उन्होंने बदलाव चुना, रोना नहीं। हाँ, दिल टूटा था, उम्मीद भी टूटी थी, गुस्सा भी लगी होगी, जरूर आया होगा, बट इस सब को साइड हटाकर उन्होंने देखा कि जब मेरी माँ की जान सिर्फ इलाज में देरी होने की वजह से जा सकती है, तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी। गांव में एम्बुलेंस को आने में बहुत वक्त लगता है और हर मरीज के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो एम्बुलेंस का इंतजार कर सके। इसीलिए उन्होंने खुद बाइक लोन पर ली, उसे एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया और लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। नाम, अगर आप इनका नाम जानना चाहते हैं, तो नाम है करीमुल हक, पश्चिम बंगाल के चाय के बागानों में काम करने वाला एक मजदूर जिसने एक बाइक एम्बुलेंस बनाई और आज लोग उसे करीमुल हक के नाम से नहीं बल्कि बाइक एम्बुलेंस दादा के नाम से जानते हैं। हम आपको बता दें, उन्होंने ढालाबारी और आसपास के गांवों में कई बीमार लोगों को अपनी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने का काम किया है, जिसके लिए एक पैसे भी चार्ज नहीं किए हैं। और इसी काम के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। तो ये थी कहानी उस इंसान की जिसके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था और उस छोटे से हादसे से उन्होंने एक नया इन्वेंशन कर दिया, लोगों की जान बचा ली। होता है, हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं किसी भी हादसे के बाद, किसी भी तकलीफ के बाद। पहला वो जो बहुत आसान लगता है, जो सिर्फ अंधेरों से भरा होता है, सिर्फ डार्कनेस होती है। दूसरा वो जो मुश्किल तो होता है लेकिन बहुत लंबा और चमकदार होता है, रोशनी से भरा होता है। हाँ, स्ट्रगल बहुत होते हैं लेकिन इसमें, क्योंकि जब आप दया चुनते हो, जब आप काइंडनेस चुनते हो, जब आप हमदर्दी चुनते हो, तो आपको तकलीफ होती है। वहीं पर जब आप दूसरों को तकलीफ देना चुनते हो, तो आपको पछतावा होता है। शुरुआत में लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं सबके साथ गलत करूंगा, बट ये तरीका हमेशा गलत है। और कहानियां उन्हीं की लिखी जाती है जिन्होंने आपदा में भी वो चुना जो बहुत मुश्किल था। तो ये तो थी कहानी करीमुल हक की, जो मैंने आपको बता दी, यानी कि एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस दादा की। आपको कैसी लगी ये स्टोरी? क्या आप इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अगर हाँ, तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैट बॉक्स आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन आपको मिलती है प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर, रेड एंड ब्लैक आइकन में, रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM के नाम से। अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, उसके बाद चलेंगे आपके चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस, आपके फीडबैक्स, और आज का शो आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल वाल ब्रेक के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत है आप सभी का आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी अपनी आरजी उन्नति और वक्त हो चला है आपके अपने चैट बॉक्स की तरफ चलने का। तो भैया, आज के चैट बॉक्स में जो मैसेजेस आए हैं उनको रीड करते हैं। आपके फीडबैक्स क्या कुछ रहे हैं, आइए वो भी जान लेते हैं।

0: सबसे पहला मैसेज जो आज आया है वनूप मिश्रा जी का आया है, जो लिख रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत ही बेहतरीन थॉट है आपका। एंड प्रीति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी हैं बहराइच से, लिख रही हैं गुड मॉर्निंग। उन्नति जी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप, आपका भी स्वागत है गुड मॉर्निंग गोंडा में। इरफान शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, नाइस सॉन्ग, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि पैसे बचाना सिर्फ भविष्य के लिए रकम जमा करना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करना है। ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझे, छोटी छोटी फिजूल खर्ची रोकें और हर महीने थोड़ी रकम ज़रूर बचाएं, क्योंकि मुश्किल समय में बचाया हुआ पैसा ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। आज की समझदारी से की गई बचत कल की चिंता को कम करती है। इरफान शाह, बहुत ही बेहतरीन आपने लिखा है। एंड हमारे साथ नागेश्वर धाकर जी जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। महेंद्र जी, महेंद्र दीपन राजस्थान से सुन रहे हैं, लिखा है ओके, म्यूजिक के इमोजीज भेजे गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर कुरैशी रवाबगंज से हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी इस्तकबाल करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। महेंद्र जी लिख रहे हैं, नमस्कार राजनीति मैम जी, नमस्कार टू यू, कैसे हैं आप, अगेन सवाल मेरा यही है। एंड धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं आवाज़ विकास से, लिख रहे हैं इस गाने में ओपनिंग प्लेयर अक्षय कुमार एंड जूही चावला, गाना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू। इम्तियाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड इसके बाद है धर्मेंद्र जी का मैसेज, उन्नति जी नमस्ते, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद जो मैसेज है वो है फीडबैक आपके एम्बुलेंस वाले दादा के लिए। महेंद्र जी ने लिखा है, बाइक एम्बुलेंस दादा करीमुल हक जी की कहानी सुनी, अपने व्यक्तिगत दुख को इतनी बड़ी समाज सेवा में बदल देना वाकई दिल छू गया। ऐसी प्रेरणादायक और सकारात्मक कहानियां सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे से फीडबैक के लिए। एंड धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं, उन्नति जी आज की स्टोरी और आज का शो बहुत अच्छा था, बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर जी, अकबर कुरैशी फ्रॉम नवाबगंज लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, दिल को छू गया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हम तो दिल दे चुके हैं, अभी मुलाकात है बाकी, लिखा है धर्मेंद्र मोहन जी ने। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चिंता ना करें, अभी बस कुछ ही पल बाद आपसे वापस मुलाकात करते हैं ज्ञानस्थली लाइफ में, लेकर के आज की कोई बेहतरीन सी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। लेकिन तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम, यही गोंडा शहर की धड़कन पर आपका अगला कार्यक्रम गाँव की गूंज। ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अब मुझे दीजिए इजाजत। और अगर किसी ने भी चाय पानी नाश्ता नहीं किया है तो भैया जाकर कर लीजिए, क्योंकि एक घंटे बाद वापस से आपकी आशीर्वादी आपके साथ जुड़ेंगी।
1: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं, क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं, ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हाइपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं, हाइपेटाइटिस ए, हाइपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं, दूषित भोजन और पानी से बचें, कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं, छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें, पानी को गर्म करके पिएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
2: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले ओ बम, रिलैक्स कीजिए आज, अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

0: अयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9286 9176। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन भी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।
10: हम स्टूडियो आ रहे थे, तब हमने देखा ननकू भैया ने घर के सामने चेन से एक बाल्टी बांधी है, उसमें जानवरों के लिए पानी भरकर रखा है।
11: हमने मिट्टी के बर्तन में चिड़ियों के लिए पानी तो रखा है, पर सड़क के किनारे जानवरों के लिए तो सोचा ही नहीं कि ऐसा कर सकते हैं। पर उनको गर्मी में परेशान देखकर दुखी तो होते थे, आज हम भी ऐसा करेंगे।
12: अरे देखो तो, ग्रुप में डायरेक्टर सर का कितना अच्छा वीडियो आया है। वो अपने गांव में हैंडपंप से पानी भर रहे हैं और कितने सारे लंगूर पानी पी रहे हैं। इनको तो डर भी नहीं लग रहा है। कैसे लाइन से एक एक लंगूर आ रहे हैं और पानी पीते जा रहे हैं। कितने प्यासे हैं ये लंगूर।
13: श्वेता का फोन आया था, वो अपनी फ्रेंड के गाँव बरहा पारा गयी है। अब बोल रही थी कि वहाँ उतनी गर्मी नहीं हो रही जितनी हमारे यहाँ शहर में होती है, और कह रही थी कि अगर गांव की गूंज की टीम आ जाए तो गांव के लोग अपने जानवरों को लेकर बहुत परेशान हैं कि गर्मी से कैसे बचें।
10: चलो हम सबको चलना चाहिए। गोदली में जो पशु विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने हम लोगों को कितनी बातें बताई, वह हम लोग गाँव वालों को बताते हैं।
11: अब की साल तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम लोग इतना परेशान है तो इन बेजुबान जानवरों को कितनी परेशानी हो रही होगी।
12: अरे किस्त कुमार भैया गाड़ी लेकर आ गए। हमने ढोलक और हारमोनियम तो रख लिया है, क्योंकि बिना लोकगीत के तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला।
11: सही कहा सिमी, पर आज तुम लोगों को भी गाना पड़ेगा।

बरहा पारा गांव इटिया थोक में ही आता है और हमारे ड्राइवर साहब को सारे रास्ते पता है। अभी गांव आने में थोड़ा टाइम है किरण दीदी, तो एक एक गाना और हो जाए। देखिए मैं भी गा रहा था।

0: कृष्ण कुमार भैया उधर ले चलिए, देखिए श्वेता खड़ी है कुछ लोगों के साथ। श्वेता क्या कर रही हो?
1: थैंक यू सभी का कि आप लोग आ गए। ये एक छोटा सा तालाब था पर बिल्कुल सूख गया है, उसमें पानी भरा जा रहा है। बोरिंग यहाँ से बहुत दूर है पर सभी गांव के लोगों ने पाइप जोड़ जोड़ कर यहाँ तक पानी आखिर पहुँचा ही दिया। दोस्तों
2: देखो कितना कम पानी भरा है, पर कितनी भैंसे आ गईं अभी से। जितने भी लोग हम लोगों का प्रोग्राम सुन रहे हैं, सभी से निवेदन है, आपके गांव में कोई गड्ढा हो, तालाब हो, एक दूसरे के सहयोग से उसमें पानी अवश्य भरें।
3: जो पालतू जानवर हैं, उनको तो पानी मिलेगा, और जो जंगली जानवर हैं, जैसे कि सियार, नीलगाय, लोमड़ी, सड़क के कुत्ते, छुट्टे जानवरों को भी पानी मिलेगा। आप लोग कितना बड़ा पुण्य का काम करेंगे।
4: शहर से यहाँ के तापमान में करीब 2-3 डिग्री का तो अंतर जरूर है, शायद पेड़ के कारण यहाँ की हवा ठंडी है।
1: चलिए हेमा के घर, वहाँ सब लोग बैठे आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। किरण दीदी का तो सब बेसब्री से वेट कर रहे हैं। सभी भाभियों को ननद वाले गाने जो सुनने हैं। गर्मी की छुट्टी है और ननद भाभी घर पे आई हैं, तो बस सभी के बीच मस्ती वाली नोक झोंक चल रही है।

0: किरण दी सबको कितना मजा आ रहा है लोकगीत सुनकर। लो झुमकी सबके लिए भुट्टे और लहसुन की चटनी ले आई है और साथ में सत्तू का घोल। काकी बोल रही है कि इससे लू भी नहीं लगती है।
1: इसमें टेस्ट मत ढूंढना, बस पी जाओ। सत्तू शरीर को बहुत ठंडा रखता है और गर्मी में ये तो बहुत उपयोगी होता है।
2: देखो सब कितना मुंह बना रहे हैं, पर कुछ चीजों में तो बड़े बूढ़ों की बात मान ही लेनी चाहिए। गर्मी में वही चीजें खानी चाहिए जो शरीर को ठंडक पहुंचाए, और तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, इसी बात का ध्यान अपने जानवरों के लिए भी रखना है। उनको समय समय पर पानी देते रहना है और उन्हें ठंडे स्थान पर बांध कर रखना है, और तो और डायरेक्ट खुली हवा से भी बचाना है।
3: पशु चिकित्सा जब ज्ञानस्थली रेडियो आए थे तब उन्होंने बताया था कि जहाँ जानवर बांधे जाते हैं वहाँ पर पंखे कूलर की व्यवस्था हो और टाट के पर्दे से लगातार पानी से गीला करते रहें।
0: किरण दी सब लोग कह रहे हैं कि आप लोग हम लोगों को जानवरों के बारे में बहुत अच्छी बातें बता रहे, पर किरण दीदी के लोकगीत भी सुनवाते रहिए।

0: ये मिट्टी की बनी झोपड़ी कितनी ठंडी है, पंखे की हवा भी यहाँ गर्म नहीं लग रही। नहीं तो हम अपने घर तो पंखा चलाते हैं तो इतनी गर्म हवा फेंकता है कि जिसका जवाब ही नहीं है।
1: सही कह रही हो श्वेता, और आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, जानवरों को हवादार जगह पर रात में बांधिए, दाना खाने में कम दीजिए और हरा चारा अधिक दीजिए, आहार में संतुलन के लिए एजोला घास का उपयोग कीजिए।
2: अपने जानवरों को दिन में दो बार जरूर नहलाइए, खासकर भैंस को तो कोशिश कीजिए 2 से 3 बार नहलाने की।
3: एक बात का तो विशेष ध्यान रखिए कि जानवरों को अगर आपको चराने ले जाना है तो दोपहर के समय तो बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर आपको चराने ले जाना है तो सुबह या शाम के समय ले जाइए, इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो बीमार पड़ जाएंगे।
4: चिलचिलाती धूप में परेशानी सभी को होती है, पर किसानों के लिए ये परेशानी और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उनको अपने साथ साथ अपने जानवरों को भी बीमार पड़ने से बचाना होता है।
2: गांव की गूंज की टीम की पूरी कोशिश है कि हम आपकी इसमें मदद कर सके, और जो जानकारी हम लोगों के पास है वो आपको देते रहें, और साथ ही में आप लोगों का मनोरंजन भी करते रहें।

0: अगर आप लोग के पास कई जानवर हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि उन्हें आप दूर दूर बांधिएगा, जिससे उन्हें उठने बैठने की अच्छे से जगह मिल सके।
1: यहाँ तो देख रहे हैं कि ज्यादातर छप्पर के नीचे ही जानवर बांधे जाते हैं और नीचे जमीन भी कच्ची रहती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जमीन की साफ सफाई करते रहें, या नहीं कि गोबर में ही जानवर हमेशा पड़े रहते हैं। स्थान को समय समय पर साफ करें और पानी से धोकर सूखा जरूर लें।
2: जो भी ऊपर टिन शेड लगवाते हैं, उनकी ऊंचाई 12 फीट से भी ज्यादा हो। 45 डिग्री पर टिन शेड लगवाएं, जिससे सूर्य की गर्मी ज्यादा न हो,
0: पर रोशनदान भी हो, ताकि सूरज की किरणें पड़ती रहें और कीटाणु मर जाएं। अगर फर्श पक्की हो तो गर्मी में रबड़ की शीट डाल दें, नहीं तो फर्श बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है।
3: लोकगीत तो हम तभी सुनाएंगे जब आप लोग वादा करें कि अपने अपने जानवरों का टीकाकरण जरूर कराएंगी।
0: हम सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का नंबर लिखकर जा रहे हैं, उनसे जानकारी ले लें कि कौन से टीके लगाने हैं।

0: जहाँ जानवर बांधते हैं वहाँ पर साफ और ठंडा पानी भरकर जरूर रखें और समय समय पर बदलते भी रहें।
1: पशुओं को 100 किलोग्राम पर 5 लीटर पानी की जरूरत होती है। अपने अपने जानवरों के वजन को अंदाज लीजिए और उसी अनुसार पानी दीजिए। गर्मी में पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, नहीं तो दूध में कमी आ जाएगी
2: और क्वालिटी भी दूध की घट जाती है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम लोग आपको ज्ञानश्री रेडियो का नंबर भी देते जाते हैं। कोई जरूरत होगी तो पशु चिकित्सक से आपकी हम बात करा देंगे।
3: गर्मी के मौसम में मनका, लोबिया, चरी और ज्वार को जरूर लगाइए, ताकि आपके जानवरों को हरा चारा मिल जाए। और हरे चारे में पानी होता है, जो पशुओं में पानी की कमी को पूरा करता है।
4: एक और जरूरी जानकारी देनी है, प्रत्येक पशु को 25 से 30 ग्राम नमक जरूर खिलाइए। ये बहुत जरूरी है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा।
0: गांव की गूंज की टीम आप सबके साथ हमेशा है। गांव हमारे देश की आत्मा है, और अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होगी तो ना हमें अन्न मिलेगा और ना ही दूध दही, इसलिए खूब ध्यान रखिएगा अपना।
4: अच्छा, कोई भी जरूरत हो तो हमें जरूर याद करिएगा। जल्दी फिर कोई नई जानकारी के साथ गांव की गूंज की टीम फिर आपके बीच होगी।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: हुक्कई से खेलन जइबो,

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

लगते हैं। चाइना में सेलिब्रेट किया जाता है एक डे जिसको कहते हैं घोस्ट फेस्टिवल, और वो दिन चाइना में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लोग इतने सीरियसली लेते हैं कि उस त्यौहार के दिन किसी की दुकानें तक नहीं खुलती, सब लोग अपने घर के अंदर होते हैं, और माना जाता है कि उस दिन के यानी कि घोस्ट फेस्टिवल पर आत्माएँ दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आती हैं, इसीलिए बाहर नहीं मिलना है। बट क्योंकि नई जनरेशन के बच्चे आजकल ये बातें नहीं मानते हैं, तो तीन दोस्त जो नाइट आउट का प्लान बनाते हैं घूमने के लिए फिरने के लिए कि चलो आज तो कोई होगा ही नहीं ना, आज मस्त नाइट आउट करेंगे, घूमेंगे, बाहर जाएंगे और हॉन्टेड जगह पर जाएंगे, पूरे शहर में गेड़ी मारेंगे। उनके साथ एक ऐसा हादसा होने वाला है जो आज की कहानी में मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए क्या आपकी एक्साइटमेंट लेवल है इसको ज़रूर बताइए चैट बॉक्स में और इन्जॉय कीजिए। माही, हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञान स्थली लाइफ में। मैं हूं आपकी अपनी आरजू नदी, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और आज है ट्यूसडे, यानी कि आपके स्टोरी वाला डे। फिलहाल के लिए आप सुन रहे हैं ज्ञान स्थली लाइव 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। और आज के सरप्राइजेस का सिलसिला यूं ही थमने वाला नहीं है। सुबह सुबह हमने दिया है और अभी अभी हमें भी किसी ने दिया है। आइए जानते हैं वो कौन है। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो मैम, थैंक यू।
0: थैंक यू वो तो हमें कहना चाहिए, बिकॉज हमें सरप्राइज मिल रहा है।
1: नहीं मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको थैंक यू।
0: ऑलराइट, तो वेल सुहाई, तुम्हें पता है कि आज हम क्या लेकर आते हैं? वैसे तो मैंने अनाउंस कर दिया है इतने लंबे लंबे शब्दों में।
1: यस मैम,
0: गारंटी पता है,
1: रियल लाइफ स्टोरी जो कभी हो चुकी है।
0: हो चुकी है।
1: यस मैम,
0: इतिहास के पन्नों से ढूंढ ढांड के।
1: यस मैम,
0: मतलब मेरे लिसनर्स को लगने लगा है कि हिस्ट्री मुझसे ही बनी है।
1: हाँ, शायद वो आप ही लिखती थी पहले।
0: अब अगर ऐसा होता तो, मतलब जो मैं अभी तक डायलॉग मारती आ रही हूँ लोगों से मजाक मजाक में, क्योंकि मेरी उम्र 1800 साल हो चुकी है, ये तुम सच कर रही हो यहाँ पर?
1: हाँ बिल्कुल।
0: ऐसा भी नहीं है यार, अभी मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं।
1: तो मैम, वो सफेद होने से थोड़ी ना होता, एक्सपीरियंस होना चाहिए बुढ़ापे का।
0: What do you mean by बुढ़ापे का एक्सपीरियंस?
1: इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी और किसको आएगी?
0: मतलब मुझे स्टोरी आने के लिए मुझे बुढ़ा होना जरूरी है?
1: नहीं मैम, पर आप
0: ऑल राइट, ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं और नहीं झेल सकती, तो मैं अपनी स्टोरी की तरफ अब रुख करूंगी।
1: ओके,
0: सरप्राइजेस पे सरप्राइज, और अब मुझे पता चला है कि मेरे पास बुढ़ापे का भी एक्सपीरियंस है गाइस।
1: मैम वो भी 1800 साल।
0: 1800 साल?
1: अच्छा 800 साल। Oh my God, मैंने 792 साल घटा ही दिया था।
0: बिल्कुल। चलिए तो भैया बता देते हैं कि आज की कहानी, जो ऑफ कोर्स चाइना से आई है, चाइना में एक फेस्टिवल होता है, नाम है घोस्ट फेस्टिवल, यानी कि भूतों का फेस्टिवल। अपने देश में ऐसा क्यों नहीं होता?
1: मैम यहाँ पे होता है।
0: कहाँ होता है?
1: भूत आता है तो लोग पंडित के पास जाते हैं। भूत,
0: कम ऑन, वो फेस्टिवल नहीं होता है यार।
1: यहाँ पे हर तीसरे दिन कोई ना कोई भूत मिलता है।
0: तुम्हें मिला कभी?
1: नहीं।
0: मैं तो इतनी कहानी सुना चुकी हूँ, आई थिंक भूतों को अब मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए। क्या आपको पता कैसे इतना मेरे बारे में?
1: वो सोच रहा होगा कोई तो है जो बात,
0: जो हमारी बात करता है, हमारी कहानी से। बट ऑटोग्राफ तो लेना चाहिए। फिलहाल चाइना में तीन दोस्त, और तीनों दोस्त के अंदर वो वाली होती नहीं है कि हम भूतों को नहीं मानते, जैसा मेरे अंदर है वो कीड़ा जो मैं भूतों को नहीं मान रही हूँ, हालांकि कहानियाँ मैं रोज़ रोज़ आपको सुना रही हूँ। उनके अंदर भी था कि घोस्ट फेस्टिवल जैसा कुछ नहीं होता है, और हम बाहर जाएंगे, नाइट आउट पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, मस्ती करेंगे, और क्या। गाना याद आ गया था बीच में,
1: मुझे भी याद आ रहा था।
0: तो भाई एक दोस्त ने कहा कि क्या ख्याल है, घर में रहना है बाहर जाना है? देखो अगर तुम्हारी फैमिली वालों ने कहा है कि तुम्हें घर के अंदर रहना है, स्ट्रिक्टली बोला गया है, तो तुम घर के अंदर रहो, अदरवाइज चलते हैं बाहर। दोस्तों ने कहा कि नहीं, मेरी फैमिली ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, और फैमिली को बता कौन रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, चलो चलते हैं। अब तीन लोग, जहाँ पे तीन लोग होते हैं, हमारे भारत में कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा।
1: तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं, तीन तिगाड़ा काम सुधारा।
0: फिलहाल यहाँ बिगाड़ने वाला ही चल रहा है।
1: चलो चलो,
0: हमारे यहाँ पे तीन की जोड़ी बहुत खुरापाती मानी जाती है, चाहे वो फैमिली में आप देख लो तीन लोग मिल जाएं, किसी के तीन बच्चे हों, तीन कजिन्स हों, तीन दोस्त हों, पूरे क्लास में, पूरे कॉलेज में, पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में इनका अलग ही सीन होता है। इवन तीन लोग, तीन चीजें देने से भी मना की जाती है कि तीन चीजें नहीं दी जाती। ये तीन दोस्त और खुरापात शुरू। सबने अपनी अपनी कार उठाई, और जिसकी कार थी वो तो जाके पैसेंजर सीट पे बैठ चुका था, बाकी दूसरा दोस्त यानी कि जॉन कार चला रहा था। कार चलाते चलाते आगे जब निकल चुके थे रोड पर, तो रोड पर आज बहुत सन्नाटा था, कोई था ही नहीं, क्योंकि सब ने घोस्ट फेस्टिवल को बहुत सीरियसली लिया हुआ था, और सबको पता है कि आज दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलेगा, चाइना में आत्माएँ आएंगी और किसी से बाहर नहीं मिलना है। बट इनको क्या, इन्होंने कहा चलते हैं। चलते चलते आगे जब काफ़ी वक्त गुजर गया, तो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ एक दोस्त पूछने लगा, क्या भैया आज से बाहर ही घूमोगे या कहीं चलना है? तो उन्होंने कहा चलो गेम खेल के आते हैं। सबसे पहले ये लोग गेम खेलने के लिए उस क्लब में पहुंचे, वहां पर उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले, लेकिन गेम की भी एक हद होती है, और हद यह हुई कि ये बोर हो चुके थे, गेम जीत चुके थे, बोरियत होने लगी थी, तो फिर सोचा अब क्या करें। दोस्त ने फिर सवाल किया, क्या करोगे, गेम्स खेलें या बाहर चलें कहीं और घूमने? तो उसने कहा घूमने चलते हैं। यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, गेम बहुत खेलिए। ऑलराइट चलते हैं। फिर से इन लोगों ने अपनी गाड़ी उठाई, रोड पर निकल चुके थे। रोड पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, कोई इंसान नहीं, इंसान का नामो निशान नहीं, इसके अलावा कोई कार नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ था ही नहीं। आज पूरे रोड पे ऐसा सन्नाटा था जैसे चाइना के सारे इंसान एक साथ कहीं गायब हो गए हों। ये लोग जो लगातार अब गाड़ी चला रहे थे तो उसमें से दो तीन लोग अब परेशान होने लगे थे, ये सोच कर कि यार कोई तो दिख जाए, एक इंसान दिख जाए, क्योंकि हम बहुत देर से अगर किसी इंसान को नहीं देखते तो भाई तलब होने लगती है कि क्यों नहीं दिख रहा है कोई, दिखना चाहिए। एक साइकिल ही दिख जाए, कार दिख जाए, बाइक दिख जाए, कोई तो निकल जाए, क्योंकि हाईवे पर अकेले चलना बहुत बड़ी आफत है। दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, कोई नहीं दिखता आज फुल स्पीड में, क्योंकि आज कोई जब बाहर आ ही नहीं रहा है तो चालान कौन काटेगा, फाइन कौन काटेगा, कोई भी नहीं, हमारे ऊपर केस कौन करेगा, कोई भी नहीं, और आज तो शायद कोई कैमरा भी चेक नहीं करेगा, तो आज फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हैं। और ये गाड़ी यूं ही दौड़ रही थी खाली सड़कों पर, सिर्फ अंधेरे के बीच में, जो लाइट थी वो बस कार की हेडलाइट।
1: ये लोग रात में घूमने निकले थे
0: तो उतनी देर से, क्या मैं दिन की बात कर रही हूँ,
1: मुझे लगा दिन में चल रहे हैं,
0: मतलब कहानी में खोना चाहिए लेकिन इस कदर भी नहीं खोना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा,
0: दिन में कौन सा अंधेरा होने लगा है,
1: वही मैं सोच,
0: और दिन में कौन परेशान होता है,
1: चाइना वाले वो सूर्य भगवान को बंद कर दिए होंगे कि दूसरे ग्रह से लोग आ रहे हैं।
0: माना चाइना आगे है लेकिन इतना भी आगे नहीं हुआ है अभी।
1: अच्छा अच्छा, रात की बात है,
0: रात की बात है। ये लोग परेशान और ऑफकोर्स फुल स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं। जो दोस्त पैसेंजर सीट पे बैठा था अब उसे हो चुका था बोर, क्या अंधेरों को कौन देखता है, अंधेरे में कोई दिख भी तो नहीं रहा, मेरे जैसा इंसान तो अंधेरों में शक्लें ढूंढने लग जाता है, बनाने लग जाता है कि सामने ये वाला है, इस पीछे ये वाला निकल चुका है, पेड़ों से मैं शक्लें बना लेती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ये टैलेंट सब में हो ज़रूरी तो नहीं। और इसीलिए अब वो अपना सर खिड़की के पास रख कर, यानी कि विंडो से सटा कर, आँखें बंद करके सो चुका था, गहरी नींद में चला गया था। पीछे बैठा वाला आगे मुंडी निकाल कर उल्लुओं की तरह देख रहा था, कुछ तो दिखेगा, कुछ तो दिखेगा, बट कुछ दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ ड्राइवर ड्राइव करे जा रहा था, उसको पता नहीं क्या मजा आ रहा था खाली रोड पर गाड़ी दौड़ाने में। लेकिन चलते चलते चलते चलते वो जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ लड़का था उसकी आँख बहुत तेजी से खुलती है, और खुलने की वजह यह है कि इस कार में जो अभी ड्राइव कर रहा था उसने बहुत जोर से ब्रेक लगाई, इतनी जोर से ब्रेक लगाई है कि उसकी आवाज़ के साथ साथ वो अंदर बैठा इंसान भी हिल चुका था, टेढ़ा हो चुका था। और जैसे उसकी आँख खुली उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकला कि क्या है यार, तमीज़ वमीज़ नहीं है, कौन सी बीमारी तुम्हारे पीछे लगी है, इज्जत से चला लो। उसने कहा भाई इज्जत बाद में, सामने देखो
1: क्या था।
0: जब तक वो समझ पाता सामने क्या था तब तक वो जो ड्राइवर सीट पे बैठा था उसने तुरंत ही गेट खोला, वो बाहर आया और बाहर जाकर देखा बीच रोड पर एक मोहतरमा बैठी है, एक लड़की बैठी है। और उसको देखकर ही ये 200 की स्पीड जो चल रही थी कार उसमें इतना भारी ब्रेक आया था। लेकिन वो थी कौन, आप सोचिए। तब तक के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं। आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव विद राजयुनति और मेरी को होस्ट सुहानी के साथ, आपका अपना FM रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286098197 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
6: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
5: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
6: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
5: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: जून और वेजा। जून जो उतर चुका था ये देखने के लिए कि क्या हुआ क्या है, वेजा जो सैर पूछ रहा था कि भाई क्या दिक्कत क्या है तुम्हें, कौन से दौड़े पड़ रहे हैं, क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी ऐसे नहीं रोकनी होती है। जून कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसके सामने एक लड़की बैठी थी। अब वो उस लड़की के पास जाके पूछ रहा है, मोहतरमा आप हैं कौन? चाइनीज में कैसे बोला होगा?
1: रहने दो,
0: चाइनीज बुरा मान जाएंगे।
1: नहीं ऐसे खोचे
0: फिलहाल जून जो सवाल कर रहा था, जो पूछ रहा था, बट उसे इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा था। इतने में वो लोग इतना डर चुके थे उसकी शक्ल देखकर कि जून को लगा कि यहां से भागना ही मुनासिब है। फिलहाल ये लोग उस रात जैसे तैसे घर पहुंचे जून के, और कमरे में जाकर चुपचाप सो गए बिना किसी को बताए कि उन्होंने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया। सुबह हो चुकी थी, जून की मम्मी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। सभी लोग तीनों दोस्त नीचे आए और आकर टेबल पर बैठ चुके थे। जून की मम्मी नाश्ता लेकर आ रही थी और उन्होंने बातचीत शुरू की, कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो जून और उसके दोस्तों ने कहा कि आंटी आपको पता है कल ना एक बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ। उन्होंने कहा क्या हादसा हुआ? उन्होंने कहा आंटी कल ना जब हम लोग आ रहे थे, पता नहीं यार एक अजीब सी लड़की बीच रोड पर बैठी थी। इतनी बात सुनते ही आंटी के हाथ से प्लेट छूट चुकी थी। रीजन, क्योंकि वो घोस्ट फेस्टिवल के दिन मिली हुई लड़की थी। आंटी ने अपना माथा पकड़ लिया और बोली, तुम लोग पागल वागल हो क्या? तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि घोस्ट फेस्टिवल के दिन बाहर नहीं निकलते हैं? उन्होंने कहा आंटी वो बीच रास्ते में बैठी थी, हमने अपनी गाड़ी रोकी, मैंने उसे पूछा भी तुम कौन हो, कहां से आई हो, लेकिन वो कुछ बोली ही नहीं। तो उन्हें शायद लगा था कि अब आंटी उनसे कहेंगी कि बेटा तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए, जाना चाहिए था। बट आंटी ने अपना मुंह खोला और कहा कि जिससे तुम्हारा इनकाउंटर हुआ है ना, वो कोई नॉर्मल इंसान था ही नहीं ना, वो एक डीमन था, वो एक स्पिरिट थी, वो एक आइडेंटिटी थी। किसकी थी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ जब घोस्ट फेस्टिवल होता है तो ये लोग आते हैं जमीन पर लोगों की तलाश में जिसके ऊपर ये हावी हो जाए। जून चुपचाप बैठा था, लेकिन वेजा बोला कि आंटी आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको तो हमें समझाना चाहिए कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है, पुलिस के पास जाना था। जून ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। इतने में ही तीसरा दोस्त ने कहा कि आंटी सही कह रही है, वो जो था या जो थी वो इंसान लग भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं उसके इतने पास आकर गाड़ी रोक रहा था, इतनी स्पीड में हमारी गाड़ी थी, वो बीच रास्ते पर थी और वहां से वो एक इंच हिली तक नहीं। कोई आम इंसान होता तो कूद कर साइड हटता, वो क्यों नहीं हटी? सबके दिमाग में ख्याल आया कि हाँ पॉइंट है यार, वो हटी क्यों नहीं। जो गाड़ी चला रहा था उसने भी कहा पॉइंट है। आंटी ने कहा कि अब जो हुआ है सो हुआ है, इसके आगे तुम्हें क्या करना है ये कभी सोचा है? उन्होंने कहा आंटी मुझे क्या पता क्या करना है, मुझे तो वो आज तक इंसान ही लग रही थी, आपने बताया ना कि ये इंसान नहीं है, ना मेरे कभी किसी आत्मा से मुलाकात हुई, ना मैं जानता हूं कि कोई आत्मा जैसी चीज होती है। तो आंटी ने कहा इसीलिए तो रोका जाता है, इसीलिए तुम लोगों से कहा जाता है कि घर के अंदर रहो, बचपन से लेकर अभी तक घर के अंदर रहते आ रहे थे, फिर तुम्हें को कौन सा कीड़ा काट रहा था? हालांकि अब क्या करना है ये बताइए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा उससे इनकाउंटर हुआ है इसका मतलब वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगी, लेकिन इससे बचा जा सकता है। सवाल फिर वही, हाउ कैसे? आंटी ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ, ऐसा करना कल कब्रिस्तान की तरफ जाना और अपने साथ रुपए लेते जाना, वो रुपए जो मरे हुए इंसानों के लिए होते हैं। चाइना और कुछ देशों में मरे हुए इंसानों के लिए रुपए दिए जाते हैं, कुछ कागज के नोट होते हैं जिन्हें वो लोग जलाते हैं, जलाकर ये सोचते हैं कि ये जो ऊपर गया है या फिर जिसकी आत्मा ने इस दुनिया को छोड़ा है वो वहां जाके अपना खर्चा पानी निकाल लेगा। अमेजिंग ना, करोड़ों की संपत्ति जला दी जाती है और भूत भी खर्चा करते हैं।
1: सच में?
0: मे बी, मैंने देखे नहीं तो मुझे पता नहीं। जिस दिन मिलेंगे इंटरव्यू में पहला सवाल यही होगा,
1: आपको
0: ये बताएंगे मुझे। कोई बात नहीं, बताना जरूर। अब वो पैसे लेकर ये लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे। 2 से 3 गट्टियां जला भी दी गई थी, लेकिन इतने में ही उसका दोस्त पियचा जोर से चिल्लाता है, भूत भूत। और इतना चिल्लाकर वो वहां से भागना शुरू कर देता है। जून उसके पीछे, अबे रुको यार, कहां भूत है, तुमको कुछ ज्यादा दिख रहा है क्या? वो पूरे होशो हवास होकर बस इतना चिल्ला रहा है, भूत है। और वहां से भागकर सीधे मक्के के खेत में चला जाता है। जून तुरंत ही अपने दूसरे दोस्त को कॉल करता है और कहता है, भाई यार सुनो, विजय को ना पागलपन के दौड़े पड़ चुके हैं, क्या तुम यहाँ आ सकते हो, इसको ढूंढने चलना है। दोस्त पहुंचता है और कहता है, हाँ बताओ क्या हुआ। कह रहे, हम लोग यहाँ जैसा माँ ने कहा था पैसे लेकर आए थे, जलाने आए थे, ये पैसे ऑफर करके हम अपनी प्रोटेक्शन ले रहे थे, बट ये वेजा भूत भूत कह के भाग गया कहीं, इसको ढूंढो चल के, और हो सकता है शायद उसने सच में कुछ देखा हो जो मुझे नहीं दिख रहा है, बट हमारा दोस्त है, ढूंढना तो बनता है ना। दोनों लोग मिलके ढूंढ रहे थे, वक्त गुजरता जा रहा था, व्यजा किसी को नहीं मिल रहा था। किसी ने सलाह दी कि अगर नहीं मिल रहा है तो पुलिस में रिपोर्ट लिखो। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। अब पुलिस वाले इस दोस्त को ढूंढ रहे थे, व्यजा को ढूंढ रहे थे। जब बताया कि वो मक्के की खेत की तरफ गया था तो पुलिस वाले भी उधर ही गए। किसान को बुलाया गया और कहा, तुम अपने मक्के के खेत को काट दो। सोचो उस वक्त उस किसान पर क्या गुजरी होगी जिसका खेत था। हालांकि उसने काट भी दिया इंसानियत के नाते, बट वेजा किसी को नहीं मिला। सब लोग अपना मुंह लेकर घर पे आ चुके थे। जून बहुत टेंशन में था कि उसका दोस्त उसके साथ ही था, उसको ऐसा क्या दिखा कि वो अचानक से यूं लापता हो गया, और कहां गया, क्यों पुलिस वाले अभी तक ढूंढ नहीं पाए। 3 दिन बाद वेजा के गेट पर नॉक नॉक होती है। जब उसकी माँ गेट खोलती है तो सामने पुलिस खड़ी थी एक खबर के साथ। वो खबर क्या है बताएंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पर सुनते रहिए स्टूडियो।

0: हाँ जी, तो भाई पुलिस वाले पहुंच चुके हैं जून के घर पे, और जैसे ही गेट खुलता है पुलिस वालों ने कहा, मैं तुम्हारे दोस्त की खबर लेकर आया हूँ। जून टेंशन में था, उसने कहा, जी बताइए। बोले, मुझे तुम्हारा दोस्त मिल चुका है। एंड जून वॉज सो एक्साइटेड कि अरे वाह, बट साथ में एक और चीज़ थी, तुम्हारा दोस्त मिल चुका है लेकिन एक बुरी खबर है। जून ने कहा, क्या? और पुलिस ने कहा, दोस्त तो मिला है लेकिन जिंदा नहीं, उसकी लाश मिली है झील में। उसने अपना थोड़ा दुख जताया। पुलिस वाले बोले कि ये सब बाद में, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। जून, जो कि अभी तक टेंशन में था, अब दुख में है, और अब उसे एक और टेंशन है कि पुलिस क्या पूछेगी। उसकी मां ने भी कहा कि जी क्या पूछने वाले हैं आप? बोले, क्योंकि यही दो लोग थे जो साथ में थे उस वक्त उस इंसान के जो मारा गया है, तो सवाल भी इन्हीं से होंगे ना, आप तो देंगे नहीं इसके जवाब। और अब जो बताने वाला है जून, वो आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, इवन मैंने भी नहीं सोचा था जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी। जून से सवाल किया गया, पहले ये बताओ तुम लोग कहाँ कहाँ गए थे। तो उसने मुझे बताना शुरू किया कि हम इंटरनेट कैफ़े गए थे, हमने वहाँ पर गेम्स खेले। उन्होंने कहा, एक सेकंड रुको, क्या तुमने नशे किए थे? और देखो, सच बताना, क्योंकि अगर तुम झूठ बोलोगे तो हम तुम्हारा टेस्ट कराएंगे और तुम सच में वहाँ साबित हो गए तो तुम्हें हम जेल करा देंगे। और ये बात सुनते ही जून बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसने कहा कि हाँ, हमने नशे किए थे, हमने सिगरेट्स पी थी, और वो सिगरेट नॉर्मल नहीं थी, उसमें ड्रग्स था, एमडीग्राम का कोई ड्रग था, और इसी वजह से ये तीनों लोग नशे के अंदर थे। जब ये लोग रोड पर जा रहे थे उस वक्त जब पूरी तरह से अंधेरा था, तो वो जो लड़की इन्होंने सामने देखी थी वो कभी वहां थी ही नहीं, ये इनका हेलुसिनेशन था। यानी कि नशे की पावर इतनी ज्यादा थी कि घोस्ट फेस्टिवल को अपने दिमाग में लेकर चल रहे थे। डर नहीं लग रहा था, वो बात अलग है, लेकिन उनके दिमाग ने खुद एक इमेज क्रिएट कर दी सामने कि कोई खड़ा है, कोई बैठा है। और जैसे ही जून ने इसको बाकी दोस्तों को बताया, तो इन तीनों लोगों ने मिलकर एक दूसरे को यह पक्का यकीन दिला दिया कि सच में सामने कोई बैठा है। कमाल की बात है ना, नशे में भूत है, भूत में नशे नहीं है। और यही चीज जब अगली सुबह जून की मां को पता चला, तो जून की मां ने इस पर पूरा स्टैंप ही लगा दिया कि हाँ, तुमने पक्का भूत ही देखा है, वो पक्का कोई चुड़ैल ही थी।
1: वाह।
0: और अब तुम्हें जाना है कब्रिस्तान पैसे जलाने के लिए। और कमाल की बात यह है कि ये लोग पैसे जलाने जा रहे थे, उस दौरान फिर से इन लोगों ने वही सिगरेट दोबारा जलाई हुई थी, दोबारा उसको पिया था, और फिर से ये लोग नशे में थे, वो भी बहुत भयंकर नशे में थे। जब ये लोग कब्रिस्तान में पहुँच कर पेपर जला रहे थे या फिर कागज़ की नोट जला रहे थे, इन्हें फिर हेलुसिनेशन हो रहा था, फिर उस इंसान को वही भूत दिखाई पड़ रहा था जो उसका दिमाग क्रिएट कर रहा था। और जब उसको देखा कि सामने फिर से भूत खड़ा है, तो वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा, इतना तेज़ी से भागा कि उसको पता ही नहीं चला कि उसका पाँव कब झील के अंदर आ चुका था। और क्योंकि तैरना आता नहीं था, अगर तैर भी लेता तो क्या फ़ायदा, नशे में कौन ही तैरता है। उसको तो भनक भी नहीं चली कि कब उसका पाँव झील के नीचे और कब वो डूबा, कोई आइडिया उसे लगा ही नहीं क्योंकि नशे में था। हालांकि पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट मान के बंद कर दिया, और इन दोनों लोगों को सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए ही फाइन लगा। लेकिन एक ऐसी कहानी कुछ वक्त पहले भी मैंने आपको सुनाई थी, जिसमें अगेन कुछ यही सिगरेट, यही ड्रग था, जिसकी वजह से एक और लड़की हेलुसिनेट कर रही थी, और उसने भी हेलुसिनेशन में यही देखा था कि उसके घर के चारों तरफ कोई घूम रहा है जो उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा। कमाल की बात यह है कि वो भी एक तालाब में डूब के मर गई थी। नाइट आउट कीजिए, मस्ती कीजिए, मजाक कीजिए, घूमिए, बट इस तरह की चीज़ों से दूर रहिए। आपको नहीं पता कि जो चीज़ें आप सिर्फ मजाक के लिए ले रहे हैं, मजाक के लिए ले रहे हैं, अपनी मस्ती के लिए ले रहे हैं, फन के लिए ले रहे हैं, वो कब आपकी जान ले जाए। ये तीन दोस्त जो शायद उस रात आराम से घर पे बैठ के खा सकते थे, अब आलू पराठे तो वहाँ मिलते नहीं, तो मैं वही बोलती, बट ऑफ कोर्स मून केक खा सकते थे, उसे छोड़ छाड़ के ड्रग्स के पीछे पड़ के अपनी जिंदगी गवा बैठे। था ना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट?
1: मुझे लगा सच।
0: अभी तक हम भूत को सोच रहे थे और लास्ट में निकला कौन?
1: भगवान। तो मतलब वो भूत होते नहीं है?
0: अब पता नहीं है तो मुझे
1: कोई बात नहीं।
0: फिलहाल इस केस में तो कोई भूत नहीं था, इस केस में जो था वो था नशा और आपके दिमाग का खेल। इसीलिए मैं कहती हूँ आपका दिमाग आपको हमेशा उल्लू बना कर रखता है। डर होता नहीं है, डर बनाया जाता है। इंसान जब पैदा होता है उसके अंदर सिर्फ दो डर होते हैं, एक बहुत तेज आवाज के, दूसरा गिरने का। इसके अलावा कोई डर उसके अंदर था ही नहीं कभी। ये तो आपका दिमाग है जो इन डर को पैदा करता है और आप उस डर के गुलाम बन जाते हैं और आपको समझ में भी नहीं आता कब आपने ये गुलामी ज्वाइन कर ली है। इसीलिए पॉजिटिव सोचने को कहा जाता है।
1: ये सब बिना सैलरी की जॉब है।
0: आपका दिमाग आपके साथ दिन रात खेलता है। बस आप कोशिश कीजिएगा कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल ना करे बल्कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लें,
1: वरना दिन में भी भूत दिखेंगे।
0: बिल्कुल, ऐसी अफवाहों से दूर रहिए क्योंकि कई बार लोगों की मौत सिर्फ डर की वजह से होती है। फैक्ट उसमें कुछ भी नहीं होता, बस उनका दिमाग उनके साथ गेम खेलता है और शरीर बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे सच में कोई सामने खड़ा है। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, कल सुबह मिलेंगे हम आपसे गुड मॉर्निंग गोना में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM, यह गोना शहर की धड़कन पर। आपका अगला कार्यक्रम है सिहतिया सिंह, सुनना मत भूलिएगा। स्मार्ट एनर्जी और रेडियो कैनस की बेहद खूबसूरत पहल है जिसके अंदर बात होती है आपकी अपनी सेहत की। ख्याल रखिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
0: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
6: बिल्कुल, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप सवर जाता है।
0: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है, और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
6: अरे मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले ही शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
6: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
0: नहीं नहीं, उससे भी पहले।
6: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, आखिर कब से?
0: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन का मजबूत आधार मिलता है, यानी एक मजबूत शुरुआत होती है।
6: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, जब हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की जन्म की ओर ले जाता है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
6: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं, बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
6: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
0: बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
7: धन्यवाद आरजे जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
8: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार।
0: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच में माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण होता है?
7: बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है, वह कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना ही नहीं रहता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसके शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी बेहतर होगी।
8: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
7: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
6: अच्छा, यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
7: बिल्कुल सही कहा।
0: सेहतिया जी, आपने पोषक तत्वों की बात की। आजकल एक शब्द और सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी। आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है?
7: यह बहुत गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उन्हें खून की कमी है। वो कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
6: ओ, इसलिए हमेशा उन्हें थकान रहती है।
7: बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के समान लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला में हो तो जोखिम भी और बढ़ जाता है।
0: और किस तरह का जोखिम?
7: समय से पहले परसों हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और परसों के समय अगर ज़्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
6: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोरी महसूस करना होता है।
8: यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं है बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अगर माँ एनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
0: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
8: बिल्कुल, इसलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
6: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए, क्या तैयारी उससे पहले से भी जरूरी है?

0: गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन और DHEA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पोषक तत्व आगे चलकर बच्चे की सीखने, समझने, याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखते हैं।
1: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले 1000 दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
2: पहले 1000 दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल तक का होने का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर मानते हैं। इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेजी से विकास होता है। अगर इस पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
0: टीकन जी, अब श्रोताओं को ये भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
2: सबसे जरूरी चीज है बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा का कवच होता है। ये उसे कई संक्रमणों से बचाता भी है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई भी दूसरी चीज नहीं देनी चाहिए।
3: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
0: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडा और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
0: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडा, जहां परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें और धीरे धीरे बच्चों की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं।
1: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है।
2: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडा जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
3: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो।
0: अक्सर हम बच्चों के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
1: और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे हैं।
2: बिल्कुल सही। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है कि हम ये सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
3: और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
0: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जाँच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम।

0: करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती हैं।
1: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सही जानकारी और सही व्यवहार साथ आते हैं, तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
2: श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों को अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए जरूरी हैं।
1: तो श्रोताओं, हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
3: और मैं सभी बहनों और परिवारों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेहत को कभी भी नजरअंदाज न करें। समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
0: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, एनम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
2: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
1: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
0: धन्यवाद। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
3: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है और जाने से पहले लेंगे हम शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: काल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
6: आरजे अंशिका।
5: जी हाँ, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके अपने पसंदीदा शो को, जिसका नाम है
4: सुन सहेली
5: विद आरजे समता एंड आरजे
6: अंशिका।
5: तो दोहरी खुशी, जिसको कहते हैं ना, दोहरी खुशी होती है जब किसी इंसान को, तो वो ऐसे ही चहकता है, महकता है। और पता है अंशिका, मुझे तो शुरू से यार, जिसको ना आप किसी और को खुशी जब देते हो ना, तो वो एक अजीब वाली खुशी आपको मिलती है।
6: बिल्कुल,
5: है ना?
6: जब हम किसी और को खुश करते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है।
5: बिल्कुल, और ऐसा होता है, मतलब मैंने तो फील किया है कि जब आप किसी और को खुश करते हैं ना, या आप किसी फील किया है कि जब आप किसी और को खुश करते हैं ना, या आप किसी और को खुशी देते हैं, तो मतलब अनचाहा करके भी, अगर आपका मन नहीं भी है ना, तब भी आपको आपके मुस्कुराने से, आपके बात करने से अगर किसी को खुशी मिल रही है ना, तो वो एक ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा होती है। मतलब ऐसा फील मैंने किया है, और मैंने ऐसा किया भी है कुछ लोगों के साथ। क्या
6: फील
5: जस्ट लाइक अ फील?
6: यस, जस्ट लाइक अ गुड फील। और गुड फील चेहरे पे नजर भी आ रहा है अभी, आज गुड फील नजर आ रहा है।
5: कल नहीं था,
6: कल तो कुछ और था,
5: तो भयावह रूप था।
6: किसी ने देखा है ज्वालामुखी फटते हुए? हमने देखा है फटते हुए,
5: अंशिका ने देखा है। एंड अंशिका, आई होप सो कि ये तुम्हारे ऊपर कभी ज्वालामुखी ना फूटे। थोड़े थोड़े उसके फुहार पड़ चुकी है, लेकिन ज्वालामुखी नहीं फूटा है, मतलब भयंकर वाला नहीं फूटा है। और ईश्वर ना करे कि कभी आप पे ये ज्वालामुखी फूटे, क्योंकि जिन जिन पे फूटा है उनने फिर वो सुधर गए, या तो फिर बिखर गए, या तो फिर दूर ही हो गए।
6: नहीं तो मैं ऐसी, लोग 16 सोमवार रखते हैं, मैं 16 नहीं, मैं 32, 35, 40 सारे सोमवार रखने को रेडी हूँ, बस ये ना हो मेरे साथ।
5: ठीक है, नहीं होगा परेशानी
6: नहीं, मुझे तो प्यार की फुहार मिलती है भाई। हाँ। मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है
5: जी,
6: बस अब नहीं, अब ऐसा नहीं है,
5: शुरू से था, लेकिन थोड़ी थोड़ी जब इंसान मिस्टेक करता है तो सुधारने का वो

0: अब क्यों ही कोई चिल्लाएगा जबकि अब सब कुछ राइट टाइम है, सब कुछ अच्छा है, तो अब क्यों ही कोई
1: चिल्लाएगा। वैसे पहले भी नहीं था,
0: और पहले भी मेरा केयर वाला था आपके प्रति, और अभी अब तो और भी है। लेकिन बस ये कहते हैं ना कि सिखाने के लिए जब मम्मियां घर पे डंडा उठाती हैं तो वो बच्चे सुधर
1: जल्दी जल्दी जल्दी
0: सुधर जाते हैं। तो बस वही काम मेरा था, और आज बहुत अच्छे से सुधर चुकी है अंशिका, तो कहने की कोई वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।
1: वैसे आजकल माँ वाला सेगमेंट ज्यादा हो रहा है,
0: ज्यादा हो रहा है। सब मुझे माँ ही क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है।
1: वो माँ की ममता दिखती है ना, जैसे हम कभी कभी लाइन्स यूज करते हैं ना, तो वो एक्चुअली ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए लिसनर्स, ममता
0: और समता,
1: समता
0: तो कुछ
1: बस कुछ लेटर का,
0: एम का बस, एमएस का है खाली, एमएस का है। तो मुझे कुछ लोग ममता ही बोलते हैं, तो ठीक है, मैं अगर उनको मेरे में ममता दिखाई देती है तो मैं ममता बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
1: मतलब ये भी हो सकता है,
0: हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लव एंड वॉर,
1: एवरीथिंग इज पॉसिबल,
0: लव एंड वॉर, मतलब प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज होता है, बशर्ते है कि आपको प्यार वो बेइंतहा वाला होना चाहिए,
1: होना चाहिए,
0: क्योंकि प्यार में आपके लिए सब कुछ जायज है और लड़ाई में सब कुछ जायज है। आप पीठ पीछे भी आप भाला मार सकते हैं, चाकू भोंक सकते हैं वार में, और लव में तो कुछ भी आप कर सकते हैं।
1: क्या बात है आज, प्यार
0: उसे शब्द अपने आप गिर रहे हैं। तो ममता से याद आया कि आज हमारा जो सीक्वेंस है, आज हमारा जो डे है वो है ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे के दिन हम लेकर के आते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत सारी केयर, बहुत सारी उनके लिए बातें, और उनके से ही रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स। तो आज ट्यूसडे के दिन हम बच्चों के सेक्शन को लेकर के आते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, जानकारी है। लेकिन आइए एक साथ एक फ्रेम में विश कर देते हैं। आज दोपहर का टाइम शुरू हो चुका है, जो कि हम विश करते हैं, जो हमारा एक पहला एक ऑनर होता है आपके प्रति। तो आइए एक साथ एक फ्रेम में दोस्तों क्या बोलते हैं,
1: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और दोपहरिया है जबरदस्त, क्योंकि हम हो चुके हैं मस्त, और मस्त में आज बात करेंगे मस्ती की अपनी, तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला को लेकर, क्योंकि आज हमारा दिन हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे क्यूट क्यूट दोस्तों के लिए, और जिनके दिल में हमेशा एक बचपन वाली फीलिंग रहती है उनके लिए भी। कुछ लोग हैं ऐसे सॉफ्ट हार्ट, अच्छे क्यूट, जिनके अंदर कहते हैं ना, हर किसी के अंदर हम बड़े भी हो जाते हैं, बट एक बच्चा जो होता है,
0: आप बोलिए, हम पीछे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं, आप बोलती रहिए,
1: मुझे इसके आगे की लाइन याद है।
0: नहीं,

0: वाह,
1: इतना ही आता है बस।
0: जबरदस्त,
1: इतना ही गा लेते हैं, थोड़ा टूटा फूटा।
0: टूटा फूटा था ये?
1: जी हाँ।
0: तो सही क्या होगा? मुझे तो बहुत प्यारी लाइंस लगी भाई।
1: क्या
0: मुझे तो सुनने में बहुत अच्छी लगी।
1: अच्छा लगा ना तुम्हें? अच्छा लगा ना? हाँ। बस ठीक है, बस तुम्हें अच्छा लगा यानी कि सब अच्छा गाया मैंने। मैं हूँ श्रेया घोषाल, ठीक है?
0: बिल्कुल बिल्कुल। सुनीधि चौहान अच्छी लगी।
1: चाहे श्रेया घोषाल हो, जो भी हो, मैं, मेरी फेवरेट श्रेया घोषाल जी है, तो मैं बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, वो बहुत ही सुंदर गाती है। तो मैं अपने आप को उन्हीं से थोड़ा कंपेयर करना शुरू कर दिया है मैंने। बट आइए चलिए, अब अपनी और अपना छोड़ करके आइए चलते हैं आज के प्यारी सी पोयम की ओर, जो कि आज बच्चों को लेकर की है। और अंशिका जब तक रास्ता दें तब तक हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, और बच्चों से कभी भी भेदभाव और उनके सामने कभी भी आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिसका असर उनके दिमाग में हो जाए, चाहे वो पेरेंट्स का हो और बहन भाई का हो कि आप अपने बेटे को ज़्यादा मान रहे हैं, बेटे को कम मान रहे हैं, तो ये बच्चों के दिमाग में घर कर जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और कुछ पेरेंट्स आपस में लड़ाई करते हैं, अब्यूजिंग करते हैं, तो इसका असर भी बच्चों के दिमाग पे ज्यादा पड़ता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए देते हैं रास्ता और करते हैं अपनों से कोई खास वास्ता। तो हमारा अपनों से है बहुत ही प्यारा वास्ता, इसलिए आज हम देते हैं आपको प्यार का रास्ता। प्यार के रास्ते पर चलें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। और आपको भी चाहिए प्यार, अगर आपको भी चाहिए प्यार तो हम करते हैं दिल से इकरार और करते हैं एक प्यारी सी शुरुआत आपकी अपने आज इस समता के साथ।
1: थैंक यू। बच्चों का स्वभाव ऐसा है बड़ा ही चंचल, बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है बड़ा ही चंचल, जैसे बहती नदियां का शीतल और निर्मल जल, एक पल में जहां वो दूजे एक पल में यहां तो दूजे पल में वहां, उनकी फुर्ती से रौनक पा जाता है सारा जहां, तितली की तरह उड़ने को हरदम रहते तैयार, बातों में उनकी झलकता है अनोखा संसार, कभी खिलौने के लिए मचलना तो कभी मान जाना, कितना प्यारा होता है उनका यह रूठना और मनाना, शांत बैठना तो जैसे उनके बस की बात ही नहीं, दिन भर दौड़ भाग करना थकती इनकी जात नहीं, हर छोटी चीज में ढूंढ लेते हैं ये अपनी खुशी, इनकी शरारतों को देख खिल उठती है उदास मुखी, मन के सच्चे बातों के पक्के ये मासूम से बाल अपनी चंचलता से बुनते हैं खुशियों का जाल, इनका यह भोलापन और ये नटखट सी नादानियां बचपन की डायरी में लिख जाती हैं अमर कहानियां। जी हाँ, तो ये प्यारी सी कहानियों में आज हम लेकर के आए हैं आपके शो में, यानी आपके सुन सहेली शो में बच्चों के लिए बहुत कुछ। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के सेगमेंट को, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
0: आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताने से पहले बता दूं मैम, पोएम बहुत ही अच्छी।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो चलिए अब बढ़ते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ, कि हमेशा कभी भी परिस्थितियों को अपने वश में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जब परिस्थितियां हमारे हाथों में न हो तो समय के साथ बहना सबसे अच्छा होता है। कहने का मतलब ये है कि जबरदस्ती अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो खराब हो जाती है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, क्योंकि वैसा नहीं होगा। और अगर आप जबरदस्ती सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहेंगे तो वो फिर चीजें और खराब होती जाएंगी।
1: जी बिल्कुल।
0: इसलिए समय के साथ बहें, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं ना, समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है, ठीक उसी तरह अगर आप समय के साथ जाते हैं तो हो सकता है कुछ चीजें बुरी हो लेकिन कुछ बहुत अच्छी भी होती है। इसलिए समय को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि रेत की तरह वो आपकी मुट्ठी से हमेशा फिसल जाते हैं।
1: जी,
0: उनके साथ चलने की कोशिश करें, उन्हें अपने साथ चलाने की नहीं। तो चलिए ऐसी प्यारी सी बात के साथ और प्यारे प्यारे क्या कहते हैं, प्यारे प्यारे शब्दों के साथ चलते हैं और एक प्यारा प्यारा सॉन्ग भी सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बस हम यू गए यू आए लिसनर्स, और ब्रेक के उस पार होगा आपके लिए बहुत कुछ खास, लेकिन उसके लिए करें थोड़ा सा इंतजार।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286098197 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में है आज
8: अंशिका।
7: सो जाती है,
8: नींद आ गई,
7: नींद,
8: नींद,
7: प्रॉपर नींद,
8: नींद,
7: नींद। अब ये बहुत सारे वर्ड्स का जो एक प्रोनाउंस है ना, ये सीख गई है।
8: सिखाने वाला कौन?
7: क्रेडिट गोज टू मी।
8: यस,
7: चलो तो
8: इसीलिए मैंने कहा कि सिखाने वाला कौन है।
7: चलो तो
8: अगर सिखाने वाला आप जैसा हो तो हर कोई सीख जाएगा, मतलब जो नहीं सीखना चाहता होगा वो भी सीख जाएगा।
7: रास्ता जाता है उस रास्ते पर हम ही खड़े हैं आगे, और कोई नहीं खड़ा है वहाँ उस रास्ते।
8: मैम मेरे बिना कहे समझ जाती है कि आश्रय जो मेरी शब्दों का है वो क्या है,
7: शब्दों का क्या आश्रय। तो चले शुरू करें।
8: जी
7: जी, चलिए।
8: तो आशय आज ये है कि आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम,
7: ओह माय गॉड,
8: जो बच्चों में नहीं बड़ों में भी होती है,
7: बड़ों में भी होती है,
8: और जिसकी वजह से कभी कभी ब्लेंडर भी हो जाती है।
7: जैसे
8: जैसे लैक ऑफ अटेंशन।
7: ओके,
8: लैक ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि कई बार कुछ चीजों को हम इग्नोर करते हैं, और अगर इग्नोर नहीं भी करते हैं तो हम भूल जाते हैं। लेकिन लैक ऑफ अटेंशन बच्चों में क्यों होता है ये भी आज पता चलेगा, बड़ों में क्यों होता है ये भी पता चलेगा, लेकिन लेकिन लेकिन ये ठीक कैसे होता है ये आपको विशेष विशेष व्यक्ति के थ्रू पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ मैम कि ये होता क्या है। तो लैक ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि अगर आप मोबाइल, TV, लैपटॉप या ऐसी डिजिटल चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते, मतलब डिजिटल ओवरडोज यूज करते हैं, तो इससे लैक ऑफ अटेंशन होता है। लैक ऑफ अटेंशन का मतलब है हमारा ध्यान पूरी तरीके से एक पॉइंट से हट जाना। जैसे कि मान लीजिए अभी आप बैठे थे कुछ लिख रहे थे,
7: हाँ।
8: एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल देते हैं कि हम बैठे थे घर का हिसाब किताब कर रहे थे, कुछ कर रहे थे काम, ठीक है। सडनली आप अलग कुछ करने के लिए गए, 5 मिनट के लिए आप पानी पीने भी उठे, और आप तुरंत भूल गए कि आप वहाँ पे क्या काउंट कर रहे थे, क्या प्लस कर रहे थे, क्या माइनस कर रहे थे, या इवन हम सामान की लिस्ट बना रहे थे और 2 मिनट के लिए मम्मी ने बुलाया कि बेटा जरा यहाँ आ जाओ ये काम कर दो, और 2 मिनट के अंदर आप भूल गए कि आप कौन से सामान की लिस्ट बना रहे थे। ये होता है लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन का मतलब है कि धीरे धीरे हमारी जो याद रखने की पावर होती है, हमारी मेमोरी होती है, वो वीक होती चली जाती है। धीरे धीरे आपको बिल्कुल याद नहीं रहता कि मैं 5 मिनट पहले मैंने क्या सोचा या मैंने क्या किया। 5 मिनट के बाद आप बिल्कुल भूल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेमोरी है वो बुरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। यही है लैक ऑफ अटेंशन कि 5 मिनट पहले आप क्या कर रहे थे ये आपको 5 मिनट के बाद में याद नहीं आता है। और ये सबसे ज्यादा यूथ्स में देखा जाता है, यूथ से ज्यादा अब बच्चों में देखा जाने लगा है, जिसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं डिजिटल ओवरडोज ही है। यानी कि हम टीवी का, मोबाइल का, लैपटॉप का, ब्लूटूथ का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को कि 24 घंटे कान में ब्लूटूथ लगे होते हैं।
7: और पता है अंशिका, मुझे लगता है कि जो ये आजकल ये जो बेवकूफों वाली चीजें चल गई है ना, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ये जो क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं गैजेट बोलते हैं
8: गैजेट्स,
7: तो कुछ ऐसे गैजेट्स है ना कि अब एक बार की बात है, मैं अभी जल्दी मैं अपनी छत पे खड़ी थी और अच्छा खासा इंसान, मतलब मुझे लग रहा था वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान है
8: जी,
7: और वो गली से जा रहा था और दोनों हाथ में उसके सामान था, कुछ सब्जियां थी, कुछ था, पता नहीं क्या था।
8: ओके।
7: और उसके बाद में वो ऐसे ही बोलता हुआ जा रहा था, बड़बड़ाता हुआ जा रहा था अपने आप में। तो मुझे लगा कि ये आप ये अकेला क्यों बड़बड़ाता जा रहा है, ऐसे लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि पागल इंसान है, क्या है, क्यों ऐसे बड़बड़ाता जा रहा है। बट मैंने जब उसको गौर से देखा तो उसके दोनों कान में एयरबड्स लगे थे, वो फोन भी देख रहे थे। तो कितना, मतलब सोचो कि कहां से कहां टेक्नोलॉजी पहुंच गई। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसको यूज करने से मुझे लगता है कि सामने वाला ये समझता है कि मतलब क्यों ही ऐसा ये हो रहा है, क्यों ऐसे। और अब तो लड़कियां भी ऐसे बगल से निकल जाएंगी, जैसे नॉर्मल देखती हुई जाएंगी एक दूसरे को और बात करती हुई जाएंगी, जैसे हमें वो सामने देख रही है पर वो ऐसे बात करती जाएंगी जैसे लगेगा कि वो हमसे ही बात कर रही है, हमसे ही कुछ कहना चाह रही है। तो ऐसा भी कई बार हो गया है। और ऐसा करने से, यानी अगर आपने ज्यादा एयरबड्स का यूज कर रहे हैं और एयरपॉड का यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको पता है आपके कानों की जो जो एक एक जो सीमित अवधि होती है वो आपकी खराब हो जाएगी। पहली बात तो वो खराब हो रही है। डायरेक्टली फोन पे बात करना भी कितना खतरनाक है। कहा जाता है कि दाएं कान की तरफ आपको बात हमेशा से करनी चाहिए, इवन अकॉर्डिंग टू बाएं कान, ठीक है। तो ये सोचो कि जब इतनी ज्यादा मतलब बोला जाता है कि आप दाएं कान पे आप मतलब 5 से 10 मिनट अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके बाद आप फोन को रिलैक्स करें, देन फिर आप अपना दूसरा कान चेंज करें। और कभी भी एक जगह बैठ के बात नहीं करना चाहिए, चलते फिरते बात करना चाहिए। ये होता है एक टेक्निक फोन पे बात करने की जिनको लॉन्ग बात करनी होती है। बट आजकल तो एयरबड्स लगा लिया, बस भैया बैठे हैं, फोन जेब में है, घंटों बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है सामने आमने सामने। तो इसका जो दुष्परिणाम है ना, ये हमारे कानों पे जाता है।
8: बिल्कुल,
7: कानों की नसों में जाता है।
8: बिल्कुल सही कहा मैम ने कि कानों की नसों में जाता है और इससे आपकी मेंटल स्टेटस पे भी फर्क पड़ता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत लोग शिकायत करते हैं मैम कि फोरहेड में पेन हो रहा है, या शिकायत करते हैं कि पीछे सर के पीछे हिस्से में
7: जहाँ चोटी बांधते हैं ना, वहाँ पर काफी लोगों को दर्द होता है। तो ये दर्द बहुत खतरनाक होता है जिसकी वजह से आपको आगे चल करके प्रॉब्लम भी हो सकती है।
8: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि देखिए फोन यूज करना भी जरूरी है क्योंकि हमारी डेली लाइफ का वो एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन हम हर बार कहते हैं, हर बार आपको बताते हैं कि एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। बात करना है ठीक है, आप किसी से भी बात करो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लिमिट के साथ कि हम इतनी देर बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा यूज करना आपके लिए ही हानिकारक होता है, दूसरों के लिए नहीं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर कि अटेंशन गैप का कहीं ना कहीं एक दूसरा कारण भी होता है जो कि सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जो कि है नींद की प्रॉपर कमी। बच्चों में अगर हम बात करें मैम, तो 8 साल से लेकर के और 25 साल तक के, वैसे 25 साल तक बच्चे तो नहीं होते हैं, लेकिन 8 साल से 25 साल तक की उम्र के जितने भी यूथ्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें कम से कम 9 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। वैसे तो हम बताते हैं कि प्रॉपर 8 घंटे की नींद, लेकिन प्रॉपर 8 घंटे की नींद बताई जाती है मतलब 40 जो प्लस हो गए हैं उनके लिए। बच्चों को हमेशा 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए क्योंकि आप यंग एज में हैं और यंग एज में आप थकते भी हो। ऐसा नहीं है कि अगर हम दिन भर स्कूल जा रहे हैं या जो यंग है वो कॉलेज जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो वो थक नहीं रहे हैं। वो यंग है इसलिए उन्हें वो थकान फील नहीं होती,
7: नहीं हो रही।
8: लेकिन बॉडी तो
7: हाँ, बॉडी तो इंटरनल बॉडी तो उसमें जैसे वीकनेस होती है ना।
8: बिल्कुल,
7: तो कहीं इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को जल्दी सुला देना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे पता है अंशिका, 12 तो नॉर्मल है।
8: यस मैम,
7: 12 तो मुझे लगता है, अब मैं खुद क्यों ना हूँ, मतलब मुझे लगता है कि जैसे 11 बजे एक रूटीन है मेरे मेरा, मैं वो फॉलो करती हूँ। तो वो रूटीन जैसे जैसे शुरू मतलब मैं स्टार्ट करती हूँ वो खत्म होता है, उसके बाद लगता है कि अरे यार अभी तो 12 बजने में एक घंटा, अभी आधा घंटा है ना, चलो ठीक है एक काम और कर लेते हैं। तो जैसे 12 बजता है ना, जैसे एक एक्यूरेट टाइमिंग बन गई है 12 बजे सोना। और सोचो 12 बजे अगर हम सो रहे हैं तो हमें 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, यानी हमें 8 बजे फिर हमारी नींद खुलती है। मतलब हम लोगों की एज में तो 8 घंटे की नींद लेनी लेनी होती है। तो अगर हम दिन में आराम कर रहे हैं तो 2 घंटे वो जोड़ो और हमारा ये जो 8 घंटे की नींद होती है ये, यानी कितने घंटे हो गए, 8 और 2 10 घंटे की नींद, यानी हम लोगों की एज में। और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे 12 बजे सो रहे हैं और उन्हें 6 बजे उठना ही उठना है, क्योंकि 6:30 बजे तक पौने 6 बजे तक वो लोग उठ जाते हैं ताकि उन्हें 6:30 पौने 7 तक उन्हें स्कूल के लिए रेडी होना होता है। तो उनकी नींद कितनी हुई, केवल 6 घंटे की नींद। तो ये तो बहुत ही कम हुई ना।
8: बिल्कुल सही कहा आपने मैम कि ये बहुत ही कम हुई, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि लैक ऑफ अटेंशन होने लगता है और फिर हमें समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम एक चीज पर अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे।
7: हाँ।
8: तो कहीं ना कहीं समझना चाहिए और थोड़े से प्रिकॉशंस करने चाहिए। तीसरा और सबसे बड़ा कारण होता है पैकेज फूड। आजकल के बच्चे घर का खाना दाल चावल रोटी सब्जी।
7: ये वाला जो पॉइंट अभी अंशिका तुम बोल रही हो ना, ये सबसे ज्यादा वाला खतरनाक है।
8: जी मैम,
7: जो जंक फूड्स के पैकेट जो आते हैं ना, जो मेरे घर में भी जिया बहुत खाती है, मतलब उसको लगता है कि बस भूख लग गई, 2-4 पैकेट आ गए एक बार में खत्म, मतलब एक लिमिट होती है बट एक बार। और पता है इससे बच्चों की हेल्थ पे भी असर पड़ता है।
8: जी मैम,
7: क्लास 3rd के बच्चे 4th के बच्चे लग रहे हैं कि वो क्लास 6-7 के बच्चे, जल्दी से उनमें क्या कहते हैं हार्मोन्स जो होते हैं ना वो जल्दी से जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं और बच्चों में ग्रोथ कर दे रहे हैं। मतलब मेंटली ग्रोथ तो कर ही रहे हैं, फिजिकली ग्रोथ तो कर ही रहे हैं, पर वो मेंटली ग्रोथ भी करते जा रहे हैं उसकी इन पैकेट्स के कारण से। हाँ
8: जी, तो अभी मैम ने आपको अच्छे से ब्रीफ किया कि क्या कितने सारे नेगेटिव होते हैं पॉइंट्स की जब आप इनको यूज करते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट और होता है जब हम पैकेज फूड का यूज करते हैं। मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी है मैम, और बहुत तेज भूख पे मन क्या करता है, मतलब मैं अपना पॉइंट बता रही हूँ कि अगर मुझे बहुत तेज कभी भूख लगी होती है ना, तो मेरा मन यही करता है कि मैं जितनी जल्दी हो जाए घर पहुंच जाऊं, और घर पे फिर मुझे कुछ हैवी चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चों को क्या होता है कि उनको तो बस पैकेज फूड मिल गया, उन्होंने ले लिया। इससे आप अपनी भूख भी मारते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 5 रुपए के चिप्स का पैकेट अगर आपने खाया तो वो पेट भरा, लेकिन भूख तो आपकी खत्म हो गई ना। उसके बाद अगर आप खाना खाने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम तुरंत खाने लगेंगे, ये तो नहीं होगा। भूख कभी नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि उसका सीधा असर हमारी आंतों पे पड़ता है। अगर आप अपनी भूख को अवॉइड करते हैं तो इससे आपकी आंतें सूज जाती हैं और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए कभी भी अपनी भूख अवॉइड नहीं करनी चाहिए, चाहे आप एक ही रोटी खाइए।
7: हाँ,
8: मतलब ये सेंस नहीं है।
7: जैसे एक बहुतों की आदत होती है कि एक मतलब एक साथ थाली भर के बैठ गए और खा लिया, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आप एक एक घंटे में कुछ कुछ खाते रहो, 2-2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहो, लेकिन हाँ ये है कि भूख को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। जैसे कि सच
8: बिल्कुल सच्ची वाला
7: बोल देती है,
8: कभी कभी
7: कभी कभी वो सच बोल देती है, अदरवाइज तो वो हमेशा झूठी बोलती है, बट कभी कभी सच। थैंक यू अंशिका फॉर अ लवली गिफ्ट।
8: थैंक यू मैम।
7: कहाँ की बात कहाँ ले आती हो अंशिका, बेवजह पता नहीं क्या बोलने लगती हो। चलो अब हम लोग का मूड हो गया है थोड़ा सा स्विंग स्विंग, तो एक गाना सुना देते हैं, ठीक है?
8: चलिए लिसनर्स, एक बहुत ही प्यारा सा गाना।
7: ये मन से चला रही है गाना, मुझे पता
8: है। नहीं मैं सब समझती हूँ, मतलब मैं मुझे सिर्फ छेड़ रही थी। आई नो, आई अंडरस्टैंड। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना, आते हैं सॉन्ग के उस पार, सुनिए और एंजॉय करिए।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है
4: RJ अंशिका
0: जी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्योंकि हम लोगों की बकबक अभी बहुत ज्यादा वाली हो गई थी। कहते हैं ना कि जब मिल जाते हैं चार यार यहाँ तो हो जाती है। कौन सा अमिताभ जी का गाना है जहाँ मिलते हैं चार यार? भाई लिसनर्स आप ही बता दें,
4: हम भूल गए, हम भूल गए, थोड़ा सा वो हो गया।
0: जहाँ मिलते हैं चार यार तो हो जाती है, पता नहीं कौन सा, ये
4: दुनिया निसार या समथिंग,
0: पता नहीं क्या, कोई ऐसा कुछ था। तो आप लोग मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, और क्योंकि मुझे ये लाइन पूरी करनी है। तो जब तक हम लोग अपना सेगमेंट शुरू करते हैं तब तक आप मुझे बताएं। चलो,
4: तो ये होता है कि लैक ऑफ अटेंशन हम बता रहे हैं और कभी कभी हमारे ही साथ हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब बताते हैं कि इसके लक्षण क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि लैक ऑफ अटेंशन ही है, क्योंकि भूलना तो कई बार नॉर्मल भी होता है। अच्छा, पैसे रखने की सबकी आदत होती है, कुछ लोग किसी एक स्पेसिफिक जगह रखते हैं तो कुछ कहीं भी रख देते हैं। अगर आप अपनी एक, जैसे आपकी आदत है कि आप कुछ चीजें कहीं भी रखकर भूल जाते हैं, तो इसका मतलब है लैक ऑफ अटेंशन है। जैसे बच्चों में होता है, पेंसिल कहाँ रख दी, बॉक्स रख दी, मम्मी मेरी बुक नहीं मिल रही है, कल तो हम यहीं बैठ के काम कर रहे थे, मेरी कॉपी मैंने कहीं रख दी है, तो इसका मतलब है कि ये लैक ऑफ अटेंशन है बच्चों में, आप इसी से समझ सकते हो। दूसरी चीज आती है कि कई बार बच्चों को होता है कि खाने का मन नहीं करता। हम बहुत नॉर्मल लेते हैं कि अगर इंसान का खाने का मन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो, भूख नहीं लगी है। लेकिन भूख न लगना किसी भी मेंटल या फिजिकल दोनों ही बीमारी, अगर आपको कोई भी हो रही है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो उसका सबसे पहला लक्षण होता है कि इंसान को खाने का मन नहीं करता।
0: अच्छा, ऐसा है?
4: ऐसा है, कोई भी माइनर भी, बहुत छोटी भी आपको चलो पकड़ते हैं, अगर जुकाम भी है मैम किसी को, तो मन नहीं करता, अरे नहीं खाना रहने दो, पानी भी मीठा लगता है उसमें, मन नहीं करता है पीने का,
0: पानी मीठा लगता है।
4: उसी तरह अगर आपको कोई बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए कोई मेंटली डिसऑर्डर है या कुछ भी ऐसा है, तो हम खाने से सबसे पहले दूर होते हैं और उन चीजों से जो हमें पहले बहुत ज्यादा पसंद थी।
5: एग्जैक्टली।
4: अब मैं अपनी बात करूं, जब मेरी मम्मी तहरी बनाती हैं तो मेरा बस यही मन करता है कि उसमें जितना टाइम वो विसल आने में लगे और मुझे तुरंत मेरी थाली में वो मिल जाए। मैं मम्मी से कहती हूँ, मम्मी सैलेड काट के सब रेडी रखना, कुछ ऐसे नहीं हो कि उसको बनने के बाद में कुछ करना हो। लेकिन अब मान लीजिए मैं नहीं खा रही हूँ, मैंने दो दिन तीन दिन या एक दो दिन बिल्कुल नहीं खाया, हल्का फुल्का खाया और छोड़ दिया, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है, या तो फिजिकली कहीं मुझे पेन हो रहा है या तो मैं मेंटल अपने स्टेटस में नहीं।
5: ये पता है, खाने पीने को तो हम मानते हैं और ये इसका असर पता है, जब हम कुछ स्ट्रेस में होते हैं, जब हम कोई चीज सोच लिए होते हैं, तो इसका असर पता है नींद पे भी पड़ता है। क्योंकि मैंने ये आजमाया है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो इसका साफ और साफ मतलब होता है, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको कोई डिजीज हो रही है या हो चुकी है, ये भी नहीं होता है। अगर आपने मेजर स्ट्रेस आपको है, आपने कुछ सोच लिया है, कुछ सोच रहे हैं, तो दो चीजों पे असर ज्यादा पड़ता है। सबसे पहला असर पड़ता है आपके खाने पे और वो भी आपकी फेवरेट चीजों पे, और दूसरा आपके सोने पे, यानी जब आप सो रहे हो, अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो आपको पता नहीं कौन कौन सी बातें दिमाग में गूंजती रहेंगी।
4: बिल्कुल।
5: तो भाई अगर आपके पास स्ट्रेस है तो आप समझ जाइए, जब आपको भूख नहीं लग रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो इसका सीधा असर होता है कि आप बहुत बड़े वाले स्ट्रेस में है।
4: अच्छा, ओके। डॉक्टर अभिमन्यु द्विवेदी जी हैं कि जिन्होंने लिखा है, जहाँ चार यार मिल जाएं वहीं रात हो
5: गुलजार। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कौन है?
4: अभिमन्यु द्विवेदी।
5: थैंक यू सो मच, क्योंकि ना ये लाइन मेरे से मिस हो गई थी, और ये मूवी है शराबी, जिसमें अमिताभ जी हैं, और उसी शराबी मूवी का ये गाना था, जहाँ मिल जाए चार यार वही रात हो जाए गुलजार। तो ये
4: तो चलिए हम करते हैं महफिल को गुलजार किसी की प्यारी सी आवाज के साथ। यस, कारण बता दिया, लक्षण बता दिए, माय ड्यूटी इज कंप्लीट।
5: तो अब मैं आपको बताऊंगी इसके निवारण, ठीक है?
4: बड़े प्यार से। अच्छा, मैम निवारण बोलती है तो बड़े प्यार से, मुझे उससे कुछ याद भी आ जाता है। कुछ यादें होती है जो कई बार ट्रिगर हो जाती है।
5: ठीक करने की टेक्निक को कहते हैं निवारण।
4: अब मुझे लग रहा है वो देना पड़ेगा, जैसे कहते हैं जो कर देती है सबको ठीक, ऐसी ही है कुछ, मुझे ऐसे कुछ बनाने पड़ेंगे।
5: हाँ, बनाना पड़ेगा, या तो हम सोचे ऐसा बीजम बना लिया जाए।
4: नहीं, ये
5: बना दिया जाए।
4: नहीं,
5: थोड़ा बीजम बना दें तो उसको सही रहेगा।
4: ऐसा नहीं है, मतलब मैं तो मस्ती कर रही
5: हूं। ओके, जी मैम बताइए। काम पे लगते हैं, वापस आते हैं, तो सबसे पहला जो है हमारा, जो कि सोल्यूशन होता है, लैक ऑफ, क्या बोल रही थी अंशिका?
4: लैक ऑफ अटेंशन।
5: तो उसका सबसे पहला है कि आप स्क्रीन टाइम को सख्त करें, यानी कि नो टाइम चैलेंज, यानी नो स्क्रीन, जो कि आप अपना टीवी का जो टाइमिंग है, मोबाइल का जो टाइमिंग है, उसके लिए आपको एक चैलेंज करके बच्चों को देना है। वो कैसे करना है मैं बताती हूँ। बच्चों को सोने से कम 2 घंटे पहले मोबाइल और टीवी से पूरी तरह दूर कर दें और ये दोनों चीजें बंद कर दें।
4: वैसे बहुत मुश्किल है,
5: बच्चों से छोड़ो बड़ों से है, मुझे पहले ये बताओ।
4: हाँ,
5: बड़ों से है, मुझे बच्चे तो चलो बच्चे मन के सच्चे, बच्चे कभी नहीं वो करेंगे, लेकिन हमको ये बता दो कि बड़ों से हो पाएगा ये चीज?
4: मुझे नहीं लगता। मतलब आजकल मैं आपको बताऊं लिसनर्स, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि वॉशरूम भी जा रहे हैं तो फोन लेके जा रहे हैं।
5: हाँ।
4: अगर नहा भी रहे, मतलब बाथरूम भी जा रहे हैं। हाँ। तो फोन लेके जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा सेंस वो नहीं था मैम, मेरा दूसरा सेंस था, आप गलत सेंस ना समझें।
5: जी
4: मेरे, और मैंने ये देखा है, मतलब मेरे अपने घर में मैंने
5: देखा है।
4: मैंने, अरे आई,
5: अच्छा,
4: मेरा मतलब है मैंने अपने घर में देखा है। मेरे छोटे वाले जो चाचा जी हैं वो भी ऐसा ही करते हैं कि जब नाना होता है तो फोन लेके जाते हैं, तो फिर चाची डांटती है उनको। ये मैं कह रही
5: हूँ, इतना तो टाइम होता होगा लोगों को, नहीं?
4: हाँ, ये मैं कह रही हूँ।
5: चलो दूसरा है कि खाना खाते समय स्क्रीन बिल्कुल भी ना देखें, देखने दें बच्चों को। जब स्क्रीन से मिलने वाली जो कि स्क्रीन से मिलने वाली जो एक कृत्रिम उत्तेजना कम होती है, तो बच्चा वास्तविक दुनिया में ध्यान लगाना शुरू कर देगा। क्या ऐसे?
4: जी। मैम अगर यहाँ करेंगे तो आपका प्रोग्राम कैसे लिसन करेंगे, चैट में कैसे फीडबैक देंगे, जरा बताइए। पहले तो समता मैम की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, आपका जो भी नाम है, और अंशिका मैम तो ठीक है, तो हम अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे ये भी आप जरा बताएं, मुझे आपकी बात जो है वो प्रॉपर समझ में नहीं आई। ये लिखा हुआ है मैम, तो इन्होंने थोड़ा सा उसमें मिस्टेक किया है, ये ऊपर है थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा कुछ
5: पहली वर्ड्स बात तो मैंने कल आपके मैसेजेस को पढ़ा नहीं था, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जो अपने नाम को छिपाते हैं और अपनी आइडेंटिटी को एक मतलब उसको क्लियरेशन नहीं देते हैं। तो आपने अपना कोई नाम नहीं लिखा है तो हम आपके मैसेजेस को रीड नहीं करेंगे, सॉरी, क्योंकि जब तक आपका कोई नाम नहीं होगा ये फेक आईडी से जो भी हमारे पास मैसेजेस आते हैं तो हम उन्हें रीड नहीं करते हैं अंशिका
4: जी मैम,
5: ठीक है? तो वो जो भी लिख रहे हैं उनको लिखने दो, एंड जो कि अभी महेंद्र जी आ गए हैं उनका मैसेज आप पढ़ेंगे
4: जी,
5: नागेश्वर जी आ गए हैं वो, क्योंकि बिना आईडी के बिना नाम के हम किस नाम से आपको संबोधित करें कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, कहां से आए हैं।
4: बिल्कुल
5: ठीक है
4: जी मैम,
5: तो काम पे लगते हैं। और दूसरा है कि चेकिंग मेथड करना चाहिए, चेक डाउन, यानी कि आपके चेक डाउन करना चाहिए कि बच्चे को एक बड़ा काम न दे, एक बच्चे को एक साथ बड़ा काम न दे। अगर उसे 10 लाइन लिखनी है तो उसे कहें कि अभी सिर्फ 3 लाइन लिखो, फिर 2 मिनट का ब्रेक करिए एंड फिर उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कराएं। छोटे छोटे आप लक्ष्य पूरे होने पर बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो और फोकस दोनों बढ़ता है, ठीक है
4: जी।
5: नेक्स्ट है कि आप फोकस बढ़ाने के लिए कुछ गेम का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए, वीडियो गेम हो गया, पहेलियां हो गया, पजल्स हो गया, ब्लॉक बिल्डिंग हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया, या फिर कलर्स को अलग अलग मतलब जैसे कलर्स बहुत सारे हो गए और उससे पूछना है कि इसमें ब्लू कौन सा है, पर्पल कौन सा है, रेड कौन सा है, ये वाले छोटे छोटे जो गेम होते हैं इसको हम कर सकते हैं। तो भाई ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण से हम बच्चों की मेंटल हेल्थ तो अच्छी कर ही सकते हैं और साथ ही साथ में उनकी फिजिकल हेल्थ को भी हम अच्छा बना सकते हैं।
4: और बड़े भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बड़े भी फोन आई थिंक ज्यादा ही चलाते हैं, तो बड़े भी यूज कर सकते हैं, तो देखिए हम डबल फायदा लेकर आते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सुनना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग।
5: ब्रेक ले
4: जी मैम, तो चलिए चलते हैं, एक प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी RJ समता और साथ में है
6: RJ अंशिका।
5: अपना टाइम क्यों लगाती हूँ?
6: समय लेना चाहिए,
5: हर चीज का समय नहीं लेना चाहिए, कुछ फैसले जल्दी लेने चाहिए, समझ में, वरना समय निकल जाता है, गाड़ी निकल जाती है। तो आइए दोस्तों फिर से शुरू करते हैं आपके अपने पसंदीदा शो में, जो कि आज है ट्यूसडे और लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेगमेंट पे हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। आइए जानते हैं आज का अपना अगला टॉपिक।
6: अगला टॉपिक है हमारा आज कुछ पेट्स से रिलेटेड, कुछ टिप्स हैं जो कि पेट्स के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो सबसे पहली ये जो हमारी टिप है वो ये है कि अपने पेट्स, पेट आपने जो भी रखा हो, जैसे मान लीजिए डॉग है, कैट है या रैबिट है, जो भी है, सुबह सुबह कभी उसका माउथ वॉश कराना नहीं भूलना चाहिए।
5: ओके।
6: क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे हम ब्रश नहीं करते तो हमें लगता है ना कि कुछ भारी भारी सा है और बैक्टीरिया मुंह में जम हो जाते हैं, वही पेट्स के साथ भी होता है। अगर आप सुबह सुबह उनका माउथ वॉश नहीं कराते हैं तो इससे उनके मुंह में जो बैक्टीरिया जमे हुए होते हैं वो पेट में चले जाते हैं और फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए माउथ वॉश जरूर कराना चाहिए नियमित रूप से। अगर डेली नहीं हो सकता है, जैसे डॉग को तो डेली नहीं नहलाया जाता है, तो अगर आप डेली नहीं नहला सकते हैं तो हर 2 दिन पे उनको जरूर नहलाना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि हमेशा उन्हें जब भी आप खाना दे रहे हैं तो खाना हमेशा फाइबर युक्त और प्रोटीन युक्त होना चाहिए। फाइबर और प्रोटीन से युक्त खाने का मतलब होता है घी जरूर दीजिए, क्योंकि घी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एनर्जी होती है, तो पेट्स को देना चाहिए, लेकिन बहुत कम। मीठा बिल्कुल नहीं देना चाहिए और स्प्राउट्स देने चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि स्प्राउट्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, वैसे ही हमारे पेट्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको स्प्राउट्स ज़रूर देने चाहिए। और चौथा और लास्ट ये है कि आप उन्हें जिसमें भी पानी देते हैं ना, मतलब जिस भी बर्तन में आप पानी और खाना देते हैं, वो रेगुलरली गर्म पानी से साफ करना चाहिए, स्पेशली कि बारिश के मौसम।
5: और मुझे तो ये लगता है कि हम जिसमें पेट्स को खाना देते हैं ना, वो भी उनका पॉट जो है हमेशा से क्लीन रहना चाहिए।
6: बिल्कुल,
5: क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्पेशली डॉग्स के लिए कि जब वो अपनी जुबान से जब खाते हैं तो कई बार लार जो होती है ना वो उस पॉट में आ जाती है, और फिर क्या करते हैं हम लोग को लगता है कि यार फिर से इसी को तो खाना है, हम लोग फिर से उसी में दे देते हैं, तो कई बार उस लार में बैक्टीरियाज होते हैं जो काफी समय के बाद में उसमें कीटाणु आ जाते हैं। मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हमारे घर में भी पेट्स हुआ करते थे पहले, स्पेशली डॉग, तो हम लोगों को भी ये चीज का एक्सपीरियंस है, और फिर हम लोग उसके पॉट को हमेशा धुलते थे और फिर नेक्स्ट जो उसका मील होता था उसको हम लोग उसमें धुल के देते थे।
6: जी मैम,
5: समझ में आया? हाँ, तो अब ये छोटू सा ब्रेक था हमारा, क्योंकि हमारा टाइम जो वो भागा जा रहा है, और एक गाना सुनाने के बाद में सीधे आएंगे आपके अपने बच्चों की मॉरल स्टोरी के पीछे, क्या है आज का मॉरल हमारा स्टोरी के पीछे। तो बस हम यूं गए यूं आए और जल्दी से सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की मॉरल स्टोरी, जो की है अभी बहुत ही अच्छी बात। तो चलिए अंशिका शुरू करें।
4: जी मैम।
3: देखिए, जो आज की स्टोरी है उसका मॉरल तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्टोरी बता देते हैं कि एक बार एक बालक राम अपने भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। तब उन्होंने मात्र कुछ ही समय में सभी वेदों और धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा को देखकर जब एक सह शिष्य ने उनसे उनकी इस असाधारण सफलता का रहस्य पूछा, तो श्री राम ने बड़े ही विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए कहा कि कोई भी विद्या कला केवल शक्ति से नहीं, बल्कि तीव्र एकाग्रता, कड़ी मेहनत और अपने गुरु के प्रति सच्चे आदर और समर्पण से ही सिद्ध होती है। कि एक छोटी सी घटना हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे हम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो जाएं, सफलता पाने के लिए विनम्रता और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण होती है।
4: बिल्कुल सही।
3: अब मुझे इस कहानी से एक और चीज याद आ गई कि इसका सीधा जो इसका श्रेय है मैं अंशिका को देती हूँ, कि जिसे कहते हैं ना कि हर एक चीज सीखने के लिए तीव्र एकाग्रता यानी फोकस, कड़ी मेहनत और अपने गुरु के प्रति सच्चे आदर और समर्पण, जो अंशिका ने मेरे साथ किया।
4: थैंक यू।
3: और इसीलिए आज उसने महारत हासिल कर ली कि मैं अगर नहीं भी आती हूँ तो आराम से, हाँ ठीक है मैम कोई बात नहीं, आप मत आइए मैम, मैं कर लूंगी शो, ठीक है मैम। मैं उज्जैन गई थी, मैं इसकी बातें सुन रही थी वहाँ पर, रेडियो मैंने ऑन किया अपने फोन पे, और मैं क्योंकि ट्रैवलिंग कर रही थी तो मुझे लगा कि उस समय बिल्कुल खाली समय था, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं इन लोगों की बातों को सुनती हूँ। सुना तो इतने अच्छे से, मतलब मुझे फील कर दिया इसने इतने अच्छे से, वो पूरा मतलब जिसे कमिटेड एक होता है, और उस समय आरजे आकांक्षा थी, आरजे आकांक्षा को फिर मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा अरे अंशिका मैडम को बोलने दीजिए, उसका भी तो मैं सुनूँ, उसकी आवाज़ सुनूँ। और इसने फिर जब बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ, एक परिपक्व और एक पूर्ण निष्ठावान जो इंसान मैंने बना दिया है और वो बनके निखर चुका है, बन चुका है। तो इस काम से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपना फोकस करना है, हमें अपने लक्ष्य को फोकस करना है, तो सबसे पहले हमें अपने प्रति एक आदर और एक एक एक सम्मान अपने हृदय में हमेशा से रखना चाहिए, और हमेशा से जैसे कहते हैं ना कि सम्मान आदर तो रखना चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ा विश्वास पूर्ण होना चाहिए, विश्वास खात नहीं, विश्वास पूर्ण होना चाहिए।
4: वाह, जबरदस्त। लेकिन इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो सिर्फ यही निकलता है कि जब बनाने वाला बेमिसाल हो तो बनने वाला तो बेमिसाल होगा ही होगा। तो भाई क्रेडिट गोज टू आरजे समता, मैं तुम्हें ही क्रेडिट देती हूँ। तो चलिए, मुझे लगता है क्रेडिट देते हुए और लेते हुए और इतनी प्यारी सी कहानी को सुनते हुए हमारा समय हो गया।
3: तो चलिए अंशिका को देते हैं छुट्टी और मैं मिलूंगी आपसे कल, यानी कि मैं तो अभी जा रही हूँ, अंशिका भी आपके साथ कॉलेज में है, बट हम दोनों मिलेंगे फिर से कल के जो कि शो होता है सुन सहेली में। देन आपसे अभी लेते हैं विदा, लेकिन हमारे आप सभी से छोटी सी विनती है कि योगशाला भी आप सुबह सुना करिए, क्योंकि योगशाला में नई नई सीरीज, नए नए जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स को लेकर के आजकल आ रहे हैं, तो प्लीज सुने और उसे भी उतना ही प्यार सम्मान दें जो कि सब प्रोग्राम्स को आप देते हैं। टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286 9876 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

पहला प्यार है और पहली पहली बार है और जिसे पहला पहला प्यार हो जाता है, कभी आप उससे पूछ के देखें कि उसकी हालत क्या ही होती है। कुछ बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी हालत होती है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम है आपके अपने पसंदीदा वाले शो में, कि जिसका कि नाम है कॉलर ट्यून गोंडा, जहां पर आप कॉल करते हैं, अपनी फरमाइशें देते हैं और हम आपकी फरमाइशों को प्ले करते हैं। तो भाई फटाफट से, आज भी हमारे पास हैं बहुत सारी फरमाइशें, लेकिन इससे पहले कि हम फरमाइशों की तरफ चलें, हम आते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि आ चुके हैं और उन्होंने अपनी हाजिरी लगा दी है। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ यहाँ पे सुरेंद्र यादव जी को। तो कैसे हैं सुरेंद्र जी, अपना हालचाल ज़रूर बताइए। और बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी लिसनर का जो कि हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं उनका भी, जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं उनका भी, और जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती है आपकी होस्ट एंड दोस्त आर जे अंशिका। तो वही आर जे अंशिका के साथ आप कॉलर ट्यून गोंडा को इन्जॉय करने वाले हैं, सुनने वाले हैं अपने पसंदीदा सॉन्ग्स को। एक बात इसी के साथ और बता दूं कि हमारे और भी लिसनर जो कि हमें सुन रहे हैं, वो भी अगर अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए फटाफट से कुछ नहीं करना है, फ़ोन उठाना है, डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा देना है लिसनर्स आपको, और आपकी फरमाइश को हम ज़रूर से प्ले करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं और बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश की तरफ। और इसी के साथ सनी पांडे जी आ चुके हैं जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सनी जी, कैसे हैं आप? तो आइए बढ़ते हैं पहली फरमाइश की तरफ, देखते हैं कि हमारी जो पहली फरमाइश है वो किसकी है। तो भाई हमारी पहली फरमाइश है सुनील कुशवाहा जी की। तो आइए सुनते हैं सुनील जी के सॉन्ग को और आप सभी रहिएगा तैयार, क्योंकि हमारे पास आज का भी है कुछ खास ज्ञान। भाई कल का जो ज्ञान था वो हमारे लिसनर्स को पसंद आया था, तो आज का भी कुछ खास ज्ञान है हमारे पास। लेकिन उससे पहले आइए बढ़ते हैं सुनील जी की फरमाइश की तरफ जो कि सुनील कुशवाहा जी की है। सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और आते हैं फरमाइश के उस पार, ज्ञान बताने की आज का ज्ञान क्या है।

बिल्कुल, तू जो हंस दे बहार आ जाए भाई, हंसी हमारी मुस्कुराहट होती इतनी प्यारी है, जो कि एक बार हमारे चेहरे पर आ जाए तो बहार आ जाती है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और उससे पहले मैं देख रही हूँ कि सुरेंद्र नागेश्वर जी आ गए हैं, जो कि लिख रहे हैं वेलकम बैक अंशिका मैम, थैंक यू नागेश्वर जी। और इसी के साथ मिश्रा ऑप्टिकल, जो कि हमें गोंडा से सुनते हैं, वो भी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी, आप सभी का स्वागत है कॉलर ट्यून गोंडा में। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है देवी प्रसाद जी की। तो आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को।

गलती से कभी आपकी आंखों में आंसू आ भी जाते हैं तो हमेशा उन्हें हिम्मत से सामना करना चाहिए, क्योंकि आंसू भी उन्हीं की आंखों में आते हैं जिनमें उन्हें सहने की ताकत होती है। इसलिए जब भी आंखों में आंसू आए, खुशी के हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गम के हैं तो समझिए कि आप और मजबूत होने वाले हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है सुरेंद्र यादव जी की। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र यादव जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ इस सॉन्ग के उस पार आपसे आज के बहुत ही प्यारे से ज्ञान के साथ। लेकिन वो क्या है ये आप भी सोचिए और मैं भी सोचती हूँ।

शिव शंकर डमरू वाले। शिव शंकर हमारे बहुत ही प्यारे और भोले भाले और बिल्कुल जग में उनकी माया तो धन नहीं धन है। तो आइए लिस्नर्स अब बढ़ते हैं कि भाई आज का क्या है ज्ञान। तो मैं बताऊंगी कि आज का ज्ञान क्या है और क्या मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि भाई आप सभी बताएं कि आप में से किसे किसे फुटबॉल पसंद है, क्योंकि आज का हमारा कुछ ज्ञान उसी से जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत ही प्यारा सा आज हमारे पास चुटकुला कह लें या ज्ञान कह लें, दोनों ही है, कि एक मरीज़ होता है, वो कहता है डॉक्टर साहब जब मैं सोता हूँ तो सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर, ठीक है या गोली लो और आज रात में ही खाना शुरू कर दो। मरीज़, डॉक्टर साहब क्या गोली मैं कल से खा सकता हूँ? डॉक्टर पूछता है कल क्यों खानी है? तो मरीज़ जवाब देता है क्योंकि आज बंदरों का फाइनल फुटबॉल मैच है। तो भाई ऐसे भी हैं कुछ कि जिन्हें क्या है ना, अपनी प्रॉब्लम से निजात भी चाहिए, लेकिन निजात पाने के लिए जो करना है वो करने में वो लेट भी करते हैं। इसमें आपने देखा ना कि किस तरीके से जो बंदा है, मरीज़ है, उसे छुटकारा भी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि हम एक रात रुक भी जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रुकना नहीं है, उसके लिए आपको हमेशा हमेशा कोशिश करती रहनी है, क्योंकि जो कोशिश करते हैं उन्हें उनकी मंजिल ज़रूर मिलती है। तो अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं और आपको मेरी बात आई हो समझ, तो फटाफट से आप हमें चैट बॉक्स में मैसेजेस करें और अपना फीडबैक दें। और इसी के साथ धर्मेंद्र मोहन जी, सुरेंद्र यादव जी, जो कि धर्मेंद्र मोहन जी हैं, वो लिख रहे हैं आवाज़ विकास से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। अंशिका मैम गुड आफ्टरनून। और इसी के साथ मुस्तफ़ा जी जो कि हमें सऊदी से सुनते हैं वो भी लिख रहे हैं।

गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है धर्मेंद्र मोहन जी की, जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी के सॉन्ग को।

बिल्कुल, ना बैठे ना दीदार किए, ना प्यार किया ना इकरार किया। भाई ये तो गलत बात है कि हम इंतज़ार करते हैं और आप बहाने बनाते हैं। ना प्यार किया ना इकरार किया तो फिर मिले ही क्यों। बिल्कुल, जब भी आप अपने अपनों से, अपने दोस्तों से या किसी से भी मिलते हैं तो प्यार से बातें भी करें, इकरार भी करें, साझा भी करें, क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं उन्हें सिर्फ हमारे प्यार की और इकरार की ही ज़रूरत होती है। और जब भी कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो या आपको कहीं जाना हो तो ना ही लेट होना चाहिए और ना ही हमें लेट होने के बाद में बहाने बनाने चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ अच्छी नहीं होती है। इससे अच्छा है कि अगर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है तो फटाफट से उसके पास में पहुंच जाइए। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मुस्तफ़ा जी की, जो कि हमें सऊदी से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं मुस्तफ़ा जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार अगली फरमाइश के साथ। लेकिन बता दूँ कि अगर मुस्तफ़ा जी की तरह हमारे और भी लिसनर अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए फटाफट से फ़ोन उठाइए, डायल करिए 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचा दीजिए। और महेंद्र जी लिख रहे हैं कि मुझे फ़ुटबॉल बिल्कुल पसंद नहीं, क्रिकेट पसंद है। भाई हमारे इंडिया में तो क्रिकेट ही बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। वैसे एक बात बताऊं, क्रिकेट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या करें, इसमें फ़ुटबॉल था। वैसे आप फ़ुटबॉल की जगह क्रिकेट भी ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मुस्तफ़ा जी की। सुनते हैं मुस्तफ़ा जी के सॉन्ग को, बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका।

तुम दिन को दिन कहो तो दिन कहेंगे, तुम रात कहो तो रात कहेंगे। बिल्कुल भाई ऐसा ही होना चाहिए, जो तुम्हें हो पसंद वही बात कहेंगे। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जिसकी की फरमाइश की थी मुस्तफ़ा जी ने। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मिश्रा ऑप्टिकल जी की। तो आइए सुनते हैं मिश्रा ऑप्टिकल जी के सॉन्ग को, मिलते हुए सॉन्ग के उस पार बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

जाने मन जाने मन बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आया। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। इससे पहले पहले पहले भाई चैट बॉक्स में मेरे लिए आया है एक सवाल, महेंद्र जी ने पूछा है, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं। तो अंशिका मैम, आपका क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर कौन सा है? तो मैं बता दूं कि भाई हमारे इंडियन टीम में मेरा फेवरेट जो कि है किंग कोहली। भाई मुझे तो विराट कोहली बहुत पसंद है। आप सभी भी बताएं कि आपको कौन कौन से प्लेयर पसंद है। तब तक सोचिए, आगे बढ़ते हैं हम हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है कमल नयन जी की। आइए सुनते हैं कमल नयन जी के सॉन्ग को।

बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी कमल नयन जी की। आइए अब बढ़ते हैं सीधे हमारी अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। ओके, और सनी पांडे जी लिख रहे हैं, अंशिका मैम पहले बच्ची थी अब और अब हो गए। अच्छा, ओह, कुछ दिन बाद घर मालकिन भी हो जाएंगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, थैंक यू सो मच सनी पांडे जी। और महेंद्र जी लिख रहे हैं कि मेरा फेवरेट प्लेयर MS धोनी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है महेंद्र जी। अब फटाफट से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है इम्तियाज़ जी की। आइए सुनते हैं इम्तियाज़ जी के सॉन्ग को, बने रहिए कॉलर ट्यून गोंडा में, मिलती हूँ इस प्यारे से सॉन्ग के उस पार।

0: शौक तेरा।
1: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले वही चलते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि चैट बॉक्स में मुझे जो है नानी और मालकिन और सब कुछ बना दिया गया है। नागेश्वर जी लिख रहे हैं, हाँ पहले बच्ची थी अब दादी बन गई हैं। थैंक यू नागेश्वर जी, वैसे अच्छी उपाधि दी है आपने मुझे, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं लिसनर्स हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है महेंद्र जी की, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं महेंद्र जी के सॉन्ग को, जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है चांदनी मूवी का। तो आइए सुनते हैं।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया,

चांदनी हो मेरी चांदनी, मैंने इस दिल पर लिख दिया तेरा नाम। और भाई बिल्कुल सही, महबूबा से मिलने कभी भी खाली हाथ नहीं आते, ये तो बात बिल्कुल ही सही है। जब भी अपनी महबूबा से मिलने जाइए तो एक प्यारा सा फ्लावर, कोई प्यारा सा गिफ्ट ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि लड़कियों को गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं। वैसे आजकल तो लड़कों को भी बहुत पसंद होते हैं, और कभी भी बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमेशा उन्हें खुश करना चाहिए। और उनसे मिलने जब भी जाना चाहिए तो उनकी फेवरेट चीज़ ज़रूर लेकर के जानी चाहिए। तो हमारे लिसनर्स बताएं कि वो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। तब तक हम चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है सबलू जी की। तो आइए सुनते हैं सबलू जी के सॉन्ग को, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि हमारे लिसनर्स इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ज़रूर बताइए।

उतरने की कोई भी बात नहीं है। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है रेनू तिवारी जी की। तो आइए बढ़ते हैं रेनू तिवारी जी के सॉन्ग की तरफ, मिलती हूँ आपसे अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए मैंने जो सवाल आप सभी से किया था वो सोचें और जवाब दें, हम ज़रूर आएंगे और आपके जवाब को चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं रेनू जी के सॉन्ग को।

कब से बैठी हूँ मैं इंतज़ार में। भाई ये इंतज़ार भी जो होता है ना, वो बहुत ही गज़ब का होता है कि जब हमें किसी चीज़ का, किसी इंसान का इंतज़ार होता है तो एक एक पल भी हम पर भारी हो जाता है, आपका एक एक पल भी नहीं बीतता। तो इसीलिए कहते हैं ना कि इंतज़ार जो होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, और जब किसी खास का इंतज़ार हो तब तो क्या ही कहना। और प्यार में तो इंतज़ार का अपना कुछ अलग ही मज़ा है। वैसे इंतज़ार का मज़ा तो तब भी होता है जब मम्मी आपकी कोई फेवरेट सी चीज़ बना रही हो खाने में, और आपको बस लग रहा हो कि यूँ ही मिल जाए, जल्दी से बन जाए और मिल जाए। ऐसा इंतज़ार तो सभी ने किया होगा, तो बहुत ही प्यारा वाला होता है इंतज़ार। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है रिजू जी की। तो आइए सुनते हैं रिजू जी के सॉन्ग को, मिलते हैं आपसे सॉन्ग के उस पार। बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल अ ट्यून गोंडा में अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ।

0: तेरे लिए बेहतर है कुछ।
1: तेरी यही खामोशी मैं तुझे उठा की जगह वही है। एक ठुंटी बार इस्तेमाल करेंगे
2: कि तुम्हारे अंदर ईमान चाहे जन्नत में

कभी कुछ भूले बिसरे हुए दोस्त, कुछ भूले हुए लोग, कुछ वो लोग जो आपसे कभी दूर हो जाते हैं बस यूं ही याद आते हैं, और यादें बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही खूबसूरत होती हैं, जो कि हमेशा हमारे मन को गुदगुदा जाती हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है मुमताज़ अंसारी जी की। तो आइए सुनते हैं मुमताज़ अंसारी जी के सॉन्ग को, और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, और नागेश्वर जी लिख रहे हैं, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ, कहीं मेरा हाथ पकड़कर शादी करके बचा ले। ओके, तो भाई नागेश्वर जी, ये तो हमारा समझना है कि क्या होता है, और वैसे बचा ले, वैसे बचाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश, जो कि हमारी अगली फरमाइश है, जैसे कि हमने बताया था, मुमताज़ अंसारी जी की। सुनते हैं उनके सॉन्ग को।

आँखें। बिल्कुल, तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले चलते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि चैट बॉक्स में आ गए हैं हमारे लिसनर जो कि हैं रिजु जी, और रिजु जी के साथ में इम्तियाज जी। रिजु जी लिख रहे हैं, थैंक्स फॉर प्ले माई सॉन्ग, यू वेलकम रिजु जी। और साथ में इम्तियाज जी लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग करण अर्जुन मूवी से, जो कि फरमाइश की है चांद बाबू जी ने। तो आइए बढ़ते हैं चांद बाबू के सॉन्ग की तरफ।

सच्चाई को काट सके ऐसी कोई तलवार कहाँ और प्यार को बंदी बना ले ऐसे कोई बंधन नहीं। बिल्कुल, प्यार को कोई भी बांध नहीं सकता है और सच्चाई को कभी भी हराया नहीं जा सकता, वो हमेशा सामने आ ही जाती है। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है नागेश्वर धाकर जी की। तो आइए सुनते हैं नागेश्वर जी के सॉन्ग को, एंजॉय करते हैं। बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे जो भी लिसनर हमें कॉल करना चाहते हैं और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो फटाफट से फ़ोन उठाइए, डायल करिए 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक ज़रूर पहुँचाइए। आइए सुनते हैं नागेश्वर जी के सॉन्ग को।

प्यारा सा सॉन्ग, नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। यही होता है कई बार, कुछ लोग बस वक्त बेवक्त याद आ ही जाया करते हैं। तो चलिए लिसनर्स, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलूंगी आपसे आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में, और कॉलर ट्यून गोंडा तक हमारा साथ जो है वो यूं ही बना रहेगा। तो इसी के साथ नागेश्वर धाकर जी, धर्मेंद्र मोहन जी, सनी पांडे जी, और इसी के साथ इम्तियाज़ जी के साथ में महेंद्र जी, धर्मेंद्र मोहन जी, हमारे जितने भी लिसनर हमारे साथ अभी तक बने हुए थे उन सभी का तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और रेडियो ज्ञानस्थली को सुनते रहिए। बाय बाय।

जैसा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी। उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281976, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा, तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है, कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9281-976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: वेरी वेरी गुड इवनिंग लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है शो विज्ञान शाला में। मैं हूं आपकी अपनी आरजेबीना आपके शो के साथ। और जैसा कि आप सभी को पता है, हर मंगलवार हम करते हैं विज्ञान वाली बात, और हर बार कोई ना कोई हमारे साथ होता है अपने विचारों के साथ। और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं एक टीचर और एक प्रोफेशनल साइंस बैकग्राउंड से, जिनका नाम है शिवम कुमार श्रीवास्तव जी। आपका स्वागत है शिवम सर। और सबसे पहले तो मैं आपको मतलब ग्रीट करना चाहूँगी हमारे स्टूडियो की तरफ से। सर, अपने बारे में बताएं कुछ, और लिसनर्स को मैं चाहूँगी कि आप अपने थ्रू कनेक्ट करें साइंस बैकग्राउंड से।
1: मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस सम्मानजनक प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरा नाम है शिवम कुमार श्रीवास्तव। मैं आवास विकास कॉलोनी गोंडा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मतलब यहीं का ही रहने वाला हूँ, मेनली गोंडा का ही। एंड मेरी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है। और मैंने डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर तरबगंज गोंडा से किया है, और बीटेक सेठ बिथम्बरनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और गोंडा से किया है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं इस समय टीचिंग लाइन से जुड़ाव रखता हूं, और मैंने बीटेक इस कंप्यूटर साइंस फील्ड से इसलिए किया क्योंकि आने वाला समय जो है वो पूरा कंप्यूटर साइंस का ही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में आज कंप्यूटर का यूज हो रहा है। बिना कंप्यूटर के, बिना कंप्यूटर की नॉलेज के, हम किसी भी क्षेत्र को पूर्णतया विकसित नहीं कर सकते। पूर्णतया विकसित करने के लिए हमें कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और इस क्षेत्र में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनका भी कंप्यूटर में रुझान है, वो कंप्यूटर को थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज पे ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट ने इतने कोर्सेज कंप्यूटर के ला दिए हैं कि आप जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, वो सब आपके लिए अफोर्डेबल है। और गवर्नमेंट की नई नई स्कीमें हैं जिसके तहत आप कोई भी कोर्स अपना चुन सकते हैं। और कंप्यूटर की नॉलेज आज हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
0: बिल्कुल बेसिक हो चुकी है। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे मतलब कह सकते हैं एकेडमिक्स हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो कुछ ऐसे डिप्लोमा बताएं जिनसे मतलब लिसनर्स कनेक्ट कर जाएं और कंप्यूटर साइंस को कम समय में, जैसे वो बीटेक अगर ना करना चाहें डिप्लोमा के, तो कुछ डिप्लोमा के बारे में जानना चाहूँगी।
1: देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट है, वो हाई स्कूल तक की शिक्षा अगर उसने ली है, हाई स्कूल वो उसने अपना कंप्लीट किया है, तो उसके लिए कंप्यूटर के बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे कि अगर वो जो है एकेडमिक तौर पे अगर वो पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए DCA और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी एक कोर्सेज है, लेकिन वो 6 महीने और 1 साल का होता है। इसमें आपको कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री नहीं मिलती, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होता है। लेकिन यही आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड से रुझान रखते हैं, आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए पॉलिटेक्निक एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, ये 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है, 3 साल का होता है। इसमें न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल पास मांगी जाती है। हाई स्कूल पास कोई भी व्यक्ति इसमें जेई कप के थ्रू एक कंपटीशन होता है, जिसका फॉर्म फिल करके वो एंट्रेंस में बैठ सकता है। और एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद उसको गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड सभी प्रकार की पॉलिटेक्निक्स में एडमिशन मिल जाता है। अब इसमें यह है कि जिन बच्चों की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 3 विषय अच्छा है, इस 3 सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था अभी तक, और हाई स्कूल तक उसने अच्छी पढ़ाई की है, तो उसके लिए ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई बहुत टफ नहीं है, वो आसानी से इसे बीट कर सकता है। और हमारे रैंक के हिसाब से, हमारे पॉलिटेक्निक की प्लेसमेंट क्वालिटी या एकेडमिक क्वालिटी के हिसाब से, वो जिस भी पॉलिटेक्निक में चाहे वो उसमें एडमिशन ले सकता है।
0: हाँ, ये तो सर आपने बता दिया कि क्या कर सकता है। अब मेरा मतलब मेरी क्यूरोसिटी और मुझे लगता है लिसनर्स की भी क्यूरोसिटी होगी कि अगर डिप्लोमा है या अगर कंप्यूटर साइंस से हम बीटेक भी कर रहे हैं तो दोनों में अगर देखें तो क्या सिमिलैरिटी होगी, क्या पढ़ाया जाता है, क्या कोर्सेज बेसिकली क्या है, क्या क्या हायरार्की मैं जानना चाहती हूँ।
1: देखिए डिप्लोमा में आपको बेसिक इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, इसमें इतनी इंजीनियरिंग आपको पढ़ाई जाएगी जितना कि एक जूनियर इंजीनियर का काम होता है। ये जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो है एकदम परफेक्ट कोर्स बना

0: ऐसा भी होता है। मतलब कुल मिला के आपको एक ही सेमेस्टर ये तीनों पढ़ना है, बाकी दो सेमेस्टर आपको मैथ फिजिक्स पढ़ना है। अगर आपका एडमिशन सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो सेमेस्टर मैथ पढ़ने हैं, उसके बाद आपका मैथ हट जाएगा, उसके बाद आपके कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आ जाएंगे। हाँ, डिप्लोमा का एक एडवांटेज ये है जो कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए एक एडवांटेज यह है कि आप इस डिप्लोमा को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। डिप्लोमा
1: पॉलिटेक्निक
0: जी जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो, आप इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हुए हो, तो आप डिप्लोमा आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो। आपको जो डिप्लोमा पढ़ाएगा वो बीटेक एमटेक टीचर पढ़ाएगा, जो बीटेक एमटेक क्वालिफाई होगा, और बीटेक एमटेक वालों को दोनों नॉलेज होती है, वो हिंदी में भी पढ़ाता है इंग्लिश में भी पढ़ाता है। लैंग्वेज बैरियर यहाँ दोनों चलते हैं। अब चूंकि जब आप डिप्लोमा करके बीटेक करने जाते हो तो आपको एक साल का वेटेज मिलता है। वैसे तो बीटेक 4 साल का है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास, लेकिन अगर आप डिप्लोमा करके जाते हो तो आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है लेटरल एंट्री के, तो वहां पे आपको एक साल का वेटेज मिलेगा। और दूसरी चीज है, बीटेक में टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाएगा आपको, वहाँ पे हिंदी का कोई भी शब्द आपसे नहीं पढ़ाया जाएगा। डिप्लोमा में जो भी आप हिंदी में पढ़ सकते हो पढ़ लो, प्लस इसमें आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बना के आपको परफेक्ट बना दिया जाता है कि जब आप बीटेक करने जाइए तो आप टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेट, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए।
1: सो आपने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट्स रहते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में दो, तो कंप्यूटर कहाँ आके इंटीग्रेट होता है?
0: देखिए, कंप्यूटर में अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो उसमें आपको एक साल बाद टोटल आपको कंप्यूटर लाइन से ही कनेक्ट कर दिया जाएगा।
1: अच्छा,
0: उसमें आपको जो भी आपने इंटर में पढ़ा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वो उतनी ही पढ़ाई जाएगी जितनी इंजीनियरिंग लाइन में उसकी जरूरत है। आप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने से पहले, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करने के बाद अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं तो सबसे पहले आप इंजीनियर बनते हैं। कोई भी इंजीनियर बनने से पहले सबसे पहले आप इंजीनियर हैं, उसके बाद आप सिविल इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल हैं, आप इलेक्ट्रिकल हैं, आप कंप्यूटर साइंस। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होने के नाते आपको साइंस तो आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। जैसे कि हमारे पास बहुत से सेक्टर हैं, DRDO हैं और इसरो हैं, वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट नियुक्त होते हैं, जितने भी अपॉइंट होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बैकग्राउंड की नॉलेज ही नहीं, कंप्यूटर सिविल और मैकेनिकल की नॉलेज ही नहीं, उनको सबसे बड़ी नॉलेज होती है साइंस की नॉलेज। इसी वजह से वो हमारे एटमॉस्फेयर, वो हमारे सोलर सिस्टम, हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं सबसे वो कनेक्टेड होते हैं।
1: जैसे कि आपने बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ने के बाद अगर आप कंप्यूटर साइंस के मतलब बन रहे हैं,
0: जी जी,
1: सिविल इंजीनियर बनेंगे पहले आप, फिर उसके बाद आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स के, ये मैथ्स या केमिस्ट्री, इनका इंटीग्रेशन कैसे होता
0: जी? इनका इंटीग्रेशन इस प्रकार है, कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, हम चूँकि मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से बिलोंग करता हूँ और मैंने इस बारे में स्टडी भी किया है, आज हमको करीब 3, 6, 2, 8 साल इस फील्ड में से मैं हूँ, मैं 8 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, तो मैं मेरी खुद की रिसर्च और मेरे रिस्पेक्टेड टीचरों की रिसर्च ये बताती है कंप्यूटर साइंस इज टोटली क्रॉसपॉन्डिंग टू मैथमेटिक्स। कंप्यूटर साइंस पूरा पूरा मैथमेटिक्स पे आधारित है। जिस पर्सन की मैथमेटिक्स स्ट्रांग है वही कंप्यूटर साइंस में अच्छा प्रोग्रेस कर सकता है। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग के क्षेत्र की बात करें, जितने भी प्रोग्रामिंग के लॉजिक बनते हैं सब के सब मैथ पे आधारित है। जैसे कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, फेवनिक सीरीज बनाई हमने, हमने सम ऑफ टू नंबर्स बनाए, हमने इवन नंबर्स फाइंड करने के, ऑड नंबर्स फाइंड करने के जितने भी प्रोग्राम बनाए, इन सब में मैथ का बहुत बड़ा रोल है।
1: और जब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की,
0: जी जी जी,
1: या अगर और भी इसके जो एप्लीकेशन है वहाँ मैथमेटिक्स का यूज
0: बहुत बड़ा यूज है।

0: इसके प्रोफेशनल और इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ क्या मतलब कनेक्टिविटी है कंप्यूटर साइंस की?
1: देखिए, प्रोफेशनल और प्रोफेशनल स्किल इसकी ये हो गई कि एक होती है सीधी पढ़ाई पर, एक होता है इंटर कीजिए, आप बीए बीएससी कीजिए, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर दीजिए, वहाँ पे आप कुछ ही क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ से आपको चारों ओर के रास्ते खुलते हैं। आज हमारा कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जो इंजीनियरिंग के छात्र नहीं दे सकते, और जैसा कि हम लोग देख ही पा रहे हैं, रेगुलर न्यूज पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं कि जितने भी आईएएस बनते हैं सब ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्रोफेशनल स्किल है वो पढ़ाई के दौरान ही डेवलप हो गई।
0: और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग की अगर बात करें तो वो इंजीनियर्स की कहीं गुना ज़्यादा होती है, ये स्पेसिफिकली जो साइंस के नॉर्मल बैकग्राउंड ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं या जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, मतलब एक लिमिटेड उनकी पढ़ाई होती है जैसे कि आपने कहा, लेकिन यहाँ स्किल्स या कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग इनफाइनाइट है।
1: जी, यहाँ पे अधिक है, चूँकि इसका कारण भी है, यहाँ पे आप जब भी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप बीटेक करने जाते हो, डिप्लोमा करने जाते हो, वहाँ पे पहले से ही बीटेक होल्डर या डिप्लोमा होल्डर आपको पढ़ा रहे होते हैं, और वो एक अच्छे प्रतिष्ठान, एक अच्छे संस्था से बीटेक एमटेक करके आते हैं। और बीटेक एमटेक की एक बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ सिखाई जाती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंतर्गत वहाँ पे हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, हम प्रोफेशनली कैसे टॉक करें, हम कैसे अपने आप को ग्रो कर सकें, या न्यू थिंकिंग कैसे डेवलप हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरी तरीके से उसमें पढ़ाई दी जाती है।
0: सो सर, आपने बहुत कुछ कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया, और भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और फिर हम जानेंगे कि कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है और इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर होता है तो कैसे होता है, क्या होता है, ये सारे सवालों के साथ आपसे मैं मिलूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लिसनर्स, तब तक के लिए सुनते रहिए ज्ञान 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आपकी अपनी आरजू बीना, आपके शो विज्ञान शाला के साथ।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9860 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: सो वापस से लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है आपके शो विज्ञानशाला में। मैं हूं आपकी अपनी आरजे बीना और हमारे साथ आज मौजूद हैं शिवम सर। और शिवम सर साइंस बैकग्राउंड के साथ होते और बताएंगे कंप्यूटर की बहुत सारी नॉलेज, क्योंकि इनकी अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो जैसा कि सर ने खुद ही बताया कि ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, तो इन्हें इनसे बेहतर इनके सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे नहीं लगता इनसे ज़्यादा कोई बता सकता है। तो सर की तरफ मैं दोबारा से रुख करना चाहूँगी। तो सर आपका दोबारा से स्वागत है हमारे स्टूडियो में
1: जी,
0: और आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी बात पर्सनालिटी के बारे में रुकी थी। आपने बताया था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है उन स्टूडेंट्स का जो बीटेक करते हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। तो पर्सनालिटी कैसे मतलब निखर के आती है अगर हम दो स्टूडेंट्स को लें, तो क्या कंपैरेटिव डिफरेंस होगा एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट की पर्सनालिटी का? और आपने जो एग्जांपल्स भी दिए उससे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। जब भी आईएएस पीसीएस की जो एक लिस्ट निकलती है स्टूडेंट्स की, तो उसमें एक अच्छी मात्रा में हमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे दिखते हैं जो कि शायद सेकंड या थर्ड या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेते हैं। क्या इसके पीछे का रीज़न है? मैं चाहती हूँ आज डिस्क्लोज हो क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, क्या क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर आती है। एक तो आपने एक कारण बताया डिसिप्लिन, उसके अलावा जो कारण है आप वो डिस्क्लोज करिएगा। और मैं चाहूँगी कि और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ कंप्यूटर साइंस के बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: जी देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपके माध्यमों को माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो ये एक इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट हैं और एक नॉन इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट हैं, इनमें सबसे बड़ा फ़र्क होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब जैसा कि हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे टीचर्स से ज़्यादा हमको हमारे सीनियर्स सिखाते हैं। यहाँ पे हमारे और सीनियर्स के बीच एक रिलेशन बनता है। जैसे कि मैंने बीटेक किया तो वहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इनमें हमारे और हमारे सीनियर्स के बीच, या हमारे सीनियर्स के जो सीनियर्स हैं या हमारे सीनियर्स के जो सीनियर्स हैं, उनसे हमको एक मोटिवेशन मिलता है और उनसे हमें थोड़ा, जैसे यहाँ पे जूनियर सीनियर का रिलेशन मैं आपसे बताना चाहूँगा एक बड़े भाई की तरह। जैसे बहुत लोग इसको थोड़ा गलत तरीके से देखते हैं कि ऐसा होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपनी अपनी सोच की बात है। कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो जैसे कि हमारे सीनियर्स ही हमें कंट्रोल करते हैं, हमें ये बताते हैं कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आपका हेयर कट कैसा होना चाहिए, ये सब के बारे में हमें शुरू से ही टोक दिया जाता है। जब हमको शुरू से ही टोक दिया गया तो हम ऑटोमेटिक जो है एक अच्छे तरीके से निखर के सामने आए, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो गया, हमारा हेयर स्टाइल अच्छा हो गया, प्लस हमारी जो भाषा शैली है, बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी हमारी अच्छी हो गई, हमारी टॉकिंग स्टाइल भी बदल गई, सब कुछ हमारा जो है बदल गया। यहाँ पे हमें टीचर्स कम, हमारे सीनियर्स हमको ज़्यादा सिखा जाते हैं। और सीनियर्स हमारे सिर्फ इसी के लिए ही नहीं कि हम पे डिसिप्लिन चलाएं, हम पे हुक्म चलाएं, खाली इसी के लिए नहीं, वो हमको आगे के बारे में एक दिशा निर्देश भी देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए हम फर्स्ट ईयर में पढ़े तो हमें कंप्यूटर साइंस के बारे में कोई जानकारी नहीं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी इंटर में भी पढ़े, वही आके बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो हम अपने सीनियर्स से मिलते हैं तो वो हमको बताते हैं कि आप अभी से प्रोग्रामिंग की नॉलेज लीजिए, अभी से आप प्रोग्रामिंग पढ़िए, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाइए, लैपटॉप पर कोडिंग कीजिए और धीरे धीरे आप इसको जानिए तो आपको सेकेंड ईयर में जो है आसानी होगी। हमारे यहाँ दो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, एक मैथमेटिक्स और एक प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये दोनों बिना किसी के गाइडलाइन के आप नहीं सीख पाओगे, आपके लिए टफ हो जाएगा। तो ये गाइडलाइन हमें टीचरों से मिलता है, हमारे सीनियर से मिलता है, हमारे सीनियर भी हमारी हेल्प करते हैं, बसते हम उनसे रिस्पेक्टफुली अगर हेल्प चाहेंगे तो वो हमारी हेल्प करेंगे, किसी से भी, इसी नहीं हम अपने समाज में भी अगर अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो शायद ही कि वो हमसे अच्छे से बात करें या हमारे प्रति
0: वो नहीं बात करेंगे, या वो दूसरी बात है, फिर हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते,
1: एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। तो ये, और नॉन बैकग्राउंड के बच्चों को मैंने देखा है कि उनके अंदर एक अलग भाव रहता है, एक अलग जुनून में वो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, उनको ये मतलब नहीं है कोई हमसे छोटा है हमसे बड़ा है, सबसे एक ही लहजे में बात करना, सबको एक ही कसौटी पे देखना, तो ये चीज़ें उनको आज जॉबलेस इसीलिए बना रही। हमारे समझ से बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ये देख ही नहीं रही हैं कि बीटेक हो कि आप बीएससी हो या एमएससी हो या बीए हो या एमए हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को देख रही हैं, आपकी नॉलेज जज, कम्युनिकेशन स्किल जज कर रही हैं, नॉलेज जज कर रही हैं। अगर आप उनके क्राइटेरिया में फिट हो वो आपको हायर कर लेती हैं। कोई बच्चा बीटेक नहीं कर पा रहा है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, फिर भी वो बच्चा कहीं से लैपटॉप अरेंज करके कोडिंग वोडिंग सीख लिया, तो कंपनी को तो अपने काम से मतलब है, वो किसी भी कंपनी में जाएगा इंटरव्यू देगा रख लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको कम से कम एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अपना बनाना पड़ता है, ये एक रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे अभी तक जहाँ तक पता था यही पता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर सिर्फ रैगिंग करते
1: जी,
0: हैं
1: जी, ऐसा नहीं
0: बट है। ये आज ये पहलू समझ में आया। और बिल्कुल हम किसी चीज़ को अगर पॉजिटिवली देखें या समझें तो शायद उससे हमें कुछ ना कुछ आउटकम ज़रूर निकलता दिखेगा। और ये सब मतलब हमें लगता है कि मिसगाइड किया जाता है। हाँ कुछ ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल झूठी बातें हैं,
1: कुछ
0: परसेंटेज में हमें मिल जाएगा, बट हाँ वहीं पे एक बड़ी पॉपुलेशन में लोग उसी कॉलेज में होते हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले भी होते हैं,
1: जी जी,
0: डिफेंड करने वाले भी होते हैं। तो सर ये तो आपने बताया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या रोल है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि कैसे और कौन कौन से जो एप्लीकेशन हैं कंप्यूटर साइंस के
1: जी,
0: जो यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं, इसकी तरफ रुझान दिला सकते हैं।
1: जैसा कि आज के जो पहले अगर हम बात करें, आज के करीब 5-6 साल पहले की भी अगर बात करें, तो कंप्यूटर साइंस फील्ड हमारे इंजीनियरिंग फील्ड सिर्फ और सिर्फ कॉलेज तक ही डिपेंड था। आज के 5-6 साल पहले या 10 साल पहले ऐसी स्थिति किसी के पास नहीं थी कि वो एक लैपटॉप अरेंज कर पाए, क्योंकि उस समय ये अफोर्डेबल ही नहीं था। उस समय हम स्कूल में जाते थे, स्कूल के लैब में बैठते थे और कंप्यूटर में कोडिंग करते थे, प्रोग्रामिंग करते थे, वेबसाइट डेवलपमेंट करते थे। लेकिन आज हम देखने को पा रहे हैं कि हर घर में लैपटॉप है। इसमें गवर्नमेंट का भी योगदान है, गवर्नमेंट ने भी सहयोग किया, उसने भी इंस्पायर किया बच्चों को, लैपटॉप देकर, टैबलेट देकर, स्मार्टफोन देकर बच्चों को इंस्पायर किया। तो आज हमारे पास जो इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छा मैनेजमेंट हमको मिल रहा है, तो हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि उससे कुछ सीखें, उसमें एक सही दिशा की ओर हम आगे बढ़ें, उसमें हम कुछ ऐसा कर जाएं जो हमारे भविष्य के लिए हमारे लिए अच्छा बन सके। जैसे कि आजकल सबसे कठिनाई होती है कि इंजीनियरिंग फील्ड तो मैंने चुन ली, मैंने बीटेक भी कर लिया, लेकिन मैं जॉब कैसे पाऊँ। आज जॉब की स्थिति ये है कि हर साल कम से कम हमारे, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, अपने यूपी के आंकड़ा की, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम 4-5 लाख बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, लेकिन उसमें से कहीं जाके 50,000-1 लाख को ही जॉब मिलती है। बाकी 4 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हटकर कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं। कारण क्या है कि उन्होंने कभी कोडिंग नहीं की, कभी कोडिंग पे फोकस नहीं किया, कभी वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में नहीं जाना, कभी जो है उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में नहीं जाना, बस वो सिर्फ पढ़ते चले गए। और आज हमारे पास जो है ऑनलाइन सारी इंस्टीट्यूशन ऐसी हैं जो हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही हैं, बहुत फ्री इंटर्नशिप करा रही हैं, बहुत पेड करा रही हैं, बहुत लोग पैसे लेके करा रहे हैं, बहुत लोग फ्री करा रहे हैं, बहुत लोग सेमिनार करा रहे हैं, उसमें सर्टिफिकेशन देते हैं बच्चों को कि आपने हमारे यहाँ 45 दिन सीखा तो इसका ये सर्टिफिकेट है, आप हमारे यहाँ 1 महीने के सेमिनार, 1 महीने में रहे ट्रेनिंग के दौरान, ये सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आप लेके जाके जॉब में दिखाते हैं तो आपकी जॉब प्रायोरिटी बढ़ जाती है। ये चीज़ें,
0: ये तो बात हुई इसके स्कोप्स की। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते,
1: जी,
0: उनके लिए क्या ये बेनिफिशियल है या उनकी मतलब एक नॉर्मल लाइफ, हम एवरीडे लाइफ की बात करें, क्या हर इंसान के जीवन में अगर वो नॉर्मल बैकग्राउंड से, कोई नॉर्मल बीएससी किया है या बीए किया हुआ है, क्या उसको भी इसके बारे में नॉलेज रखनी चाहिए या फिर उसके लिए ये सब्जेक्ट एकदम बेस्ट है?
1: देखिए ऐसा है कि अगर हम अपने स्कूलिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी 8th तक हमको कंप्यूटर पढ़ाने का निर्देश दिया, उसने यह कहा कि 8th तक हर बच्चे को कंप्यूटर पढ़ना है। 9th से आप अपने चॉइस पे चले जाते हो, आपकी इच्छा गई आप कंप्यूटर लेते हो वरना आर्ट ले लेते हो, फिर 11th 12th में आप कंप्यूटर लेते हो नहीं लेते हो आपकी मर्जी, लेकिन 8th तक गवर्नमेंट ने आप पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है और CBSE बोर्ड की पॉलिसी है कि 8th तक आपको कंप्यूटर पढ़ा जा रहा है, तो आपको इतनी नॉलेज तो दे ही दी जाती है आज के बच्चों की। हम फ्यूचर के आज प्रेजेंट के बात करें तो आज के बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज है और हर स्कूल प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे गोंडा में ही, हम ज़्यादा तो बाहर नहीं गए लेकिन अपने गोंडा में ही देख रहे हैं, हर स्कूल में आज कंप्यूटर अरेंज है। यहाँ तक कि हम इंटीरियर में गाँवों में भी जाते हैं, वहाँ के स्कूलों में भी कंप्यूटर है, लोग प्रयास कर रहे हैं, बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में जान रहे हैं और ये उनके लिए अच्छा है। अब यहाँ पे जो हमारे बहुत पिछड़े समाज हैं, जहाँ सन 2000 से पहले की बात करें उस समय कंप्यूटर की कोई चर्चा ही नहीं थी, उस समय के लोगों को शायद कंप्यूटर की नॉलेज ना हो, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे हैं वही उनको सिखा दे रहे हैं। आज हमारे फैमिली में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही अपने फादर्स को जो है मोबाइल के बारे में व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ वो सिखा दे रहे हैं और वो अच्छे से मन से सीख भी रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं मैं डिजिटलाइज हो जाऊं। तो ये समाज के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र हों या कंप्यूटर सीखने वाले हों उन्हीं को कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर सबको थोड़ा ना थोड़ा आता है, लेकिन जितना ज़्यादा वो नॉलेज रखेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल।
0: एक मेरा सवाल और आपसे कि सपोज कुछ ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, मैं स्पेशली हमारे इंडिया की वुमेन्स की बात करूंगी, या कुछ ऐसे लोग जो कि जॉब कर चुके हैं या घर पे ही रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है किसी जॉब में एंगेज हैं, तो ऐसे कोई डिस्टेंस लर्निंग साइट्स या वेबसाइट्स होंगी या लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ से ये कंप्यूटर साइंस का कोई डिप्लोमा वगैरह कर सके, इन्हें मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बाहर ना जाना पड़े?
1: जी देखिए एक ऐसा है, इसके लिए है व्यवस्था, लेकिन चूंकि अगर आप डिग्री की बात करें कि आपको घर बैठे बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम है ये सीधा सीधा ऑफलाइन प्रोग्राम है। ऑफलाइन मतलब इसके लिए आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा, लेकिन चूंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे नॉन एकेडमिक तो नहीं कह सकते, नॉन इंजीनियरिंग कह सकते, जैसे कंप्यूटर DCA BCA BCA भी ऑनलाइन हो रहा है, DCA BCA ये सब प्रोग्राम आप ऑनलाइन ले सकते हो, आपको डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन अगर हम कहें इंजीनियरिंग डिग्री मिल जाएगी तो ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कारण इसके पीछे ये है कि इसके लिए लैब आपको कराया जाता है, घर में आपको लैब की व्यवस्था आपको जो है गार्जियन प्रोवाइड लैपटॉप ही करा सकता है, लेकिन आपको टीचर नहीं प्रोवाइड करा सकता। एक स्पेशलाइजेशन जिसका कंप्यूटर में है वो टीचर आपके घर नहीं जाएगा पढ़ाने, वो आप किसी न किसी संस्था में ही पढ़ोगे। इस वजह से जो है कि आपको संस्था तो जानी ही पड़ेगी, लेकिन BCA DCA ये सब प्रोग्राम आप नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम कर सकते हो ऑनलाइन।
0: ऑनलाइन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल की जैसे बात हुई तो प्रैक्टिकल में क्या क्या मतलब इसमें आता है? जैसे
1: प्रैक्टिकल में जो भी आप कोर्सेज पढ़ते हो, जैसे आपने बीटेक किया, बीटेक के सेकंड सेमेस्टर में आप जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, कंप्यूटर में भी और सी प्रोग्रामिंग भी पढ़ाई जाती है, तो इन दोनों का लैब होता है। इन दोनों में हफ्ते में 3 दिन लेक्चर और 3 दिन लैब होता है, तो ये 3 दिन लैब जाके आपको टीचर, एक लैब असिस्टेंट आपको होगा, एक टीचर वहाँ प्रोवाइड होगा, वो लैब के बारे में हर एक एलिमेंट के बारे में आपको समझाएगा। सी प्रोग्रामिंग आपको लैपटॉप पे बकायदा विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो या नोट पैड या किसी भी पैड पे, सॉरी नोट पैड तो नहीं लेकिन विजुअल स्टूडियो पे आपको कोडिंग जो है वो बताई जाएगी, कराई जाएगी, और आपकी जो भी एरर्स आएगी वो एरर्स भी दूर की जाएगी एक टीचर के द्वारा।
0: इसके अलावा एप्लीकेशन जनरेशन, इसके अलावा सॉफ्टवेयर जनरेशन, इसके बारे में कुछ बताएं लिसनर्स को, मतलब बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मैम ये सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, इसके लिए किस मतलब नॉलेज की, जैसे कंप्यूटर साइंस के बिना हम नहीं कर सकते, तो कैसे मतलब ये कुछ हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज जाने कि कैसे।
1: देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दो चीज़ें आ गई हैं या दो से ज्यादा भी चीजें हैं, लेकिन मेनली हम चर्चा कर देते हैं जो कि आज के ट्रेंड में चल रहा है, वो दो चीजें बहुत चल रही हैं, एक वेबसाइट डेवलपमेंट और एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। देखिए दोनों डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो बेसिकली एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको आनी चाहिए और हमको कुछ वेबसाइट के बेसिक टूल आने चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट में, इसमें आपको HTML की शुरुआती नॉलेज होनी चाहिए। HTML आपको क्लास 6 से ही पढ़ाई जाती है, अगर आप ध्यान से पढ़े तो। वैसे तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत बच्चे क्या हम ही लोग ही किए, 8 तक क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए, उसके बाद कुछ मतलब नहीं, कहाँ कोड लिखा जा रहा है, क्या कोड लिखा रहा है, कोई मतलब नहीं। अब जब इंजीनियरिंग में पहुंचे तो उसकी ज़रूरत आई तो सीखे। तो HTML, CSS, JavaScript, ये सब चीज़ें आपके वेबसाइट के एक ढांचा बना के आपको दे देंगी, एक बॉडी बना के दे देंगी। उसके अंदर आप कैसे किसी फॉर्म को फिल करते हो, वो जाता है डेटाबेस में और डेटाबेस से रिकॉर्ड उठाया जाता है, ये सब के लिए आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आप पाइथन सीख सकते हो, पाइथन प्रोग्रामिंग, और पाइथन के अलावा PHP सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो, इतने और भी है लैंग्वेज, लेकिन ये तीन इस समय ट्रेंड में चल रहे हैं। इसके मदद से आप जो है वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो। और जो है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें अब बहुत, पहले तो एक ही फील्ड था इसमें, जावा लैंग्वेज से एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता था। अब यहाँ पे बहुत चीज़ें आ गई हैं, जावा आ गई है, कोटलिन आ गई है, और जो है इस सब से भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट संभव है जो है।
0: एक आखिरी सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगी, AI का कंप्यूटर साइंस में क्या मतलब?
1: देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर जगह प्रयोग हो रहा है और AI कंप्यूटर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम एक ऐसा ब्रेन बना रहे हैं जो कि दूसरे के ब्रेन को रीड करना सीख सके। हम जो है AI सबसे ज़्यादा रोबोटिक्स में यूज हो रहा है, लेकिन रोबोटिक्स के साथ साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी बहुत यूज हो रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जैसे आप यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब पे जिस प्रकार की चीज़ें आप सर्च करते हो, वही चीज़ें आपको जब दूसरी बार यूट्यूब खोलोगे तो आके पहले दिखाएगा। ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मशीन लर्निंग भी इसमें काम होता है। इसमें आपके माइंड को रीड किया जा रहा है, माइंड को रीड करके आपके सामने रख दिया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो कि आपके माइंड को जो है रीड करके ही काम कर रहे हैं। आप बैठे हुए हैं, आप अगर मुंह से ही बोल देंगे कि प्लीज़ गिव मी 1 glass water, वो जाके वाटर लेके आपको दे देगा, उसके अंदर कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूज है AI का। मशीन लर्निंग, जो मशीन आपसे सीख रही है, जो आपको समझ रही है आपसे, जैसे IoT आज का दौर है, रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम, ड्रोन चल रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, ये IoT बेस्ड डिवाइस है। तो ये रिमोट के वजह से ये निर्देश पे वो ड्रोन चलता है, ये सिस्टम।
0: सो सर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इससे लोगों का हित होगा और सब इंस्पायर होंगे, जिनके मन में अभी भी डाउट था कि मैं फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस से कुछ करना चाहता हूँ, क्या इससे कुछ बेनिफिट होगा या नहीं, मुझे लगता है सबके सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। बस आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि आपको हमारे रेडियो स्टेशन पे आके कैसा लग रहा है और आपको कंप्यूटर साइंस से इंस्पिरेशन कहाँ से मिली?
1: जी, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, एंड ये पहला समय है जब हम किसी स्टूडियो में बैठे, हमने बच्चों को बहुत सिखाया, बहुत ऑफलाइन एजुकेशन दिया, एंड ऑनलाइन में जो है मैंने टीचिंग भी की टीचमेंट पे, लेकिन यहाँ आके मुझे एक पहला इंटरव्यू देने का मौका मिला भविष्य में, जो कि मेरे लिए बहुत ही यादगार पल रहेगा। इसके बाद हम कई जगह इंटरव्यू देंगे, भविष्य में बहुत सारे चांसेस आएंगे, लेकिन ये हमारे लिए यादगार रहेगा। और जो है, और ये इंस्पायरेशन हमें मिला मेनली अपने फैमिली के लोगों से, हमारे बड़े भाई, हमारे जो हमसे बड़े हैं वो कंप्यूटर फील्ड में थे, और उनको वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ वो सर्वाइव कर रहे थे, जी रहे थे, और वो अच्छे पैकेज के साथ जॉब कर रहे थे। तो हमारे फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हमें भी कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करनी चाहिए, और चूँकि इंटरेस्ट टीचिंग में है तो टीचिंग भी कंप्यूटर साइंस का यूज करते हुए हम कर रहे हैं।
0: थैंक यू सो मच सर, शिवम कुमार श्रीवास्तव सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने कीमती समय को हमें देने के लिए और अपनी कीमती जानकारी से लोगों को लाभान्वित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन

0: तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286 9816 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा

0: हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: डिलीशियस
2: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286 9976 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
8: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
9: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
8: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
11: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
12: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
11: सच में? क्या खास है वहाँ?
12: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
11: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
12: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
11: और फोटोग्राफी वगैरह?
12: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
11: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
12: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
11: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द

पूरा मैसेज मसाला का आगाज कर दिया। आसमान में सूरज अपनी नारंगी चादर समेट कर क्षितिज की ओट में छिप रहा है। चौराहों पर चाय की केतलियों से उठती भाप में शाम का मिजाज घुल रहा है और आपके रेडियो से बहकर आ रही है 89.6 FM की एक ऐसी सुरीली तान जो सीधी आपकी रूह में उतरेगी। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे सिंपल, हु इज नॉट सो सिंपल, जो दिखने में भले सिंपल लगे पर जिनका मिजाज, बातें और अंदाज बिल्कुल भी सिंपल नहीं। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने सबसे पसंदीदा, सबसे चर्चित और दिल के सबसे करीब शो गोंडा मैसेज मसाला में। अगले पूरे के पूरे अभी समय हो रहे 6:37 से लेके 7:45 तक का समय, इतनी देर का फासला, इतनी देर में मैं रहूंगी आप सभी की हमसफर। और हाँ, आज की शाम बातें सिर्फ गोंडा की गलियों या अवध के आंगन की या फिर इंडिया की या फिर एंटरटेनमेंट की या फिर गॉसिप की नहीं होगी, बल्कि बातें होंगी इस देश के हर उस कोने की जहाँ एक धड़कता हुआ दिल है, जहाँ आंखों में ख्वाब हैं और सीने में कुछ कर गुजरने की आग है। दोस्तों, आज है मंगलवार, हमारी ट्यूसडे स्पेशल शाम में, और ट्यूसडे की ढलती रूहानी सी, बहुत ही खूबसूरत सी सावन वाली शाम में, जब पूरा शहर दिन भर की भाग दौड़ के बाद धीरे धीरे शांत हो रहा होता है, तब हम बात करते हैं उस इश्क और जुनून की जो महज लफ्जों का मोहताज नहीं होता, बल्कि जो इतिहास के पन्नों पर अपनी वफा से इबारत लिख देता है। शाम की इस माहौल को और भी ज्यादा शायराना बनाते हुए इस मशहूर शायर, जी हाँ दोस्तों, मुनव्वर राना साहब का ये शेर मुझे याद आता है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, लेकिन जब जिंदगी इम्तिहान लेती है साहिब, तो वो राहों में सिर्फ कांटे ही नहीं बिछाती, जब जिंदगी इम्तिहान लेती है साहिब, तो वो राहों में सिर्फ कांटे नहीं बिछाती, बल्कि देखने वालों का नजरिया भी आजमाती है। और दोस्तों, आज की हमारी दास्तान भी किसी आम मोहब्बत की नहीं है, ये कहानी है उस इश्क की जो सिर्फ फूलों की सेज पर चलना नहीं सिखाता, बल्कि आंधियों में चिराग जलाना सिखाता है। ये कहानी है एक ऐसी जाबाज बेटी की जिसने अपने टूटे हुए जिस्म और कटे हुए पैरों के बावजूद आसमान का सीना चीर दिया, और एक ऐसे हमसफर की जिसने दुनिया के तानों को दरकिनार करके अपनी मोहब्बत के हाथों में एवरेस्ट फतेह करने का हौसला थमा दिया। अगर आप अपने दफ्तर से, आप अपने ऑफिस से थक हार कर घर लौट रहे हैं, अपनी गाड़ी की स्टेयरिंग थाम में एकदम जैम में, ट्रैफिक में फंसे हुए, कहीं ना कहीं खोए हुए हैं, या फिर आप अपनी बालकनी में ढलती शाम को निहारते हुए चाय की चुस्की ले रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट, अगले कुछ क्षण के लिए अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको सिर्फ इमोशनल नहीं करेगी, बल्कि आपके अंदर सोए हुए उस हौसले को जगा देगी जो किसी भी तूफान से टकराने का दम रखता है। तो चलिए शाम की शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ में, लेकिन इसके पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का सबलू सावंत जी मुंबई से, सविता शास्त्री जी गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से, नागेश्वर धाकड़ इंडिया से,
और सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से स्टे ट्यून्ड एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और आज की ट्यूसडे स्पेशल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ट्यूसडे को होता है एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टोरी वाला, जज्बातों वाला और इंस्पायरिंग और बहुत ही कुछ चीजों वाला एक बहुत ही खूबसूरत सा महफिल गुंडा मैसेज मसाला का, जो कोई ना कोई मोरल देकर, कोई ना कोई लेसन देकर, कोई ना कोई सीख देकर जरूर जाता है। तो एंजॉय करते हैं ये छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर एंजॉय करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी रियल सी स्टोरी जिसने फतेह हासिल की। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपके अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में, और ये है आपका खूबसूरत सेगमेंट गोंडा मैसेज मसाला। स्टे ट्यून्ड।

वाला विद्यु आर जस्ट सिंपल इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं डेफिनेटली रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो हैप्पी सावन एवरीवन। और कैसा लग रहा है आज की शाम में? ह्यूमिडिटी तो बाहर बहुत है, ओ माय गॉड। और आज गोंडा में बहुत ज़्यादा, दिन में क्या, रोज़ क्या, शाम के टाइम पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है? क्योंकि मैं तो जिस टाइम पे निकलते हैं उस टाइम पे हाँ ट्रैफिक होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी तो नहीं होती है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में मुझे ऐसे सफोकेशन सी हो रही थी, ऐसे उलझन सी हो रही थी रास्ते में। एक तो रास्ते में ट्रैफिक की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से कुछ ज़्यादा, और ह्यूमिडिटी होने की वजह से भाई, तो थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेके रोड पे चलिए। और मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करूंगी जो थोड़ी दूरी के लिए, थोड़े पास ले के लिए ऐसे बाइक उठा के चल देते हैं, या फिर गोंडा में लोकल कामों के लिए जो लोग फोर व्हीलर की मतलब ज़रूरत नहीं होती है तब भी अकेले के लिए भी लेके चल देते हैं, जब वो बाइक से भी काम चला सकते हैं। तो शायद हम लोग अगर ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना तो गोंडा हमारा इतना छोटा, इतना प्यारा और इतना बढ़िया शहर है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ ट्रैफिक का इश्यू होना चाहिए, है ना दोस्तों? तो हम लोग मिलके ये काम कर सकते हैं। सो फाइनली ट्रैफिक से बैक टू अपने मंगलवार की शाम पे आते हैं। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अज्जू ठाकुर आपका स्वागत है आपके अपने इस गोंडा मैसेज मसाला की महफिल में। कुछ मेरे लिसनर्स मुझे देख के शॉक्ड तो हो रहे होंगे कि हाउ इज दैट पॉसिबल, हाँ, और जो सिंपल नॉट सो सिंपल, वो भी गोंडा मैसेज मसाला में। लेकिन वो क्या है ना कि बड़ी बड़ी गलियों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं ना सेनोरिटा। अभी इतनी बड़ी बड़ी गलियों में आरजे सिंपल को कहीं भी कभी भी शिफ्ट किया जा सकता है ना, लेकिन आरजे सिंपल के मन में था स्टे ट्यून। सो मंगलवार के शाम में मैंने जैसे आप सभी से कहा था कि आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी पर, रियल स्टोरी पर, जो शायद आप सबका ध्यान खींच लाएगी अपनी तरफ। अगर आरजे सिंपल को इंडिया सारी रियल स्टोरीज में अगर ये स्टोरी कैची लगी, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, अगर वो उन्होंने चाहा, अगर आपके आरजे सिंपल ने चाहा कि ये स्टोरी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आप लोगों में से बहुत लोग इस स्टोरी के बारे में जानते होंगे, रूबरू होंगे इस स्टोरी से। लेकिन जो नहीं जानते, मैं चाहती थी कि उनको पता चले कि ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी भी दुनिया है। उठो जागो, अभी देर नहीं हुआ है।

नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आपके दिमाग को बस ये सोचना है कि आई कैन डू इट, नो। सो दोस्तों, बस 7 बजने ही वाले हैं और आप सबका इंतज़ार था ही मुझे, और आई गेस मेरे सभी के सभी लिसनर्स आ चुके हैं। सो चलिए स्टोरी की तरफ रुख करते हैं। आज की कहानी किसी दोस्तों काल्पनिक किताब से तो मैंने बिल्कुल भी नहीं ली है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश की ही, हमारी अपनी बेटी अरुणिमा सिन्हा की। दोस्तों, साल सन 2011 की बात है। राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा CISF की परीक्षा देने के लिए लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। सोचिए, एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा, बहुत लोग जानते होंगे, CISF के पेपर के लिए लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के अंधेरे में ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनसे सोने की चैन, जो गले में हम लड़कियां अक्सर पहनते हैं ना शौक के लिए, सोने की चैन के लिए हमें कभी कभी बहुत कीमत अदा करनी पड़ती है। अरुणिमा सिन्हा जी को भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। तो जब कुछ बदमाश ट्रेन में अंधेरे में उनसे सोने की चेन छीनने की कोशिश कर रहे थे, और जब अरुणिमा जी ने इसका विरोध किया, उन्होंने इसके अगेंस्ट अपने डिफेंस में कुछ एक्शन लिया, तो उन दरिंदों ने चलती ट्रेन से उन्हें बाहर फेंक दिया। कैन यू इमेजिन, एक सोने की चेन की क्या कीमत होगी इसकी? बहुत रही होगी भाई, तोले ओले की पहन रखी होगी, लाखों की रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जान की कीमत, अगर पैसे किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, तो जान की कीमत कोई पैसों से भाई, वो भी लाख दो लाख के लिए लगा देगा है। लेकिन नहीं, सोचो इंसानियत किस लेवल पे है। अभी की बात भी नहीं है दोस्तों, ये सन 2011 की बात है, तब तो शायद बहुत इंसानियत थी ना लोगों में, लेकिन नहीं, बस एक छोटी से चेन के लिए अरुणिमा सिन्हा को, जो एक CISF का एग्जाम देने जा रही थी लड़की लखनऊ से दिल्ली, उसको ट्रेन से, चलती ट्रेन से रात के अंधेरे में नीचे फेंक। अरुणिमा दूसरी पटरी पर गिरी और सामने से आती हुई, मतलब कुदरत का खेल भी देख रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है दोस्तों कि सब व्यर्थ है ना, बस कर्म करते जाओ, कर्म का फल मिलता जाएगा। हमारे साथ क्या होगा ये हमको तय कर ही नहीं सकते हैं। तो अरुणिमा दूसरी पटरी पर गिरी और सामने से आती हुई एक और ट्रेन उनके पैर को कुचलती हुई गुजर गई। पूरी रात अरुणिमा पटरी पर तड़पती रही। आपको पता है, उनके शरीर पर चूहों ने काटा, चींटियों ने काटा, और रात भर किसी को अंदाजा ही नहीं था, ना उनके परिवार को, ना हमें, ना आपको, ना उन दरिंदों को, कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हो रहा है। सुबह जब किसी की नजर पड़ी, तब सुबह अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके एक पैर को काटना पड़ा और दूसरे पैर में रॉड डालनी पड़ी। पूरा देश एकदम सन्न था, स्तब्ध था, लेकिन देश तो हमेशा ही करता है ना, सॉरी देश हमें तो है, लेकिन हम तो अक्सर ये कहते हैं कि जब तक हमारे किसी अपने पे कुछ नहीं बीतती, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हमें फर्क ही नहीं, हाँ उतनी देर के लिए पड़ेगा जितनी देर हमने न्यूज में देख लिया, सोशल मीडिया में देख लिया, किसी के मुंह से सुन लिया, या फिर बहुत बुरी घटना थी तो एक दो मिनट के लिए, एक दो घंटे के लिए जहन में रह गया। लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना हो, तो हम क्या कहेंगे,
कि अरे ठीक है ना, कौन अपना था कौन ही फंसने जाएगा। और अगर हम कहीं से मोटिवेट होते हैं तो हमारे अपने हमें रोक लेते हैं कि पागल है क्या है। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, बस हम खाली ऐसे, हमने भी इस इंसिडेंट को ऐसे ही देखा। मीडिया में भी बातें बनने लगी, लोग सिंपैथी दिखा रहे थे, लेकिन अरुणिमा के दिल में एक अलग ही आग सुलग रही थी। कैन यू इमेजिन, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा होता दोस्तों तो मैं शायद हताश हो जाती, निराश हो जाती। और अगर शायद मुझे कोई बहुत ही इंस्पायर करने वाला नहीं मिलता साल दो साल तीन साल में, तब तक तो मैं शायद इंस्पायर भी नहीं होती, टूट भी चुकी होती और पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन नहीं, जब मीडिया बातें कर रही थी, हम यहाँ सनसनीखेज सुन रहे थे, हम अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे, हम अपना अपना एग्रेशन निकाल रहे थे, तभी बिस्तर पर लेटे लेटे ही हॉस्पिटल में ही अरुणिमा ने डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें क्या करना है। अरुणिमा ने तय किया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करेंगी। एक पैर को उनके काटा गया, दूसरे पैर में उनके रॉड डला हुआ है, दोनों पैर ही इस कंडीशन में नहीं है, है ना। लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया हॉस्पिटल में लेटे लेटे कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का ये शेर है ना दोस्तों, अरुणिमा के उस जज्बे पर बिल्कुल खरा उतरता है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कहो कोई औकात में रहे, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। लेकिन जब पूरी दुनिया अरुणिमा के इस फैसले को उनका पागलपन समझ रही थी, तब एक इंसान ऐसा था जो अरुणिमा के इस पागलपन और उनके सपनों के साथ चट्टान बनकर खड़ा हो गया था, जिनका नाम था ओम प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, कौन थे ओम प्रकाश और कैसे इस मोहब्बत ने इतिहास रचा, जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। सो मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में, और आप सुन रहे हैं गुंडा मैसेज मसाला आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और ये है आपका अपना फेवरेट फ्रीक्वेंसी रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो महेंद्र दिपेन फ्रॉम राजस्थान, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों जाते जाते बस इतना ही, हासिल सब कुछ कर सकते हैं, बस देरी है सिर्फ सोचने की और पहला कदम उठाने की। और सारे कदम तो अपने आप उठते हैं, बस एक स्टेप, सिंगल स्टेप। हैप्पी इवनिंग, हैप्पी सम स्टेज।

0: सीरियसली दारा, ये कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं? ऐसा मत करो, वेट करो, आएगा कौन, आएगा एक दिन, वेट करो।
1: दारा, मैं प्रॉमिस है, मैं सब ठीक कर दूंगी।
0: तुम्हें समझ नहीं आ रहा, छोड़ो मेरा हाथ।
1: मैं नहीं चाहती।

So, once again, welcome back in your Shuguna Message Masala video. Today is simple, it is not so simple. And you are listening to Radio Gyanasthali 89.6 FM, Gonda Sheher Ki Dhadkan. So, very, very good evening and welcome in your show. Sabri Savanji once again from Mumbai. Inka kehna hai ki, duniya mein bharosa kis par karein samajh nahi aati. धन वो बुरी चीज है किसी को जान से हाथ धोने पड़ जाती है। और इनका कहना ये भी है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अच्छा हो या बुरा वक्त बदलता है, लेकिन समय हमें बहुत कुछ सिखा देता है। सही कहा आपने। मैं भी बचपन में सोचती थी कि ये करूंगी वो करूंगी, सोचती थी कि जो सोचती हूँ करना चाहूंगी तब तो कर ही लूंगी ना, वो तो मेरे ऊपर है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। नाना पाटेकर जी मुझे बहुत याद आते हैं, उनका कोई डायलॉग है, मुझे पूरा डायलॉग याद नहीं है। मैं याद करना चाहूंगी, मैं याद जरूर करूंगी इसको, मैं उसी इमोशन के साथ याद करना चाहूंगी। लेकिन उनका एक डायलॉग है नाना पाटेकर का, नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं दोस्त ऐसा नहीं होता, ये मेरा दर्द है, ये मैं जानता हूँ, कुछ ऐसा। बहुत बहुत बढ़िया डायलॉग है, आप सभी जानते होंगे, आप सभी तो पिक्चर प्रेमी हैं। फिलहाल मैं तो आज जो देखती हूँ कल भूल जाती हूँ, अच्छी बात है ना, भूल जाती हूँ। तो हाँ, हम कहाँ थे कि मैं सोचती थी कि हाँ जो मैं सोचूंगी मैं चाहूंगी, मेरे अंदर अगर क्षमता होगी, अगर मेरा गोल मैं अचीव करना चाहूंगी तो मैं वो अचीव कर लूंगी, अगर मैंने चाहा है कि मुझे ये करना है तो मैं कर लूंगी। लेकिन नहीं, सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होता है, अगर कायनात ने भी चाहा है तभी वो पॉसिबल है, नहीं तो सब सोचा का सोचा धरा का धरा रह जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। धर्मेंद्र मोहन जी आवाज विकास गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सविता शास्त्री जी का कहना है बहुत सुंदर गीत सिंपल जी, थैंक यू सो मच। और नागेश्वर धाकड़, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। इनका कहना है अब तो डर लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा विश्वास तो करो। ये तो आपने सही कहा नागेश्वर धाकड़, एक बार को कोई कहे कि चल मेरा विश्वास मत करियो, वो चल जाता है कि हाँ चल, ये इतना तो लॉयल है कि ये कह रहा है सामने से कि मेरा विश्वास मत करियो। लेकिन जो कहता है, बार बार कहता है, हर एक शब्द में, हर एक सेंटेंस में, हर एक बात पे, हर एक जिक्र में कहता है कि अरे मेरा तो विश्वास करो, अरे मैं, जिसने कहा कि अरे मैं, वो ही सबसे बड़ा छल करके जाएगा दोस्तों। सो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ, अरुणिमा जी की स्टोरी की तरफ। तो हादसे के बाद अरुणिमा का शरीर टूट चुका था, लेकिन उनका हौसला नहीं। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद उतना कि यार, मतलब लाइक मुझे याद नहीं है। हाँ, झूठ क्यों बोलना। तो हादसे के बाद अरुणिमा जी का शरीर टूट चुका था, लेकिन उनका हौसला नहीं। ऐसे समय में ओम प्रकाश उनकी जिंदगी में आए, एक मसीहा और सच्चे। कहते हैं ना, ये होते हैं सच्चे हम सफर बनके आए। ओम प्रकाश ने अरुणिमा की लाचारी को नहीं देखा, उन्होंने अरुणिमा की रूह और उनके उस अटूट हौसले से प्यार किया। जब लोग अरुणिमा को ताने मारते थे, तब ओम प्रकाश उनका हाथ पकड़कर कहते थे, अरुणिमा तुम सिर्फ एवरेस्ट चढ़ोगी नहीं, तुम इतिहास लिखोगी, और जब तक तुम लौट कर नहीं आती मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इसी सहारे के साथ, इसी भरोसे को संजोते हुए अरुणिमा ने अपनी मंजिल की तरफ कदम उठाया। दोस्तों, उन्होंने नकली पैर

प्रोस्थेटिक लेग के साथ बचेंद्र पाल से ट्रेनिंग लेना शुरू किया। चढ़ाई के दौरान कई बार उनका नकली पैर निकल जाता था, कई बार उनके नकली पैर में दिक्कतें होती थी, जख्मों से खून बहता था, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता था, बड़ी दिक्कतें आती थी। रास्ते में उन्होंने कई पर्वतारोहियों की लाशें भी देखी। दोस्तों सोचिए, मनोबल देखिए। लेकिन अरुणिमा के कानों में ओम प्रकाश के वो शब्द गूंजते थे, तुम हार नहीं सकती। बस यही कहते हैं ना कि अरे जुबान से साथ नहीं चाहिए, ऐसे शरीर से हाथों में हाथ साथ नहीं चाहिए, हाथों में जंजीर बांध के नहीं घूमना है। अरे वो साथ चाहिए कि जहन याद रखे कि कोई साथ है, कोई इंतजार कर रहा है, किसी को पता है कि मैं हार नहीं सकती, है ना। यहाँ याद आते हैं मुझे अहमद फराज साहब के वो खूबसूरत अल्फाज दोस्तों कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जब दिल में हो उम्मीद और साथ हो वफादार का, जब दिल में हो उम्मीद और साथ हो वफादार का, तो मुमकिन है कि तुम हर बाजी को पार करो। और फिर आती है वो शुभ घड़ी, 21 मई सन 2013 का वो ऐतिहासिक दिन, जब अरुणिमा सिन्हा ने अपने नकली पैरों के साथ, नकली ही, एक पैर तो था ही नहीं, काटा गया, दूसरे में रॉड लगा है, तो वो अब आर्टिफिशियल ही है दोस्तों। अगर मेरे आगे के मुझे पता है कि चार दांतों में मेरे आधे दांत हैं, ऊपर से मुझे क्राउन लगा के उसको फिट किया गया है, मेंटेन किया गया है, तो आई नो ना वो ओरिजिनल नहीं है। कितना भी ओरिजिनल है वो, उसमें आर्टिफिशियल है ना कुछ तो। और वो मुझे कभी फील भी नहीं होता कि हाँ वो ओरिजिनल है, होने के बाद भी तो ऐसे कैसे नहीं हो सकता दोस्तों। ये शरीर है, ये बॉडी पार्ट्स है, कुछ भी जाएगा, कितना भी पैसा लगा लो, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ओरिजिनल सेम नहीं रहेगा, कॉपी ही रहेगा। तो अरुणिमा सिन्हा ने अपने नकली पैर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। वो दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी जिन्होंने ये कारनामा किया दोस्तों। नीचे उतरने के बाद जब पूरी दुनिया उनका स्वागत कर रही थी, अरुणिमा ने अपना पहला धन्यवाद, अपना पहला थैंक्स ओम प्रकाश को दिया, जिन्होंने इस सपने में, इस हौसले में अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी। और आपको पता है क्या, इतने अटूट, इतने समर्पित रिश्ते में बनना कौन नहीं चाहेगा। बाद में दोनों ने, अरुणिमा और ओम प्रकाश ने शादी की और आज वो हजारों दिव्यांग बच्चों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बने हुए। आज वो हजारों दिव्यांग बच्चों की देखरेख करते हैं और उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश जद्दोजहद करते हैं, जितने समर्पित ओम प्रकाश अरुणिमा के लिए थे, जितनी समर्पित अरुणिमा अपने सपने के लिए थी, अपने हौसले के लिए थी, उतने ही समर्पित ओम प्रकाश और अरुणिमा आज हजारों दिव्यांग बच्चों के लिए। कहते हैं ना दोस्तों।
नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो सबल सावंत जी का कहना है कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी। कहीं इस लाइन की तो बात नहीं, अरे ये वाला नहीं, कुछ है, कुछ बहुत लंबा डायलॉग है अपना ना पाटेकर का। महेंद्र का कहना है कि तुम कुछ भी बोलो और मुझे कुछ ना लगे, मजाक उड़ाते रहोगे, मेरी अपनी एक स्पेस है यार, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ ना, मुझे भी कुछ लगता है ना, यही डायलॉग था मैम या कोई और? अरे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे याद आएगा तुरंत मैं बताऊंगी कि कौन सा वाला डायलॉग था। और इसी के साथ में कहना है नागेश्वर धाकड़ का कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि लोग सिर्फ सलाह दे सकते हैं, साथ नहीं। अरे सलाह देने के बहाने ही तो कोई साथ आ जाए। नागेश्वर धाकड़ जी, आजकल के समय में कोई दूसरे को ढंग का, दूसरे के हित का, अपने स्वार्थ को बिना छिपाए सलाह भी नहीं देना चाहता, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ज्यादा तजुर्बा कर लिया है क्या? ये मेरी ओवरथिंकिंग है, मुझे नहीं पता, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल चलते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। इस बहुत ही प्यारी सी स्टोरी में एक बहुत ही पॉजिटिव सा, एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ आया है। सो चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस स्टोरी के लिए, अरुणिमा के लिए और ओम प्रकाश के लिए। लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और ये है आपका बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट, बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट, गोंडा मैसेज मसाला। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

टोना मसिन मसाला वीडियो जो सिंपल इज नॉट सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन की हाल चाल एवरीवन हां सबके जज्बात कूट कूट के निकल रहे हैं। अगर रियलिटी की बात करेंगे तो दुनिया पीड़ित है, हम अकेले थोड़ी हैं जनाब, सब हारे हैं, कोई अपनों से, कई अपनों के अपनों से, और कोई खुद ही अपने आप से। जो दुनिया से हारा है वो तो आज न कल जीत ही जाएगा, लेकिन जो खुद से हारा है वो बेचारा कहाँ जाएगा, कि उसके कहा ना मैंने। सो दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम इन योर शो। मेरे नागेश्वर धाकड़ का कहना है, मेरे जो लिसनर हैं, कि आपका तजुर्बा भी सही है मैम। आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं रहा कि वो लोग सलाह भी देने आए। आज के समय में किसी को कोई परवाह नहीं, सभी लोग अपनी ही जिंदगी में उलझे हुए हैं। सबलू सावंत जी का कहना है मुंबई से, सच्चा प्यार ना चेहरों से होता है, ना ही दौलत और ना ही जेवरों से होता है, वो तो एक एहसास है दिल से दिल तक का, जो जिंदगी भर बस एक ही से होता है। पहली मोहब्बत या बचपन की दोस्ती दिल में कैद हो जाती है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। महेंद्र पिन का कहना है, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ उलझने हैं, कोई कह देता है, कोई कह नहीं पाता है। सब परेशान होते हैं ना, बस ये सब समझना नहीं चाहते हैं। सबको अपना गम, अपने गम से परे सबके गम लगते हैं, अपना गम सर्वस्व लगता है ना। सो दोस्तों चलते हैं, रुक करते हैं हमारे अपने सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, सो दोस्तों, मेरे मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की ये दास्तान ही है ना जो आप लोग की ये बातें निकाल रही, मेरी भी ये बातें निकाल रही, बहुत जहन में बातें हैं और कितना कम समय है। मैं हम सब बातें करेंगे, हम सारी दिल की भड़ास निकालेंगे, जो कोई नहीं सुनेगा वो मैं सुनूंगी ना, और जब मेरा कोई नहीं सुनता वो मैं आके आप सबको सुनाती हूँ। ट्रस्ट मी, मेरे दिल में जो चलता है वो तो मैं दिन रोज आके आप ही लोग को सुनाती हूँ। मेरा मूड कैसा है वो तो मेरे लिसनर्स ही जानते हैं, ना मेरे दोस्त जानते हैं, ना मेरे कलीग जानते हैं, ना मेरी फैमिली जानती है। डेली का मेरा मूड सिर्फ और सिर्फ मेरे लिसनर्स जानते हैं। सो मैं चलूंगी हमारे अपने सेगमेंट की तरफ, लेकिन उसके पहले बताना चाहूंगी कि आज का आपका गोंडा मैसेज मसाला का शो चलेगा 8 बजे तक, और 8 बजे तक गोंडा मैसेज मसाला में जो भी अपने मन का गाना सुनना चाहते हैं वो सब फटाफट से अपने मन के गाने ढूंढ लीजिए और चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए फटाफट से, और 8 बजे तक हम गोंडा मैसेज मसाला में ये अपने डिमांडेड सॉन्ग्स को भी एंजॉय करेंगे। और फिलहाल चलते हैं इस कहानी के मोरल की तरफ कि मकसद क्या था मेरा। मैंने बहुत पढ़ा फिर मैंने सेलेक्ट किया। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा की ये दास्तान सिर्फ बर्फीली चोटियों को नापने की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो इंसान के भीतर के सबसे गहरे अंधेरे को भी रोशनी में बदल देता है। आज जब हम और आप छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं, जब एक छोटा सा इम्तिहान या जिंदगी का एक छोटा सा झटका हमें तोड़ कर रख देता है, तब अरुणिमा और ओम प्रकाश की ये सच्ची मोहब्बत हमें ठहराव देती है, और एक बहुत बड़ा सबक, एक बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़ी सी मोरल देके जाती है। जरा सोचिए, अस्पताल के उस आईसीयू वार्ड की कल्पना कीजिए जहाँ चारों तरफ सिर्फ दवाइयों की बू थी, पट्टियां थी, एक कटा हुआ पैर था, और मीडिया की चकाचौंध के बीच ढेर सारी सिंपैथी, ढेर सारी सहानुभूतियों के कड़वे बोल थे। ऐसी हालत में कोई भी इंसान अपनी किस्मत को कोसता, मेरी तरह, बताऊंगी क्यों, और बाकी बची जिंदगी निराशा के साए में गुजार देता। लेकिन अरुणिमा ने उस बिस्तर पर लेटे लेटे अपने शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से एक संकल्प लिया, और उस संकल्प की सबसे मजबूत ढाल बने ओम प्रकाश। लव यू ओम प्रकाश जी।
आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया के ज़माने में रिश्ते लाइक और डिसलाइक के एक क्लिक पर टूट जाते हैं, जहां लोग थोड़ी सी मुसीबत आते ही अपने साथी का हाथ छोड़ देते हैं, वहां ओम प्रकाश ने दुनिया को दिखाया कि इश्क कोई जिस्मानी खूबसूरती या सहूलियत का सौदा नहीं है। सच्चा इश्क वो है जो साथी के टूट चुके पंखों को देख कर भी उसके साथ आसमान छूने का ख्वाब देखे। जब दुनिया अरुणिमा पर तरस खा रही थी, तब ओम प्रकाश उनकी आंखों में आने वाले कल की जीत का परचम देख रहे थे। यही होता है ना सच्चा प्यार दोस्तों, मेरे हिसाब से। जो मुखारविंद से कहना पड़े, जो शब्दों से कहना पड़े, वो समझ कैसी? जिसने आंखों को नहीं समझा वो दिल को क्या समझेगा। महान शायर बशीर बद्र साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर इस मोड़ पर याद आता है। उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अरुणिमा ने जब 29,029 फीट की ऊंचाई पर भारत का तिरंगा फहराया तो वो सिर्फ एक एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं थी, वो इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति की जीत थी। लेकिन उससे भी बड़ी चढ़ाई ओम प्रकाश ने चढ़ी थी दोस्तों, जो सबके बस की बात नहीं होती है। सॉरी टू से दिस, हजार में एक करते हैं ऐसा, जिन्होंने अपने विश्वास, सब्र और बेपनाह मोहब्बत से एक टूटे वे दिल में जिद की ऐसी मशाल जलाई जिसकी रोशनी से आज भी पूरा देश जगमगा रहा है। जिंदगी में पहाड़ सिर्फ बर्फ के नहीं होते दोस्तों, कभी गरीबी का पहाड़ होता है, कभी बीमारियों का पहाड़ होता है, कभी कभी तन्हाई का पहाड़ होता है, और कभी कभी असफलताओं का पहाड़ होता है। और ज्यादा हो रहा है क्या मेरा, लेकिन सच है, अगर आपके मन में संकल्प की जिद हो और आपके पास एक ऐसा हमसफर या दोस्त हो जो आपकी कमियों को नहीं आपकी ताकत को पहचाने, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। इंसान कभी शरीर से अपाहिज या विकलांग नहीं होता, इंसान अपाहिज तब बनता है जब वो अपने मन से हार जाता है, अपने दिमाग से हार जाता है, अपने बल से हार जाता है। आज की यह दास्तान हमें सिखाती है कि अगर आपके ख्वाब सच्चे हैं, आपकी नीयत साफ है और आपके साथ मोहब्बत की वफादार डोर बंधी है, तो एवरेस्ट भी आपके कदमों तले झुकने पर मजबूर हो जाएगा। अरे ताजमहल तो सब बनवा देते हैं मेरे दोस्त। सो कैसी लगी आप लोगों को ओम प्रकाश और अरुणिमा जी की स्टोरी, मुझे बताना। मुझे ये मोटिवेशनल स्टोरी मुझे क्यों मोटिवेट की मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी दोस्तों। मेरे साथ पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब इंसिडेंट्स क्या, कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं जिन्होंने मुझे तोड़ा है। जितनी बार हुए हैं उतनी बार तोड़ा है, जितनी बार टूटी हूँ उतनी बार डर आया है, लेकिन फिर उसके बाद में जो डर हुआ है अगली बार भी वही हुआ है। एक रियल स्टोरी अपनी बताती हूँ, बहुत छोटी सी, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है दोस्तों, लेकिन कोविड का पहला लॉकडाउन जब लगा था तब मैं पढ़ाई कंप्लीट करके क्या पढ़ाई पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, लॉकडाउन में घर आ गई थी। घर आने के बाद में फिर पहले लॉकडाउन के बाद में नोएडा गई थी अपना सामान लेने के लिए, मतलब देख रहे हैं खेल देखिएगा किस्मत का। मैं नोएडा गई अपना सामान लेने के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना सामान पैक करके मुझे वहां से वापस आना था, मैं अपने बड़े भाई के साथ में गई हुई थी। मैं सिर्फ 2-4 घंटे के लिए नोएडा गई और 2-4 घंटे में ही मैंने मेरे साथ एक हादसा क्या, मेरा 4-व्हीलर में एक्सीडेंट हुआ। मेरे साथ जो था उसको कुछ भी नहीं हुआ, किसी को कोई खरोच नहीं आई, लेकिन मेरे माथे में वो जो सामने का शीशा होता है 4-व्हीलर का वो आके घुस गया था, तो मेरे पता नहीं 14-15 टांके मेरे माथे पे लगे थे 14-15 टाके। मेरा कोई नहीं, मेरे भाई भी थे वो मेरे फ्लैट में थे, मैं नीचे किसी काम से आई हुई थी, मेरे पास कोई भी नहीं था, बस मेरे वो मित्र लोग थे या फिर वो फरिश्ते लोग थे, कुछ भी कह लो, जिनको मैं वहां जानती थी, जो जिनसे मैं फोन से कांटेक्ट कर सकती थी, वो आए मेरे पास। हिम्मत देखिए, मतलब तब तक मेरे आंख से एक आंसू नहीं निकले, लेकिन जब मेरा कोई अपना आया, जब मेरे वही स्कूल के मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स आए, तब मेरे आंख से आंसू निकले कि आए मेरा फेस खराब हो गया यार। मतलब मैं जो अपने आप पे इतना ध्यान देती थी, अपने आप से इतना प्यार करती थी, उसके साथ में ऐसा हो गया। 15 टांके मेरे माथे पे, कोई बात नहीं,
ये तो कोविड के टाइम की बात है दोस्तों, एक ही एक्सीडेंट था, कोई बात नहीं। इतनी भी कमजोर दिल की नहीं है आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल। इतनी कमजोर दिल होती तो आ जा नहीं होती। फिर उसके बाद में दोस्तों गलती मेरी कोई नहीं, पता नहीं क्या खड़े खड़े ट्रक में जाके गाड़ी, मतलब कायनात का खेल था दोस्तों। फिर उसके बाद में सेकेंड मेरा अभी कुछ शायद 2024 में, हाँ 2024 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं पीछे बैठी हुई थी, मेरी क्या गलती, मैं ड्राइव भी नहीं कर रही थी दोस्तों। मैं स्कूटी पे बकायदा ऑफिस से यहीं ये शो करके अपना फरमाइशी वैलेंटाइंस डे के दिन वापस जा रही थी अपने घर। मैं पीछे स्कूल, मुझे कुछ अपनी तबीयत ठीक नहीं लगी, मैंने घर से किसी को बुलाया, मैं उसके साथ स्कूटी से गई पीछे बैठ के। लेकिन फिर भी दोस्तों देख रहे हैं किस्मत का खेल कि एक्सीडेंट ना हो, कोई चोट ना लगे, तबीयत ठीक नहीं लग रही, किसी को बुलाया इसी वजह से। लेकिन तब भी पीछे ही बैठे बैठे मैं कब बेहोश होके गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। 2021 में मुझे चोट लगी, फिर 2024 में मुझे फिर से चोट लगी। पहले मेरे माथे पे चोट आई थी, फिर उसके बाद में इस बार 2024 की 23 में मुझे मेरे होठ पे चोट आया। मेरे होठों पे पता नहीं 14-15 पता नहीं कितने स्टिचेस लगे हुए हैं, टाँके लगे हुए हैं, और फिर उसी के साथ में मेरे आगे के चार दांत में क्राउन लगे हुए हैं। इतना फिर से मेरे फेस पे चोट आई, फिर मैं टूट गई कि शिट अब क्या, कितने सर्जरीज करवाऊंगी, कितने प्लास्टिक सर्जरी होगी। प्लास्टिक सर्जरी होने से तो फिर मुझे और दिक्कतें होंगी ना, फिर मुझे कई सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, होता है, सिंपल तेरी गलती थोड़ी थी, क्यों इतना सोचती है तू, तो चला गाड़ी चला भी नहीं रही थी, अब बेहोश होके गिर गई, वो किस्मत का खेल है, होता रहता है, तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, चल कोई बात नहीं। अब अभी 2-3 दिन पहले फिर मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मुझे चोट लगी। और इस बार मुझे कहाँ चोट लगी, सब जगह ठीक है, इतना थोड़ा बहुत लग जाता है, कोई बात नहीं। इस बार फिर मुझे फेस पे चोट लगी, पहले मेरे माथे पे 14-15 स्टिचेस, फिर मेरे होठ पे 14-15 पता नहीं कितने स्टिचेस, फिर इस बार मेरे चिन पे, क्या कहते हैं दाढ़ी ना दोस्तों, दाढ़ी, इस बार मेरी दाढ़ी पे स्टिचेस आए हैं। लेकिन गनीमत इस बात की है कि इस बार मेरी दाढ़ी पे सिर्फ 4 ही टाँके लगे हैं। लेकिन अभी तक मैंने अपने कोई डेंटल टेस्ट नहीं करवाए हैं, जब तक स्टिचेस नहीं कटेंगे तब तक मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे नीचे के दांतों की क्या हालत है, क्या मेरा क्राउन स्टेबल है, क्या मुझे फिर कुछ ऐसे डेंटल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो देख रहे हैं ना, अपने आप से प्यार था, अपने फेस से प्यार था, है ना, सब खत्म हो गया दोस्तों, ऐसे ही खत्म हो जाता है सब कुछ, चाहो तब भी ना चाहो तब भी तो होते हैं। लेकिन मैं देखो मोटिवेट, अरुणिमा सिन्हा उनके तो उनका पैर चला गया था भाई, वो मोटिवेट हो गई है ना, तो मैं भी मोटिवेट हो ही जाऊंगी दोस्तों, कोई बात नहीं। फेस है भाई, हाथ पैर टूट जाते तो शायद वो दोबारा सही नहीं होते, लेकिन फेस है, इसका तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा सकती हूँ, फिर से सही हो जाएगा, है ना। और पैसा बोलता है, वी हैव ना इतना पैसा कि अपने आप पे तो खर्च कर ही सके दोस्तों, और अपने आप से फिर से प्यार कर सके। सो फिलहाल ऐसे होते हैं स्टोरीज, मोटिवेट होना पड़ता है खुद से, कोई नहीं आता है करने को। सो चलते हैं, एंजॉय करते हैं एक छोटा सा प्यारा सा गाना, और फिर इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में मिलते हैं। और अगर आप लोग को मेरी कहानी बोरिंग लगी हो तो माफी चाहती हूँ, लेकिन बस सीख सबको मिलती है दोस्तों एक ना एक दिन। पिछले 4-5 सालों में मुझे कई सीख मिल चुकी है, एक्सीडेंट्स मेरे बचपन से होते आए हैं, हर 3-4-5 साल में एक्सीडेंट होता है मेरा, लेकिन नहीं, फेस पे चोट नहीं आती थी इतनी, अब पूरा पूरा चेहरा खत्म हो गया है दोस्तों। तो हार नहीं मानने का है ना, जैसे अरुणिमा ने नहीं माना, मुझे नहीं मानना है और आपको भी नहीं मानना है। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

घड़ी की सुई अब अलविदा कहने के लिए बोल रही है ना। कभी कभी तो वक्त मिलता है आप लोगों से बातें करने का, कभी कभी तो वक्त मिलता है आप लोगों से दिल की बातें करने का। ये फरमाइश ही की महफिल में फरमाइशों को प्ले करते करते अपने दिल की बातें कहीं ना कहीं रह जाती है ना, आधी अधूरी। सो कैसा लगा आप लोग को आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल का साथ, गुंडा मैसेज मसाला में मुझे ज़रूर चैट बॉक्स में लिख के बताना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अनूप मिश्रा जी, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, आप सभी का स्वागत है। रौनक तिवारी गोंडा से स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से स्टे ट्यून्ड, शिवम तिवारी गोंडा से, मुस्तफा सऊदी से, इनका कहना है कि आपकी स्टोरी बहुत दर्द भरी नहीं है, मुझसे बहुत दर्द भरी भरी स्टोरियाँ लोगों की होती हैं, लेकिन बस मुझे ये कहना है कि बस इस स्टोरी से मुझे कुछ सीख लेनी चाहिए शायद और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, है ना दोस्तों। सो घड़ी का काटा इशारा कर रहा है कि अब गोंडा मैसेज मसाला के इस हसीन खुशनुमा और रूहानी सफ़र से थोड़ा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है और आप सभी का फरमाइशी की महफिल की तरफ जाने का वक्त हो चला है। आज की शाम जिस उम्मीद हौसले और अटूट रिश्ते की बात हमने की है उसकी मिठास आपके दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहे, बस यही उम्मीद है। जाते जाते मैं आप लोग से बस इतना कहना चाहूंगी दोस्तों, आखिर कब तक खुद को बीमार रखा जाए, अब अपने आप को थोड़ा होशियार रखा जाए। हमने देखा है भरोसे का हश्र भी साहब, कुछ लोगों के लिए तो अब दीवार रखी जाए। हर किसी शख्स को अपना नहीं कहते, बस दो चार ही रिश्तों पे एतबार रखी जाए। रोज फिक्र ये उलझन ये थकान मार न दे, रोज की ये फिक्र ये उलझन ये थकान मार न दे, खुद के हिस्से में भी थोड़ा सा एतबार रखा जाए। सो इसी के साथ लेना चाहूँगी दोस्तों अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि कल मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आर जे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आर जे सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल। और हाँ, आपकी फरमाइशी की महफिल को आज ज्वाइन करेंगी आपकी आर जे बीना, स्टे ट्यून्ड।

खुशीब, गुड इवनिंग मुस्तफ़ा, गुड इवनिंग सबलू जी, और गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग महेंद्र, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब कैसे हैं भाई? सब बड़े अच्छे अच्छे गाने फरमाइश करें, और ये वाला गाना तो

चलिए ज़्यादा प्यार में कहते हैं मिठाई में जैसे कीड़े पड़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार भी किसी को नहीं करना चाहिए। सब चीज़ें मतलब एक लिमिट में होनी चाहिए। तो चलिए, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या। तो फिलहाल रौनक की फरमाइश का ये गाना सुन लेते हैं।

फिलहाल किसी को प्यार करना है तो प्रेम नगर नहीं गोंडा शहर में आइए, आपको प्यार करना और प्यार निभाना दोनों सिखाया जाएगा। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं। गाना है राजेश जी की फरमाइश का, बड़ा प्यारा सा गाना है, जब चाहा यारा तुमने। क्या बात है, जब चाहा यारा तुमने, बहुत अच्छा सा गाना है। चलिए सुनते हैं, हमेशा पुराने गानों के साथ एक अलग धुन बनाते हैं हमारे राजेश जी मालवीय नगर से। तो चलिए इस गाने को सुन के एंजॉय करते हैं।

रौनक जी, आप ही की आपके नाम से हम अलग अलग लोगों के लिए फरमाइश गाना नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि एक इंसान के एक ही गाने की फरमाइश होगी तो जो कि ऑलरेडी आपकी प्ले हो चुकी है, तो प्लीज़ अलग अलग लोगों के नाम से फरमाइश प्लीज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत

चलिए अगली फरमाइश की ओर रुख करते हैं। अगली फरमाइश है अनूप जी की, गाना सुनना चाहते हैं, बड़ा प्यारा सा है, जुस्तजू जिसकी थी। ओहो, इनको किसकी जुस्तजू थी ये तो गाना सुन के पता चले।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
3: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
1: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
4: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
4: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हरण हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स

0: से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और

0: केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: तो चलिए सुनते हैं वो फरमाइश जिसका इंतजार आप सभी को था। तो अब हम सुनेंगे ये दिल तुम्हारी इंतज़ार का प्यासा, जो कि फरमाइश है वो है हमारे लिसनर सबलू सावंत जी की।

तो चलिए अगले गाने की ओर, क्योंकि ये गाना मुझे नहीं लगता कि हमारे लिसनर की फरमाइश है। अब हम सुनते हैं सुनील मझारा की फरमाइश का गाना, बड़ा प्यारा सा गाना है, चलिए सुनते हैं।

क्या जमाना आ गया है रियल वर्जन गानों का, एआई वर्जन सुनने को पड़ मिल रहा है। तो आपको पता होगा ये गाना ये एआई वर्जन का गाना है। मैं तो सुन के भी हैरान हूँ कैसे कैसे गाने आप लोग ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं, और मतलब दिमाग की भी आप लोग की मतलब कहने पड़ेगी कि क्या कहने। तो चलिए सबलू जी का रियल वाला गाना सुनते हैं, और ये रियल वाला गाना क्या है सुन के तभी जाएंगे। गाने की बोल हैं सौदागर का, टाइटल सॉन्ग है सौदागर। तो चलिए सुनते हैं, गाना बड़ा प्यारा है और मुझे लगता है कि टाइटल सॉन्ग भी जो इसका टाइटल ट्रैक भी है वो भी इसी की तरह मतलब इतना बेहतरीन वाला है। तो इमली का बूटा बेरी का पेड़ इज़ द टाइटल सॉन्ग। चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

सो लिसनर्स, इतने सारे अच्छे अच्छे गाने सुनने के बाद एक और गाना जो कि है फरमाइश, आदमी मुसाफिर है।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9761 9260 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और हम बात करते हैं नीव के उन ईंटों की जो हमको दिखाई नहीं देते। जी हाँ, हम सभी, अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो बच्चों ने कहा कि सर वो गीत हम लोग को तैयार कराया जा रहा है स्कूल में, संदेश आते हैं, हमें तड़प आते हैं, चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है। तुमने कहा ठीक है बच्चों, वाह क्या बात है। फिर हमने अगला प्रश्न किया बच्चों से कि अच्छा ये बताओ ये फिल्म कौन सी है, तो बच्चों ने बताया कि फिल्म बॉर्डर है। बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर हमने कहा कि अच्छा ये बताओ कि इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर हैं, उन्होंने नाम बता दिए कि इन्हें एक्टर है। कुछ प्रश्न करने के बाद हमने उनसे ये पूछा कि ये बताओ इस गीत को गाया किसने है, बच्चों ने बता दिया कट से सोनू निगम ने गाया है। अगला प्रश्न मेरा, और उत्तर कोई ने दे सका। हमने कहा अच्छा ये बताओ संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, ये चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, इस गीत को लिखा किसने है? और सारे विद्यार्थी चुप, उनको नहीं पता। मतलब आप जरा ध्यान से देखिए कि तारीफ है फिल्म बनाने वालों की, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया, संगीतकार ने बहुत अच्छे संगीत उसका निर्माण किया, गाने वाले ने बड़ी खूबसूरती के साथ गाया, लेकिन लिखा किसने ये नहीं पता। तो बच्चों ने कहा सर जी किसने लिखा, हमने कहा जी इसको लिखा जावेद अख्तर साहब ने। बच्चों ने पूछा ये कौन है, तो जावेद अख्तर के बारे में हमने बच्चों को कई सारी बातें बताई। आज की क्लास इसी पर है। तो मैं ये सोच रहा था कि बच्चों को ये बताना भी आवश्यक है ताकि वे साहित्य की दुनिया की तरफ रुचि उनकी बढ़े, कि गाया किसने, फिल्म कौन सी, डायरेक्टर कौन सा, लेकिन लिखा किसने जिसके दम पर ये सब कुछ हो पाया। तो शायद इसका उत्तर हम में से कम लोगों के पास होता है। अभी नई बॉर्डर 2 आई, रिलीज हुई, सबने देखी और उसमें भी गीत गाए गए। अब आप जनरली लोगों से पूछेंगे अच्छा बताए उस गीत को किसने गाया, तो बता देंगे भाई विशाल मिश्रा जी भी हैं, ये भी हैं, प्रीतम भी हैं, सोनू निगम भी हैं। अगर अब की बार पूछ लिया जाए कि अच्छा बताओ अब की बार जो बॉर्डर 2 है उसकी लिरिक्स अलग है, मुखड़ा खाली वही लिया गया है, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, इसके बाद के जो स्टैंजाज है वो चेंज है, किसी दूसरे ने लिखा उनको। किसने लिखा? अब उनको लिखा है मनोज मुंतशिर मिश्रा, उनका पूरा नाम, हालांकि उनको लोग मनोज मुंतशिर के नाम से जानते हैं जी। तो ये एक ऐसी बात है। तो आज चूंकि हमने बात की है जावेद अख्तर साहब पर, तो उन्हीं पर बात करेंगे। बहुत ही प्यारे नगमा निगार, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात कहने वाले एक ऐसे शायर जिन्होंने कभी कभी तल्ख शब्दों का भी प्रयोग किया, और शबाना आजमी के हस्बैंड आप सभी जानते हैं उनका नाम, आज उन्हीं

बात करेंगे जावेद अख्तर साहब पर, कैसे आई और संदेश से आते हैं। नज्म भी लिखी उन्होंने, गीत भी लिखी, गजलें भी लिखी और एक बावकार हैसियत है उनकी, इल्म से लेकर फिल्म तक की दुनिया में। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति जेपी दत्ता के द्वारा निर्देशित की हुई फिल्म में गीत लिख रहा है, तो उसकी एक उसका एक वकार, उनका जो एक व्यक्तित्व तो होगा वो कैसा होगा। बात करेंगे जावेद अख्तर साहब की, लेकिन फिलहाल आप कुछ लेते लेते हैं संगीत की दुनिया में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई अनिल शास्त्री जी। चलो स्पर्श दादा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। महेंद्र दीपेन जी राजस्थान से हैं। नमस्कार मनुष्य जी, आपको भी नमस्कार। महेंद्र दीपेन जी, कैसे हैं आप? और धर्मेंद्र मोहन जी आ चुके हैं भाई। मनु जी शुभ संध्या, गुड इवनिंग, हम हनुमते नमो नमः, बेस्ट ऑफ लक सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और धर्मेंद्र मोहन ने लिख दिया है भाई, सोनू निगम और रूप कुमार राठौर लिखने वाले जावेद अख्तर जी हाँ, और नई वाली के लिखने वाले मनोज मुंतशिर मिश्रा। तो फिलहाल हम बात करेंगे आज जावेद अख्तर साहब पर, वही जिन्होंने लिखा है संदेश से आते हैं। पहले आपको सुनाते हैं प्यारी सी गजल और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की।

जी हाँ, गजल सुन रहा था मैं और एक पंक्ति आई, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। कवि ने, शायर ने शायद कुछ महसूस किया होगा जिंदगी में कुछ ऐसा, क्योंकि कहा जाता है कि, मैंने खुद कभी लिखा था कि जिसकी न लुटी दुनिया और जिसका दिल न जला, वो प्रीत करेगा क्या, वो गीत लिखेगा क्या। तो कहीं ना कहीं जिंदगी जो की जो कड़वाहटें हैं, जो सत्य सत्य है, वो हमें कभी कभी परेशान करता है, और कभी ये लिखने पर विवश हो जाता है कि किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। बात कर रहे हैं जावेद अख्तर साहब की, उनके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा है मैं आपको उन्हीं की गजल से समझाता हूँ। जी हाँ, वैसा सविता शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श आपको और आशीर्वाद आपका हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। व्यक्तित्व कैसा है, उन्होंने लिखा, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। पामाल मतलब आसान। अब जब मैं इस पंक्ति को पढ़ता हूं तो मुझको रॉबर्ट फ्रॉस्ट याद आते हैं, द रोड नॉट टेकन, उनकी बहुत अच्छी पोम है। तो वो चल रहे होते हैं, एक अमेरिकन पोएट है, तो आगे चलकर वो सड़क जो है वो दो रास्तों पर बटती है, एक लेफ्ट एक राइट। एक रास्ता वो है जिस रास्ते पर पत्ते बहुत ज्यादा हैं, मतलब कम लोग गए, रास्ता कठिन है। एक वो है जिस पर पत्ते कम है, इसका मतलब उस पर ज्यादा लोग गए होंगे क्योंकि रास्ता आसान है। कभी कुछ देर के लिए ठिठकते हैं, सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। बड़ी कशमकश के बाद वो निर्णय करते हैं कि नहीं, चलेंगे जिस रास्ते पर कम लोग गए हैं, इस रास्ते पर पत्ते ज्यादा हैं। कुछ दूर चलते हैं और फिर सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत कदम उठा लिया, लेकिन फिर सोचते हैं लौट चलूं। फिर अगली पंक्ति आती है, बट चेंजिंग ऑफ पाथ कैन नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, रास्ता बदल देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि मुश्किलें हर रास्ते पर आपकी प्रतीक्षा करती हैं और वो कठिन रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, वही मिजाज इनका भी है, मुझे आसान रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना, गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पर उन्हें मिट्टी की खुशबू तक नहीं आती, बुलंदी पर उन्हें मिट्टी की खुशबू तक नहीं आती, ये वो शाखें हैं जिनको अब शजर अच्छा नहीं लगता। देखिए, माता पिता से पैदा हुए बच्चे माता पिता को ही नहीं पसंद करते हैं, जनरेशन गैप। इस बात को शायर ने कितने अच्छे ढंग से कहा। या वो लोग जो कल की डेट में बहुत निचले पायदान पर खड़े थे और उनको वैभव प्राप्त हुआ तो वो भूल गए अपना समय। इंसान को अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए कभी भी, नेवर। इससे थोड़ा सा ईगो नहीं आता। भाई एक के शब्द है ईगो, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक शब्द होता है इंग्लिश में सिन, SIN, सिन माने पाप, और एक शब्द है इंग्लिश में सन, SUN, सन, सन माने सूरज। सूर्य प्रतीक है किसका, सूर्य प्रतीक है प्रकाश का, ज्ञान का, और सिन मतलब पाप। अब जरा देखिए, दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ एक अक्षर का अंतर है, I और U। जब आपके अंदर
आई आ जाता है, मतलब मैंने किया, SIN। तो जब मैंने किया और मैं सब कुछ हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ऐसे एहसास आपके अंदर आते हैं तो आप पाप करते हैं, SIN होता है। और अगर हम ये सोचे कि कराने वाला कोई और है, SUN, यू मैंने तुम, आप, जो कुछ आप है वो ऊपर वाले, उनको हम खुदा कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, गाड कहें, कुछ भी कहें, व्हाटएवर, जो आप करा रहे हैं वो हम कर रहे हैं, SUN, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमारे पास ज्ञान का प्रकाश आता है, हम तेजवान होते हैं, अंधकार को दूर भगाते हैं, और जहां भी हम आप जाते हैं वहां अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। SIN, मैंने किया तो वो सिन होगा, और भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अगर ऐसी भावना है कि ऊपर वाले ने कराया, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, तो निसंदेह हम और आप सूर्य के समान चमकते हैं, एक अक्षर का फर्क, INU। तो जब भी जिंदगी में कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ आप अच्छा कर जाए, तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद प्रभु आपने हमसे इतना अच्छा काम करा लिया। और अगर कभी गलती हो जाए तो उसको जरा आत्मविश्लेषण कर लें कि हाँ हमसे हो गया और आइंदा इसको नहीं करेंगे। मतलब अंग्रेजी के शब्दों में मैं साहित्य ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक बार कहा कि इंसान का जो दिल होता है वो कान जो है वो इंसान के दिल के बीच में। तो बच्चों ने कहा कि सर जी लगता है आपको, हमने कहा ठीक है बेटा, हाँ कोई अगर आप किसी से भी कहोगे कि जो कान होता है वो दिल के बीच में होता है तो लोग हंसी उड़ाएंगे। फिर ये हुआ कि आपने कहा कैसे, हमने कहा स्पेलिंग लिखो, हृदय को स्पेलिंग में हार्ट कहते हैं, HEART। हमने कहा देखो बीच में क्या है, ईयर, कान, इंसान कान के रास्ते दिल में उतर जाता है। शब्द अपने आप में बहुत कुछ बोलते हैं, अगर हम थोड़ा सा देखने का नजरिया अपना बदलें तो शब्द हमको बहुत कुछ बताते हैं कि ये सिन भी हो सकता है और ये सन भी हो सकता है। मैंने किया नहीं, उन्होंने कराया। उन्होंने कहा बुलंदी पर उन्हें मिट्टी की खुशबू तक नहीं आती, क्योंकि ईगो आ चुका होता है, घमंड आ चुका होता है, इट्स आई। तो उन लोगों को मिट्टी की खुशबू नहीं आती है, ये वो शाखें हैं जिनको अब शजर अच्छा नहीं लगता। पेड़ से ही मतलब उसका अस्तित्व है। जावेद अख्तर साहब ने उसको कहा था तो कहा था कि वालिद से ही, वालिद वालिदैन से बच्चों का अस्तित्व होता है और बच्चे पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। शजर को पेड़ों का महत्व तो समझना पड़ेगा, नहीं तो वो बिखर कर नीचे जाएंगे तो सूख जाएंगे। और ये क्यों बाकी रहे आतिश जनी, ये भी जला डालो। आतिश जनों मतलब जो आग लगाने वाले लोग हैं। ये क्यों बाकी रहे आतिश जनों, ये भी जला डालो, कि सब बेघर हो और मेरा हो घर, अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, तो इंसान जब अंधेरे की तरफ होता है तो उसको उजाले की आवश्यकता होती है। और आप यकीन मानिए चिराग कई प्रकार के होते हैं। हम आपको एक प्यारी सी गजल सुना रहे हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में, तो उसके बाद जो हम आपको गजल सुनाएंगे वो जावेद अख्तर साहब ने ही लिखी है, जगजीत सिंह ने उनको गाया है। फिलहाल जब बात रोशनी की हुई है तो हम लोग चिराग की बात करते हैं। आइए अब आपको एक चिराग दिखाते हैं, वो भी जलता है, कैसे जलता है ये हम नहीं बताएंगे, ये बताएगी ये प्यारी सी गजल। जी हाँ, धर्मेंद्र मोहन जी, दाता इकराम में भिखारी सारी दुनिया, क्या बात है। और जी बाइक पर मिस्टेक हो गई थी तो माफ करना। जी हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ रही है अब कुछ महफिल में उजाला करते हैं, और उजाला करेंगे कुछ इस अंदाज से। देखिए हम महफिल में उजाला कर रहे हैं, गजल उजाला करती है, कैसे करती है ये हम नहीं बताएंगे, ये बताएगी ये प्यारी सी
गजल सुनते रहिए और रेडियो एनएसली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

जी हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया? मतलब गजल की कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो लगता है कि सामने वाला गा रहा है और कहानी हमारी बयां कर रहा है। मतलब हर वक्त हमारे मन का नहीं हो सकता, तो वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया? वक्त ही तो है, मनुष्य बड़ा नहीं होत है समय होत बलवान, हम सभी जानते हैं। लेकिन पंक्ति देखिए, मतलब हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, ये गजल लिखी हुई जावेद अख्तर साहब की थी और गाया इसको मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह साहब ने। अब दूसरी ओर रुख करते हैं, मतलब क्यों ऐसा होता है जिंदगी में कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। उन्होंने लिखा कि जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो। जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो। लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। जीना मुश्किल है कि

परेशान जरा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान जरा देख तो लो। फिर मुकर्रर कोई सरगर्म सरे मिंबर है, मतलब कोई व्यक्ति है जो फिर ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है। किसके है कत्ल का सामान जरा देख तो लो। ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसा ना हो कि जिसको हमने बिठाला हम गर्दन से ही जाएं। किसके है कत्ल का सामान जरा देख तो लो। ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान जरा देख तो लो। अब मुझे देखिए कितनी प्यारी बात है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आपसे एक अनुरोध करता हूं मैं, बच्चों को ये जरूर बताइए कि 15 अगस्त को हमको आजादी मिली थी, लेकिन एक बात उनको और भी बताइए कि हम गुलाम क्यों हुए थे, क्योंकि जब तक उनके समझ में ये नहीं आएगा कि हम गुलाम क्यों हुए थे, हो सकता है एक बार पुनः हम गुलाम हो जाए, हो सकता है। कारण बच्चों को पता होना चाहिए, उनका जहन क्लियर होना चाहिए। ये नया शहर नया भारतवर्ष तो ठीक है, बहुत अच्छा है भाई, पुराना वाला खराब क्यों था, गड़बड़ी कहाँ थी, उस पर सुधार करना है। ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान जरा देख तो लो। इन चरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं, अभी मैंने बताई थी बात, चराग दिल का जलाओ। इन चरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं, तुम भी रह जाओगे हैरान जरा देख तो लो। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूं, फिर भी शायद, तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूं फिर भी शायद, निकल आए कोई पहचान जरा देख तो लो। वो देश की स्थिति पर भी लिखते हैं, और अगर हम वास्तविकता की बात करें तो कहीं ना कहीं कलम साहित्य बहुत आवश्यक है,

पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री, लाल किले पर झंडा फहरा कर नीचे उतरे तो थोड़ा सा लड़खड़ा गए, तो दिनकर जी उनके साथ में थे तो उन्होंने उनको संभाल लिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अच्छा किया कि आपने मुझे संभाल लिया, नहीं तो मैं गिर जाता। तो दिनकर जी ने उत्तर दिया कि चिंता मत कीजिए, राजनीति के पांव जब जब लड़खड़ाएंगे तो साहित्य उनको संभालेगा, और ये साहित्य की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी जावेद अख्तर साहब निभाते हैं। कहते हैं कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर, तीन वजीर अफसर या पागल, अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। शराबी फिल्म का डायलॉग मुझको याद आ गया, जयप्रदा बुझाती है डांस करने मुझे 900,000 मंगा दे दे, तो वो अमिताभ बच्चन हंसते हैं और वो उस पूरे हाल में अकेले रहते हैं, अगर आपने देखी होगी तो रिलेट कर पाएंगे। तो जयप्रदा ने कहा कि आप हंसे क्यों, तो बहुत प्यारा डायलॉग था कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, तौफीक मतलब उपहार, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझको वो पंक्ति याद आ गई कि आजकल के दौर में शायद

जी हाँ, वो भूली दास्तां याद आ गई, सविता शास्त्री लिखती है। वाह, क्या गजल है और क्या बात है भाई, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व। तो श्री अशोक त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, चरण स्पर्श प्रभु आपको। अव्वल तो जमाने में नहीं आप सब कोई और हो भी तो हम कौन सा तस्लीम करेंगे। मतलब आपके जैसा व्यक्तित्व तो रखना शायद ही किसी के लिए संभव है, और अगर है भी तो मेरे लिए नहीं है। और लिखते हैं कि हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गजल है। किसी के साथ चलना नहीं, किसी के लिए रुकना प्रेम है। क्या बात है, वास्तव में क्या पंक्ति। यही होता है ना कि गागर में सागर भर देना। ये पंक्ति मैंने आज के पहले कभी नहीं पढ़ी कि किसी के साथ चलना नहीं, किसी के लिए रुकना प्रेम है। साथ में चलने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, ठहर कर जरा देखिए। आहा, क्या बात कह दी। मतलब बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही मतलब मंथन करने वाली बात है। धन्यवाद प्रभु आपको, आपकी इस पंक्ति पर मैं कुछ ज़रूर लिखूँगा। आपने सोचने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब चलते हैं जावेद अख्तर साहब की तरफ। नज़्म उनकी एक है, मुझको बहुत पसंद है, और शतरंज है, और शतरंज के माध्यम से उन्होंने सामाजिक दायरे को कितनी अच्छी तरीके से रचा है। अगर आप शतरंज के खिलाड़ी हैं तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। और देखिए, एक कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाली बात यहां पर मुझको लगता है कि जावेद अख्तर साहब में है। उन्होंने लिखला, शुरू होती है नज्म की, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है। मानिए शतरंज खेलेंगे तो सामने दो लोग आमने सामने बैठेंगे, तो मुखालिफ मतलब सामने मुझको हराने वाला, जो कुछ भी मेरा कंपटीटर, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मगर मैं कब से सफेद खानों सियाह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूं। मैं सोचता हूं ये मोहरे क्या हैं। अब देखिएगा, सफेद खाना होता है, काले रंग का होता है, जो मोहरे होते हैं एक तरफ वाइट एक तरफ ब्लैक, सफेद काले मोहरे। मगर मैं कब से सफेद खानों सियाह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूं। मैं सोचता हूं ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या, न ये जरूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने का न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर सचमुच के हैं पियादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। आपने देखा होगा सामने खड़े होते हैं सैनिक, पीछे वजीर हाथी घोड़ा। मगर ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है, ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे, ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों का, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है। अब देखिएगा साहित्यकार अब अपने कथन पर आने वाले हैं, जावेद अख्तर साहब की महानता यहां प्रदर्शित होगी।

0: अब पंक्तियां बहुत ध्यान से आप सुने। शायर कवि ने नज्म लिखी और शतरंज एक खेल के माध्यम से कहा कि मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई याच भी ना आए। राजा चेकमेट हो गया अगर तो आप हार गए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि मोहरा रहे कि जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई याच भी ना आए। वजीर को ही है बस इजाजत, वजीर को ही है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, पियादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। अगर सैनिक एक बार निकल गया शतरंज में तो वो वापस नहीं जा सकता, मतलब उसको मरना ही है। प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है, अगर यही है खेल तो फिर यह खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। यह है साहब जावेद अख्तर साहब, इसी को मतलब जहां पर उन्होंने जो बात कही वो एकदम दिल को छूती है। बात तो सही कह रहे हैं। घड़ी अब हमको आज्ञा दे रही है कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है, तो शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। श्री अशोक त्रिपाठी जी से निवेदन है कि कल बुधवार का दिन है, बहुत दिन से हमने सुना नहीं, तो राग यमन कल्याण पर बहुत अच्छी जो थीसिस लिखी है उसको हम ज़रूर सुने। और आसमान वाले ने चाहा तो कल बुधवार है, कल कालीन का प्रोग्राम है, आसमान वाले ने चाहा तो ठीक 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी आप ही के प्यारे से कार्यक्रम बहारे गज़ल में। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।
1: हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जस बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी द ओल्ड कैफे। शिमला की सर्द हवाओं में मॉल रोड पर घूमना कबीर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कबीर जो पेशे से एक आर्किटेक्ट था, शहर के शोर से दूर पहाड़ों के सन्नाटे में अपने सपनों के स्केच बनाया करता था। वो गंभीर, शांत और अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला लड़का था। कबीर को ब्लैक कॉफी पसंद थी, बिना चीनी की, कड़वी और बिल्कुल साफ जैसे उसकी जिंदगी थी। दूसरी तरफ थी अवनी, दिल्ली की भाग दौड़ से ऊबकर शिमला में अपनी मौसी के घर कुछ महीने बिताने आई अवनी बिल्कुल अलग थी। वो चुलबुली, हंसमुख और रंगों से प्यार करने वाली लड़की थी। जहां कबीर को कॉफी की कड़वाहट पसंद थी, वहीं अवनी को अदरक और इलायची वाली कड़क मीठी चाय से इश्क था। वो दिसंबर की एक धुंधली शाम थी, पारा शून्य के करीब पहुंच रहा था। कबीर मॉल रोड के एक कोने में स्थित द ओल्ड कैफे में बैठा अपने आईपैड पर एक रिजॉर्ट का डिजाइन तैयार कर रहा था। तभी कैफे का दरवाजा खुला और हवा के एक ठंडे झोंके के साथ अवनी अंदर दाखिल हुई। कैफे खचा खच भरा हुआ था। इकलौती खाली सीट कबीर के टेबल के सामने वाली थी। अवनी ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? कबीर ने बिना आंखें उठाए बस सिर हिला दिया। अवनी बैठ गई। उसने वेटर को बुलाया और कहा, एक कड़क अदरक वाली चाय, चीनी थोड़ी ज्यादा। कबीर ने अपनी ब्लैक कॉफी का घूंट लिया और अवनी की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। अवनी ने मुस्कुरा दिया, लेकिन कबीर ने बस एक औपचारिक नोट दिया और वापस अपने काम में लग गया। कुछ ही देर में अवनी की चाय आ गई। चाय की भाप कबीर के चेहरे तक पहुंच रही थी, जिसमें अदरक की सौंधी खुशबू थी। अचानक अवनी का हाथ टेबल पर रखे उसके मफलर से टकराया और उसकी चाय का कप कबीर के आईपैड और कुछ जरूरी कागजात पर गिरते गिरते बचा। कबीर ने फुर्ती से अपना आईपैड उठाया। आई एम सो सॉरी, सच में मेरा वो मतलब नहीं था। अवनी ने घबराते हुए टिश्यू पेपर उठाए। कोई बात नहीं, बच गया, कबीर ने रूखे लहजे में कहा। वैसे आप बहुत सुंदर डिजाइन बना रहे हैं, पर इस ठंड में इतनी कड़वी कॉफी कैसे पी लेते हैं आप? चाय पीनी चाहिए, आत्मा तृप्त हो जाती है, अवनी ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है द ओल्ड कैफे। अब तक आपने सुना अवनी और कबीर पहली बार ओल्ड स्कूल कैफे में मिले, जहां पर कबीर अपनी फेवरेट ब्लैक कॉफी पी रहा था और अवनी अदरक वाली चाय। अब आगे, कबीर ने पहली बार अपना काम पूरी तरह बंद किया। उसने अवनी को गौर से देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, नाक पर हल्की सी लाली और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। कॉफी कॉन्सेंट्रेटेड रखती है, चाय इंसानों को आलसी बनाती है। आलसी नहीं, सुकून पसंद। अवनी ने अपनी चाय का घूंट लेते हुए सुधार किया। उस शाम कैफे बंद होने तक दोनों के बीच बातों का सिलसिला चलता रहा। कबीर को पता ही नहीं चला कि कब उसकी कड़वी कॉफी खत्म हो गई और कब उसे अवनी की बातों का मीठा स्वाद अच्छा लगने लगा। उस पहली शाम के बाद जैसे शिमला के मौसम ने दोनों को मिलाने की साजिश रच ली थी। कबीर और अवनी अक्सर उसी कैफे में उसी समय मिलने लगे। कबीर अब रोज शाम को अपनी टेबल पर अवनी का इंतजार करता, हालांकि वो इस बात को खुद भी छुपाता था। अवनी जब आती तो पूरे कैफे में जैसे रौनक आ जाती। वो कबीर को अपने दिल्ली के किस्से सुनाती, अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताती और कबीर उसे पहाड़ों की अनसुनी कहानियां सुनाता। कबीर ने अवनी को शिमला के उन रास्तों पर ले जाना शुरू किया जहां टूरिस्ट नहीं जाते थे, जैसे पुराने देवदार के जंगलों के बीच छुपी पगडंडियां, जहां सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। एक दिन वो दोनों जाखू हिल पर चढ़ाई कर रहे थे। बर्फबारी की हल्की फुहारें गिरने लगी थीं। अवनी ठंड से कांप रही थी क्योंकि वो दस्ताने लाना भूल गई थी। कबीर ने देखा, बिना कुछ बोले उसने अपने गर्म ऊनी दस्ताने उतारे और अवनी की तरफ बढ़ा दिए। और तुम? अवनी ने पूछा। मुझे आदत है पहाड़ों की, कबीर ने कहा अपनी जेबों में हाथ डालते हुए। अवनी ने दस्ताने पहने और कबीर का हाथ पकड़ लिया। कबीर ठिठक गया। अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आदत बदलनी भी चाहिए कबीर, कभी कभी दूसरों की गर्माहट भी महसूस करनी चाहिए। कबीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अवनी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उस दिन बर्फ की सफेद चादर के बीच उन दोनों के दिलों में एक नया रंग घुल रहा था। शाम को वो वापस द ओल्ड कैफे आए। इस बार कबीर ने कॉफी नहीं मंगवाई, उसने वेटर से कहा दो कड़क अदरक वाली चाय। अवनी की आंखें खुशी से चमक उठी। तो मिस्टर कॉफी को चाय की आदत लग ही गई, चाय की नहीं चाय वाली की, कबीर ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा इकरार था। अवनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना चेहरा चाय के कप के पीछे छुपा लिया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है द ओल्ड कैफे। अब तक आपने सुना शिमला में रहने वाले कबीर और शिमला घूमने आई हुई अवनी के बीच दोस्ती हो गई। अब वो रोज मिलने लगे। अब आगे वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। जनवरी और फरवरी बीत गए। शिमला की बर्फ अब पिघलने लगी थी और पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगी थीं। वसंत की आमद के साथ ही अवनी के दिल्ली लौटने का वक्त भी नजदीक आ रहा था। एक शाम जब वो दोनों मॉल रोड के सनसेट पॉइंट पर खड़े थे, सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। आसमान में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों की छटा बिखरी हुई थी। माहौल में एक भारी सन्नाटा था। मैं अगले हफ्ते वापस जा रही हूँ कबीर, अवनी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा और उसकी आवाज में एक उदासी थी। कबीर का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो जानता था कि ये दिन आएगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। पहाड़ों की तरह उसकी जिंदगी भी स्थिर थी, लेकिन अवनी उस नदी की तरह थी जिसे बहते जाना था। दिल्ली बहुत दूर नहीं है अवनी, कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा। दूरी किलोमीटर से नहीं होती कबीर, यहाँ का सुकून, ये पेड़, ये चाय और तुम, ये सब मुझे दिल्ली की भीड़ में कहाँ मिलेंगे। अवनी की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके गाल पर आ गया। कबीर ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। उसने अवनी को गले से लगा लिया। उस शाम उन्होंने कोई वादा नहीं किया, कोई कसम नहीं खाई। वो बस एक दूसरे की सांसों को महसूस करते रहे, जैसे उस पल को हमेशा के लिए अपने भीतर कैद कर लेना चाहते हों। जाने से एक दिन पहले वो आखिरी बार अपने पसंदीदा कैफे में मिले। टेबल पर दो चाय के कप रखे थे। दोनों में से किसी ने भी चाय को हाथ नहीं लगाई। चाय ठंडी हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके बीच का समय खत्म हो रहा था। ये चाय अधूरी रह गई। अवनी ने कप को देखते हुए कहा, कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं अवनी। अधूरी चाय गवाह है कि हम फिर मिलेंगे इसे पूरा करने के लिए, कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। अगली सुबह अवनी दिल्ली की बस में बैठ गई। कबीर बस स्टैंड पर खड़ा हाथ हिलाता रहा, तब तक जब तक बस पहाड़ों के मोड़ों के पीछे ओझल नहीं हो गई। शिमला फिर शांत हो गया, लेकिन कबीर के लिए यह शांति अब खामोशी नहीं, एक गहरा खालीपन बन चुकी थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है द ओल्ड कैफे। अब तक आपने सुना कबीर शिमला का रहने वाला था। अवनी शिमला अपनी मौसी के घर आई हुई थी। एक दिन दोनों की मुलाकात द ओल्ड कैफे में हुई और फिर वो रोज मिलने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के इतने आदी हो गए कि बिछड़ने पर लगा जैसे जिंदगी में सूना बना गया हो। अवनी वापस दिल्ली चली गई थी। अब आगे 2 साल बीत गए। इस दौरान जिंदगी थमी नहीं। कबीर अपनी वास्तुकला की दुनिया में और भी सफल हो गया। उसने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए लेकिन उसके हर डिजाइन में कहीं ना कहीं एक ऐसी खिड़की जरूर होती थी जहां से चाय की भाप जैसी धुंध दिखाई दे। वो अभी भी उस कैफे में जाता था। अवनी दिल्ली में अपनी कला की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसने कई प्रदर्शनियां की और उसकी हर पेंटिंग में पहाड़ों का कोई ना कोई अंश जरूर होता था। कभी बर्फ से ढकी चोटियां तो कभी देवदार के पेड़ के नीचे बैठे दो साए। दोनों के बीच फोन पर बातें होती थीं, पर वक्त के अंतर और अपनी अपनी व्यस्तताओं के कारण धीरे धीरे बातें कम हो गईं, लेकिन यादें कम नहीं हुईं। एक दिन कबीर को दिल्ली में एक बड़े हेरिटेज होटल में रेस्टोरेंट को डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसे काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी और गाड़ियों के शोर ने कबीर को परेशान कर दिया। उसे शिमला की ठंडी हवाएं और अवनी की याद सताने लगी। कबीर को पता था कि अवनी कहाँ रहती है, लेकिन उसने उसे सरप्राइज देने का फैसला किया। उसे पता चला कि कैनॉट प्लेस की एक मशहूर आर्ट गैलरी में अवनी की पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी लगी है। कबीर शाम को उस गैलरी में पहुंचा। गैलरी में बहुत भीड़ थी। शहर के संभ्रांत लोग पेंटिंग्स देख रहे थे। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर गैलरी के सबसे मुख्य हिस्से पर पड़ी। वहां एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी थी जिसका शीर्षक था आधी अधूरी चाय। पेंटिंग में शिमला के द ओल्ड कैफे की वही टेबल थी। खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी। टेबल पर 2 कप रखे थे, एक में काली कॉफी थी और दूसरे में आधी बची हुई चाय, जिससे अभी भी भाप निकलती हुई महसूस हो रही थी। पेंटिंग के सामने एक अकेली लड़की खड़ी थी। वो कोई और नहीं, अवनी थी। कबीर की आंखें नम हो गईं। वो पेंटिंग के पास गया और अवनी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। इस पेंटिंग में चाय अभी भी गर्म है, लेकिन पीने वाला कहीं खो गया है, कबीर ने धीमी आवाज में कहा। अवनी चौंक कर पीछे घूमी। कबीर को अपने सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 2 साल की दूरी, चेहरे पर आए बदलाव, सब कुछ एक पल में गायब हो गए। कबीर, अवनी के मुंह से सिर्फ इतना निकला, हाँ अवनी, तुम्हारी अधूरी चाय को पूरा करने आया हूं, कबीर ने कहा। अवनी ने बिना परवाह किए कि आसपास कितने लोग हैं कबीर को कस के गले लगा लिया। दिल्ली की उस भीड़ भाड़ वाली गैलरी में उन दोनों के लिए वक्त जैसे फिर से ठहर गया था। पहाड़ों का सुकून दिल्ली के दिल में उतर आया था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है द ओल्ड कैफे। अब तक आपने सुना, अवनी जब शिमला अपनी मौसी के घर गई थी तब वहां उसकी मुलाकात कबीर से हुई। वो दोनों गहरे दोस्त बन गए, पर अवनी को वापस आना था और वो आ गई। 2 साल बाद कबीर किसी काम से दिल्ली आया और जाकर अवनी से मिला। ऐसा लगा जैसे दोनों की जन्मों की इच्छा पूरी हो गई हो। अब आगे, कबीर का दिल्ली का प्रोजेक्ट 3 महीने चला। इन 3 महीनों में दोनों ने एक भी दिन अलग नहीं बिताया। वो दिल्ली के पुराने किलों, लोधी गार्डन और चांदनी चौक की गलियों में घूमे, लेकिन दोनों को पता था कि उनका असली घर कहाँ है। एक शाम जब कबीर का काम पूरा हो गया, उसने अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, अवनी, दिल्ली के पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, नाम, शोहरत, बड़ी गाड़ियां, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरे पहाड़ हैं, एक छोटा सा घर है और एक पुरानी कैफे की टेबल है। क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? अवनी ने मुस्कुराते हुए कबीर की आंखों में देखा। कबीर, नाम और शोहरत तो कहीं भी मिल जाएंगे, पर मेरी चाय में अदरक कूटने वाला मुझे सिर्फ शिमला में ही मिलेगा। अगले ही हफ्ते अवनी और कबीर शिमला वापस आ गए। इस बार अवनी मेहमान बनकर नहीं, बल्कि हमेशा के लिए कबीर की जिंदगी का हिस्सा बनकर आई थी। उन्होंने एक सादे समारोह में शादी कर ली, जिसमें उनके परिवार वाले और द ओल्ड कैफे का वेटर भी शामिल था, जिसने उन्हें पहली बार मिलते देखा था। शादी के बाद कबीर ने अपने घर के बरामदे में एक छोटा सा कोना बनाया। अब हर शाम शिमला की पहाड़ियों पर जब सूरज ढलता है और ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उस बरामदे में 2 कुर्सियां लगती हैं। कबीर के हाथ में उसकी ब्लैक कॉफी होती है और अवनी के हाथ में उसकी कड़क अदरक वाली चाय। उनकी कहानी अब अधूरी नहीं थी, वो आधी अधूरी चाय अब मुकम्मल हो चुकी थी और उसके स्वाद में दोनों की मोहब्बत की मिठास हमेशा के लिए घुल गई थी। पहाड़ों की वादियों में आज भी जब कोई द ओल्ड कैफे जाता है, तो वेटर उस कोने वाली टेबल को दिखाकर नए प्रेमियों को एक आर्किटेक्ट और एक चित्रकार की कहानी सुनाता है, जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो अधूरी चीजें भी एक दिन मुकम्मल हो ही जाती हैं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी द ओल्ड कैफे। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल 72-34-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
6: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 92-60-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
6: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हजारों तो हुई आदेशा। नाप हो सुर्खी मेरी नकली है तमाम, ढल है दिन जो हजारों तो हुई आदेशा। ओ दुनिया तो वही है मगर
1: मगर मगर
0: क्या